0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

बोलो भला, हमारी मंजिल एक और हम सफर आप अनेक, तो प्यार कैसे ना हो, तो प्यार के साथ लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स। प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें नीतू वंस अगेन आपके मॉर्निंग का गुड गुड लवली बनाने के लिए। 5:05 होने वाले हैं। रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है ना। सो साथ देने के लिए एकदम आप लोग सज हैं, तैयार हैं, आपके इस वीकेंड की शुरुआत आज ही से कर सकते हैं विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, आपके मैसेजेस, आपके पैगामों के जरिए इन सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ। सो 5499-1294-9999-2999 पर वेटिंग फॉर यू और वट एवर यू माइट बी। अभी अभी नींद से जागे हैं और काम के लिए आप तैयार हो रहे हैं, मम्मीज किचन में हैं, बच्चे लोग रिविजन कर रहे हैं, जो भी जहां से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लवली मॉर्निंग टू यू ऑल।

0: नूरिका तो पता नहीं, लेकिन नीतू जरूर आपके साथ है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: Okay, जी आपके messages की ओर बढ़ते हैं on 5499-1294. पति संजय का बर्थडे है, बस यही मैसेज आया है। प्लीज पूरा नाम, आपका अपना नाम, परिवार का नाम भेज दीजिए सैकत नफ नफ दोस्त नफकार पर। कैसी है प्यारी सी ज्योति फ्रॉम शाह तो बिनागस आज विजुअल माधव परिवार आशनी रेखा एंड सुरेखा एंड हमारे लिए थैंक यू। इंदिरा रागिनी मोताई ब्लॉश से नमस्ते आपको। अगला गाना आपके लिए आज विजुअल, आपके नाम भी धीरज, आयुष, विधिशा, अश्विन, ज्योति हरक परिवार मौदाबे से साथ में है। कौन यहाँ पर, प्रणाम आपको थ्रियोली से भाई सूरज शर्मा सजादा एंड फैमिली। चलिए गाने आपको अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम कुंगुमा सुया, नमस्कार जी परिवार के लिए। और काम पर जा रही है सुबह कुहाश विकी, बहु कीर्ति, बेटी है श्वेता, दामाद रोशन, नीस किमी कीर्ति एंड हैप्पी फ्राइडे आपको, आपके पूरे परिवार के लिए भी। विश यू अ गुड फ्राइडे नीतू, थैंक यू सो मच। आप है सरोज, राजन, पूनम, मोनिका, पल्लवी, विशाल, उमेश और शिवानीसा। और बस गाने की ओर बढ़ती हैं। आप तो शम्मी कपूर के फैन हैं और जैसे ही आप आते हैं गाना तो ज़रूर बजता है। तो अगला गाना आपके नाम, टू द फैंस ऑफ शम्मी कपूर साहब। सो हबी विक्रम सुब्रन, हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट विशेस फ्रॉम वाइफ रीना, बच्चे गर्वी, तेशनी लावोचे से आपके सभी डियर वंस। किसी का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है या फिर हाय हेलो किसी के नाम, 5499-1294.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: मुझे कुछ कहना है.
3: मुझे भी कुछ कहना है.
2: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बस कहानियां तो चलती रहती हैं 535 5499 1294 पर. आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, थैंक यू सो मच. यहां पर है पॉइंट दिलास्को से पापा ऋषि, मामा सीता, निजल, स्वीटी, अविनीश टी, और बस मैं देख रही हूं यहां पर है कौन, नक्श, जश, ज्ञाना और नानी साबित. नमस्कार आप सभी को, बेस्ट विशेज आपको रनेश एंड रोशिका.

गुड लेंस, आज आप दोनों की शादी है, सो जोड़ी सलामत रहे। एंड विमल बियाना रवीश प्रीशा लवशा डियर वंस की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग टू प्यारी सी गरिमा, उनकी नींद खुल गई है, तो साथ देने के लिए थैंक यू आपको। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, लाइफ इज खूबसूरत, इस लाइफ को आप एंजॉय कीजिएगा। बाकवा से सुदेवी जी, जय माता दी आपको। और आज ऑस्ट्रेलिया की बहू वर्षा का जन्मदिन है, तो लगे हाथ हमारी तरफ से भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल्सो फ्रॉम पति विमल, बेटी निया, बेटा वीर, तयाग के हैं मामा भैया अश्विन, भाभी देवीना, लेशनव रक्षित, सभी राम रतन, राम गुलाम, कुवारू, गुरन सिंह परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो मस्ती, मैं हूँ रीना फ्रॉम पॉपुलर मुसेस, नमस्ते आपको। नेक्स्ट गाना गुजार टू माई ग्रांड डॉटर आधिया झरिया, जो रहती है फोंजिसाक, आज 2 साल की हुई है। ब्लेसिंग्स टू यू बेटा फ्रॉम मामा वर्षा, पापा आदर्श, दादा है अनिल, विशाल, दादी लीना, रीना बुत्ता और घो दादी चंदनी, पुपू है रक्षा, चाचू आयुष, योहान, सुहान, निवेश, सब परिवार की तरफ से। अगला गाना आपके लिए भी है बदवग विदेशी, एनी नाइस सॉन्ग गुजार टू हुम अनुषा, वाई नॉट। साथ में है कमलेश, शेषना, योहान, रोहन, रागिनी मोसेल मोसौसुसी से, लवना और आपके पूरे परिवार। यहाँ पर है कुमार एंड देवीचंद फैमिली, थैंक यू। शुभ शुक्रवार आपको अंजनी जी एंड ललित एंड जीतन फैमिली, थैंक यू। साथ में मनीष, अमर, राजा, बानी, जिसिक फैमिली है खुबलाल, खिबिया चौपाओ से।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 542 बस इस गाने के बाद आपका हॉरोस्कोप।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी आपके होरोस्कोप की ओर बढ़ते हैं. आज आपका दिन कैसा रहेगा? सो लेट्स स्टार्ट विद
2: एरीज मेष राशि.
1: आज किस्मत आपके साथ यानी कि कदम से कदम मिलाकर चल रही है. कामकाज में शानदार सफलता मिलेगी और जो मेहनत आप कर रहे थे उसका असर अब साफ दिखेगा. कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी जीत की खुशखबरी आपको मिल सकती है. आपकी पहचान और रुतबा दोनों बढ़ेंगे.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे. ऐसा क्या? किसी खास सामाजिक कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी आपको खास बना सकती है. जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास खुलेगी और छोटी मोटी दूरियां भी खत्म होंगी. बस सेहत को लेकर थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा और बाहर के खाने से आपको दूरी बनानी होगी.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है. काम में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए पूरा ध्यान अपने टारगेट पर रखें. किसी की बातों में आकर मन में नकारात्मकता न आने दें. दोस्त आपका साथ निभाएंगे लेकिन कोई करीबी आपको परेशान करने की कोशिश भी कर सकता है और लंबे समय से रुके हुए कोई इच्छा आज पूरी होने के संकेत दे रही है.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है. मनोरंजन और मस्ती के मौके आपको मिलेंगे जिससे मन हल्का रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला थोड़ा तनाव दे सकता है लेकिन भाइयों बहनों के सहयोग से आपको राहत मिलेगी. बड़ों के साथ किसी बात को लेकर गलत फहमी हो सकती है जिसे प्यार से सुलझाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.
2: लियो सिंह राशि.
1: ध्यान से सुनो. आज आप अपने अधूरे कामों को पूरा करने में पूरी ताकत लगा देंगे और सफलता भी मिलेगी. बिजनेस में नई पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं. संतान की सफलता आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी. कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें. अविवाहित लोगों की किसी खास से मुलाकात हो सकती है और घर गाड़ी खरीदने के भी योग बन रहे हैं.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज आपका आत्मविश्वास और साहस दोनों चरम पर रहेंगे. कुछ नया करने की चाह आपको आगे बढ़ाएगी और बिजनेस में जो बदलाव के विचार वो आ सकती हैं. स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है और परीक्षा के नतीजे भी खुशियां ले आ सकती हैं. मौसम का असर सेहत पर पड़ सकता है. दैट्स व्हाई ध्यान रखें. मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: आज का दिन ऐशो आराम और खुशियों से भरा रहेगा. घर के बड़े आपका पूरा साथ देंगे. अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है. That's why अपने सामान का ध्यान रखें. उधार दिया पैसा वापस मिलने की संभावना है. निवेश सोच समझ कर करें. कोई साइड इनकम भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज आपको हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा. आपकी समझदारी ही आपको आगे बढ़ाएगी. घर परिवार की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें. वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटास आ सकती है जिससे समझदारी से संभालना होगा. परिवार में किसी खुशी का माहौल बन सकता है और भाई बहनों का साथ मिलेगा.
2: सजिटेरियस धनुराशि.
1: आज का दिन थोड़ा उलझनों से भरा रह सकता है. गुस्से में आकर कोई फैसला ना ले वरना नुकसान आपका ही हो सकता है. विरोधी सक्रिय रहेंगे इसलिए सतर्क रहें. नया घर खरीदने की योजना के कागजातों में जो चीजें हैं वो आप जरूर करें, जांच पड़ताल करें. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है. दोस्तों के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज का दिन मिला जुला रहने वाला है. काम में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं जिससे रुकावट महसूस होगी. किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तनाव भी हो सकता है. खुद को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा समय निकालें. जीवन साथी से किया वादा निभाना जरूरी होगा.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज आप अपने अटके हुए कामों को पूरा करने में सफल रहेंगे. आय बढ़ाने के नए स्रोत मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं. कोई पुराना कानूनी मामला जो है आपके पक्ष में जा रहा है और कामकाज में खुशखबरी आपको मिल सकती है. आप किसी दोस्त की मदद के लिए आगे भी बढ़ेंगे.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: प्राइम फैमिली आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कामकाज में सुधार आएगा, मन हल्का रहेगा। कोई पुराना मित्र अचानक मिलकर आपको खुश कर सकता है। लाइफ पार्टनर से बातचीत आपके मन का बोझ कम करेगी। संतान के करियर को लेकर थोड़ी भागदौड़ रहेगी और घर के रिनोवेशन की योजना बनेगी, जिसमें खर्चे भी बढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू बोल एंड अ लवली डे अहेड।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
1: 5:53 बस अच्छी बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: 6 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्थान। नमस्कार।
7: नमस्कार। 6 बजे के प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। व्यापार मंत्री माकेल सिक्योन ने कलेबन में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्ष नेता के बयानों का दिया जवाब। उन्होंने कहा कि एसटीसी और सीबी के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है। मंत्री ने याद दिलाया कि यह समझौता वर्ष 2023 में हुआ था। उस समय जुली रोंगा ऊर्जा मंत्री थे। माकेल सिक्योन ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया है। मंत्री ने यह भी कहा कि एसटीसी रोजमर्रा की आवश्यक सामानों का आयात करेगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया जारी की जाएगी। वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज इलाकाई सुरक्षा सहयोग का एक मजबूत मंच बन चुका है। आंतरिक सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और न्यायिक सहयोग से जुड़े कई उप समितियों के माध्यम से हर 6 महीनों में बैठकें आयोजित की जाती हैं। मुख्य उद्देश्य है इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार करना। इस वर्ष जुलाई में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा। 4 दिनों तक मोशवासी गल्फ स्टेट अफ्रीका और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय और आर्थिक व्यवसायिक चर्चाओं का केंद्र बनेगा। आयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन में 2500 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी, जिनमें कम से कम 7 राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहेंगी। हर वर्ष सड़क हादसों में लगभग 11,90,000 लोगों की जान जाती है। दुनिया भर में हर दिन 3,000 से अधिक लोग सड़कों पर मौत का शिकार हो जाते हैं। ये चिंताजनक आंकड़े WHO ने जारी की है, जो वैश्विक स्वास्थ्य रुझानों पर निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। आज सड़क दुर्घटनाएं 5 से 29 वर्ष के युवाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। ईरान में हुर्मुज समुद्री मार्ग में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से तेज हो गया। ईरानी मीडिया के अनुसार क्षेत्र में विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं हुई, जबकि अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसके युद्धपोतों पर ईरान की ओर से मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं के जरिए हमले किए गए हैं। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर जारी है। पूर्वानुमान आज सुबह के दौरान देश के ऊंचाइयों पर रहकर बरसात हो सकती है। अन्य जगहों में दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। रात को ऊंचे इलाकों पर मौसम खराब रहेगा, अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम साहली इलाकों पर 21 से 24, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त 5:44 पर होगा।
5: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
5: Radio Musti.

0: घर से निकलते ही बस सपनों से बाय बाय कहते चले। हाँ, शाम को मिलेंगे वापस, तो अच्छा सब वक्त बिताएंगे साथ में, ये हुई ना बात। 6:11 वेलकम बैक एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.
0: तो बस इस मस्ती के रेले में आपका नाम जोड़ते चले हैं बॉम्बू से धनेश्वर जी, पत्नी सुनीता, देव रेखा, संजीवनी, श्रद्धा, विदुष परिवार। हैप्पी बर्थडे टू यू दिवेश दुखी और वर्ष में कहिए फ्रॉम, नाम कुछ अधूरे रह गए हैं, प्रेमिला जी फ्रॉम प्लंदी पपाए, शुभा दी, पति रंजीत एंड पूरे परिवार के नाम। हाय, प्लीज नेक्स्ट गाना गुजार टू दिष्टि ऑन हर बर्थडे, बेस्ट विशेस टू यू मॉम दीपा, पापा दिनेश, भाई दिशांत, दादी है, चाचू चाची, मोदी परिवार, कैथोबोन से। हाय नीतू, हैप्पी बर्थडे टू दिशा फ्रॉम बर्चनी फैमिली ऑफ गोजबेल, लगे हाथ हमारी तरफ से भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। कैसी बबीता फ्रॉम बोनाकाय, एंड नेक्स्ट गाना आपके नाम चलाते हैं। यहाँ पर है गुड मॉर्निंग, आप हैं हेमलता फ्रॉम हेमलता भजन पॉइंट पिमो से, और शुभ दिन आपको भी एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बस गानों का मजा लेते चले और खुश रहते चले।

मैं बताऊं, सिंपल तरीका है 5499-1294 पर आपके मैसेजेस के जरिए कंगोमा से सोना सुचिता साहिल अंकुश एंड किंजल साथ देने के लिए थैंक यू। कैसे हैं आप बॉबू वाले? खास तौर से आपको आकाश मनसुख परिवार, तो चलिए आपका स्वागत है आपका भी। हेमा हमारे साथ जुड़ी हुई है, अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू यू माय डियर एंड आपके पूरे परिवार। कैसी हैं आप? बर्थडे विशेज टू माय हैंडसम सन अभिषेक, 12 साल के हुए हैं, फ्रॉम मामा शिक्षाना, पापा करण, भाई आरव, साथ में अहान, नानी है नायमा, नाना विक्रम, जीवन, दादी सुनीता, चाचा अभी और शिक्षाना फ्रॉम मोताबा, पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स बेटा। नेक्स्ट गाना गुजार टू यू सुनीता फ्रॉम बिलबाग, एनी लवली गाना आप कहती हैं टू माय एंजल येशना, बेस्ट फ्रेंड सुमन, हैव अ नाइस डे अहेड। हेलो नीतुषा, सतीश जी हैं फ्रॉम गोजबेल, नमस्ते, गाना आपकी वाइफ बेबी और आपकी शादी की सालगिरह है। ओ तो चलिए हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, जोड़ी सलामत रहे और कथुबोन से भाई महन का भी हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग प्यारी सी दिव्या, दूतिका एंड रघुजाना परिवार।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
2: अपना बिजनेस शुरू करना है या अपने करंट बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो याद रखिए SBM SME बैंकिंग सिर्फ बैंक नहीं, आपका ग्रोथ पार्टनर है। अब खर्चों को अपनी तरक्की में रुकावट ना बनने दे, अपने लोन्स को रीफाइनेंस कीजिए और अपने खर्चों पर बेटर कंट्रोल पाइए, या फिर अपने स्टार्टअप ड्रीम को आज ही एक्शन में बदलिए। चाहे इक्विपमेंट फाइनेंसिंग हो, कैश फ्लो सपोर्ट हो या एक्सपेंशन प्लान्स, हमारे कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस और एक्सपर्ट सपोर्ट के साथ आपका बिजनेस उड़ान भरेगा। आज ही कॉल कीजिए ऑन 2070111 या विजिट कीजिए sbmgroup.mu। SBM SME बैंकिंग, साथ है तो ग्रोथ है। ये ऑफर कुछ शर्तों के साथ आता है। SBM बैंक ऑफ मॉरिशस के लाइसेंस के तहत ऑपरेट करता है।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: नमस्कार, 8 मई की सुबह है, ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। व्यापार मंत्री माकिया सिक्वेन ने एबन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष नेता के बयानों का दिया जवाब। उन्होंने कहा कि एसटीसी और सीईबी के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है। वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज इलाकाई सुरक्षा सहयोग का एक मजबूत मंच, आंतरिक सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और न्यायिक सहयोग से जुड़े कई उप समितियों के माध्यम से 6 महीनों में बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष के जुलाई महीने में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में लगने वाला है। 4 दिनों तक अफ्रीका और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय आर्थिक और व्यापारिक चर्चाओं का केंद्र ये मंच बनेगा। हर वर्ष सड़क हादसों में लगभग 11,90,000 जानी जाती हैं। ये चिंताजनक आंकड़े WHO ने जारी किए, जो वैश्विक स्वास्थ्य रुझानों पर निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था। बुधवार 6 मई तक मॉरिशस में चिकनगुनिया के 147 मामले दर्ज। वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2,740 तक पहुंच चुकी है। हुर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ चुका है। ईरानी मीडिया के अनुसार क्षेत्र में विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई है। नमस्कार, व्यापार मंत्री माकिया सिक्वेन ने कल एबेन में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्ष नेता जुलिस रोंगाओ के बयानों का दिया जवाब। उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है। मंत्री ने याद दिलाया कि ये समझौता वर्ष 2023 में हुआ था। उस समय जुलिस रोंगाओ ऊर्जा मंत्री थे। माकिया सिक्वेन ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। मंत्री को सुनते हैं, उनसे बात की राजमिता सीतामणि ने। पूजा सुकालू का विवरण है।
1: Normalement, vous avez un agrément, vous ne respectez le prix de cet agrément-là. Il peut faire comment dire, la CEB paie mon tarif à cause de la STC, une facture plus chère. À aucun moment ça. Vous ne respectez le contrat.
0: मंत्री ने यह भी कहा कि एसटीसी रोजमर्रा के आवश्यक सामानों का आयात करेगी, इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। मंत्री को सुनते हैं।
1: La STC peut faire un produit de base. Et pour certains produits que la STC peut faire, nous disposer tiers un maximum markup, nous faire livrer un lager ouvert et la STC sur prix bien parmi les moins chers. Ça veut dire nous donne le choix au public. Si vous avez STC, au problème. Mais si vous avez STC, vous avez STC.
0: वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का एक मजबूत मंच बन चुका है। आंतरिक सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और न्यायिक सहयोग से जुड़े कई उप समितियों के माध्यम से हर 6 महीने में बैठकें आयोजित की जाती है। मुख्य उद्देश्य है इलाके में ड्रग्स की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क पर प्रहार करना। इस वर्ष FCC भी इस समूह से जुड़ गई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। पोर्टली में कल लाइन बाराक्स में आयोजित एक बैठक के दौरान गृह मामलों के सचिव दोगिनफोंग वेनपुहन ने कहा कि इस क्षेत्रीय सहयोग से तस्करों और अपराधियों को अब सजा से बचने का अवसर नहीं मिलेगा। गीता सुना।
2: ये रिपोर्ट पिछले 24 अप्रैल को फ्रेंच समाचार बुलेटिन में चलाई गई थी, जब मॉरिशस और रीयूनियन के बीच सहयोग की बदौलत ड्रग्स जब्त किए गए थे। 1 महीना पहले ये रिपोर्ट चलाई गई थी, जब समुद्र में ये ड्रग्स जब्त किए गए थे। ड्रग तस्करी के खिलाफ संघर्ष में रीयूनियन और

0: और रूस के बीच सहयोग को ये दर्शाता है। अंदरूनी सुरक्षा पर एक सब कमेटी की बदौलत दोनों देश जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। इससे समुद्र में संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर संसाधनों को एकजुट किया जाता है। अंदरूनी मामलों की सचिव फोंग वेंग पुरन कहती हैं, हर सब कमेटी में एक मुख्य मुद्दा होता है, रेनियन का, मॉरिशस का, और हम वास्तविक समय में जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। यही नयापन है। मॉरिशस और रेनियन के बीच कई जानकारियां बांटने से ये नतीजे सामने आते हैं। इस गुरुवार को मॉरिशस और रेनियन के बीच कॉन्टैक्ट ग्रुप के सदस्यों ने लैंड बराक्स में एक बैठक लगाई, जिसमें ड्रग तस्करी और मनी लॉन्डरिंग के खिलाफ संघर्ष का फॉलोअप किया गया। जांच में जटिलता के चलते सहयोग जरूरी है। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजपाली कहते हैं, आपराधिक गिरोह प्रणाली की कमियों का फायदा उठाते हैं, इसलिए हमें वैश्विक एकाग्रता और संचालित तरीके से काम करना चाहिए।
1: Que notre réponse doit être globale, intégrée et cohérente.
0: ये कॉन्टैक्ट ग्रुप 2011 में गठित किया गया था। इसमें 3 सब कमेटियां हैं, अंदरूनी सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और न्याय विभाग। रेनियन की ओर से नागरिक सुरक्षा पर एक सब कमेटी कायम करने का प्रस्ताव रखा गया है। रेनियन प्रीफेक्ट के कैबिनेट डायरेक्टर बेनोर लाफोकिया कहते हैं, हमारे समान खतरे हैं, जैसे तूफान, जंगलों में आग लगने के। हमारे पास योग्य सेवाएं हैं मॉरिशस, रेनियन और फ्रांस में। साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सुरक्षा का विकास हो। दोनों टापुओं के बीच सहयोग की एक अन्य पहलू सड़क सुरक्षा पर आधारित है। कॉन्टैक्ट ग्रुप की अगली बैठक सितंबर में लगेगी।
2: इस वर्ष जुलाई महीने में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया जाने वाला है। 4 दिनों तक अफ्रीका और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय और आर्थिक और व्यवसायिक चर्चाओं का केंद्र बनेगा ये मंच। आयोजकों के अनुसार इस शिखर सम्मेलन में 2500 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि और उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियाँ शामिल होंगी, जिनमें कम से कम 7 नेता शामिल रहेंगी। कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फ्लोरी लीजे ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। गीता सुनारन।
0: अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 मॉरिशस में लगेगा और ये वित्तीय सेवाओं पर आधारित रहेगा। ये मॉरिशस को अफ्रीका और अमेरिका के बीच निवेश के एक मंच के रूप में स्थापित करने का अवसर रहेगा। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान अफ्रीका के लिए कॉर्पोरेट काउंसिल की सीईओ और अध्यक्षा ने अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट बढ़ाने का पक्ष लेने और इस संधि की वैधता की रक्षा करने के लिए लड़ने की कटिबद्धता ली।
3: What we want is 10 years. That's what we want. Whether we'll get 10 years, we don't know, but we're going to ask for it and we're going to push for it and we hope that Congress and the administration will support that, because we do believe that AGOA is not just beneficial to African countries, it's also beneficial to the United States. U.S. companies that source from Africa, their workers, and also all of the people who are the customers and buy African products.
0: अफ्रीकी उच्च अधिकारियों और राष्ट्र नेताओं के अलावा इस शिखर बैठक में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल भाग लेगा, जिसमें सरकारी और व्यवसाय जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने मोर्श सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के नई कार्यकारिणी मंडल से भी कल ट्रेजरी बिल्डिंग पोटली में मुलाकात की। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन द्वारा की गई मांगों पर गौर किया, विशेषकर चार धाम तीर्थ यात्रा को लेकर। मोर्श सनातन धर्म टेम्पल्स के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन को सुनते हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी काविंदा पिसो ने।
4: चार धाम qui nous finit à bord de ce sujet-là, et que le Premier ministre y répond positivement, là. Nous nous faisons une demande pour nous capables de gagner un subside, le ticket d'avion. Nous envie, nous, toute la famille hindoue, à least une fois, nous allons à Chardham. Et aussi, nous nous faisons une demande s'il est capable, cause avec le gouvernement indien, que nous sommes capables de faire nos bandes grands, bandes senior citizens, s'il est capable de gagner un hélicoptère pour depuis que nous sommes pour nous aller et Kedarnath. Comme nous tous connaissons, Sanatan nous prenons une place de Gangatalao. Alors, nous faisons une demande et un bâtiment là-bas, Sugar Insurance Labor Welfare Fund, qui est dormant. Et si besoin fait une réparation, nous là pour faire les Ottawa on cause, nous gagnons sa place là quand nous avons des enfants capables de venir là-bas faire méditation, faire gurukul, nous qu'a expliqué. C'est une des plus places sacrées qui la communauté hindoue est là, c'est à Gangatala. Nous ne demandons ni ça, ni aussi accepter positivement et nous bien rapide.
2: हर वर्ष सड़क हादसों में लगभग 11,90,000 लोगों की जान जाती हैं। दुनिया भर में हर दिन 3,000 से अधिक लोग सड़कों पर मौत का शिकार हो जाते हैं। ये चिंताजनक आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जारी किए हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य रुझानों पर निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। आज सड़क दुर्घटनाएं 529 वर्ष के युवाओं में मौत का सबसे कारण बन चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 से 14 मई तक इसे मनाया जा रहा है। अवसर पर अधिकारी याद दिला रहे हैं कि इन अधिकांश हादसों को सावधानी और जिम्मेदार व्यवहार से रोका जा सकता है। पूजा सुकालू।
5: हमारी सड़कों पर सालाना 1.19 मिलियन मौतें होती हैं। इसका मतलब है कि हर दिन सड़कों पर 3,000 से अधिक लोग अपनी जानें गंवाते हैं। 5 से 29 वर्ष की उम्र के युवकों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के अनुसार ये एक चिंताजनक स्थिति है। कुछ कदमों के अपनाने से स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर गाड़ी का तेज गति से चलाना, सबसे पहले इसको सुधारना, सीट बेल्ट पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु की संख्या को घटाया जा सकता है, और दो पहिए वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना सुरक्षित रहने की संभावनाओं को 6 गुना बढ़ा सकता है। एक और बड़ा खतरा है गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल, जो दुर्घटना के जोखिम को 4 गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा नशे की हालत में गाड़ी चलाना भी हादसों का कारण होता है। सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने लोगों में पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटरसाइकिल चालक भी शामिल हैं। वैश्विक लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क मौतों की संख्या को आधा किया जाए। ये एक महत्वाकांक्षी चुनौती है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है यदि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और सुरक्षित व्यवहार अपनाए।
2: थिंक बिग एंड एक्ट ग्लोबल विषय पर आधारित नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल अवार्ड 2026 में 76 प्रतिभागियों में से 12 महिला ठेकेदारों ने फाइनल तक अपनी जगह बनाई। गुरुवार को रिजवी के कुद्दो टेक्नोपोल में आयोजित समारोह में कृषि, कपड़ा, कारीगरी और सेवा सेक्टर सहित विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार प्रदान किए गए। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओया नावामाही ने मॉरिशस में महिला ठेकेदारी के बढ़ते प्रभाव की सराहना करते हुए उद्यमियों को अफ्रीका और हिंद महासागर इलाके में नए अवसरों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता तक पहुंच, तकनीकी सेक्टरों में असमानताएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां आज भी कई महिलाओं के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार ट्रेनिंग, मार्गदर्शन तथा डिजिटल और AI से जुड़ी पहलों के माध्यम से सहयोग को और मजबूत करने की तैयारी में है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को सुनते हैं उनसे बात की शैली निर्बल ने।
6: Les femmes à Maurice ont longtemps été au cœur de la famille, du lien social. Ce que nous vivons aujourd'hui est une transformation profonde. Ces mêmes femmes investissent désormais l'espace économique comme entrepreneurs, comme dirigeantes. Les chiffres le confirment. Les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population mauricienne. Leur taux de participation au marché du travail avoisine 40%. Et elles sont de plus en plus présentes dans les services, la finance, l'éducation et la santé. Ce sont là des réalités encourageantes, mais je ne veux pas m'en satisfaire. Car il reste des secteurs techniques, des postes de haute direction, où la présence des femmes demeure insuffisante.
2: मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर का खिताब तथा 1,00,000 रुपए की नकद राशि अफ्रिकाना ग्रुप की शॉप की जुलियन ब्रिजेट पेट्रोनिल को प्रदान की गई। आपको बता दें कि वर्ष 1999 में जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय के तहत स्थापित नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल आज विभिन्न सेक्टरों में 1,100 से अधिक महिला ठेकेदारों को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। बुधवार 6 मई तक मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामले दर्ज किए गए। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2470 तक पहुंच चुकी है, जबकि रेडरिक्स में भी एक मामला सामने आया। डॉक्टर फाजिल को दबाकस के अनुसार गर्मी से सर्दी के संक्रमण काल के दौरान मॉरिशस इस समय महामारी के चरम पर हैं। मामलों में वृद्धि के कारण कॉन्ड्यूस लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल्स की जांच पर दबाव है। स्वास्थ्यकर्मी पीसीआर परीक्षण के परिणाम 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर फाजिल को दबाकस को सुनते हैं विवरण रजनी भीकर।
7: डॉक्टर फाजिल को दबाकस ने कहा, एक दिन में कई जांच करनी है, फिर भी काम कर पा रही है। दो लेबोरेटरियों में समय के बाद काम करने की मांग की गई है, तकरीबन रोज ही ऐसा कर रही है। कुछ नतीजे भी मिल रहे हैं, दो या तीन दिनों पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि 24 घंटों या 48 घंटों में नतीजे मिल जाएं। काफी बहुत स्पेसिमेन मिल रहे हैं, इससे कुछ परेशानी तो हो रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
2: नौ मई को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह की 446वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर गहलोत राजपूत महासभा की पहल पर विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जाने वाला है। पोटली में कल आयोजित प्रेस सम्मेलन के दौरान इस पर अधिक जानकारियां दी गई। याचना मिश्रा।
8: हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप दिवस मनाया जाता है। उनकी 486वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को बेल विलेज में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे, जबकि औपचारिक समारोह 10 मई को लगेगा। दस मई को काहोलिन के एमकाएस हॉल में औपचारिक समारोह दोपहर 2 बजे से शुरू हो रहा है। साथ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान से महाराणा प्रताप सिंह के वंशज के एक प्रतिनिधि यहां पर इस मौके पर हमारे साथ होंगे। सभी इसमें आमंत्रित हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप सिंह की वर्षगांठ के अवसर पर बेल विलेज में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे। ये समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा और इसमें हमें पंडिताओं का सहयोग मिलेगा। इस प्रेस सम्मेलन के दौरान सभा के अध्यक्ष ने 30 मार्च को भारत में राजस्थान दिवस के अवसर पर मॉरिशस के डेलीगेशन की भागीदारी पर बात करते हुए सरकार को आभार जताया, जिसकी बदौलत ये दौरा सफल रहा।
2: हुरमुज जलमार्ग में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से तेज हो गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार क्षेत्र में विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई, जबकि अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसके युद्ध पोतों पर ईरान की ओर से मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं के जरिए हमले किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी बलों ने इन हमलों को रोकने पर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम अब भी जारी, लेकिन ईरान को अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, अन्यथा उसे कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तनाव बढ़ने के साथ वैश्विक तेल बाजार भी प्रभावित हुआ और ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर $102 प्रति बैरल के पार पहुँच चुकी है। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह के दौरान ऊंचे इलाकों पर रह रहकर बरसात होगी, अन्य जगहों में धूप खिली रहेगी। रात को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा देश भर में। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 21 से 24, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की मांग की जाती है। सूर्योदय हुआ है 6:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:44 पर।

0: संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड थ्रू द दुस्मे, रॉयल रोड थ्रू द दुस्मे 84 साल की 84 years old की कुलमंती भिखारी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम हलुमन, लोग उन्हें मानती के नाम से अधिक जानते हैं, और वे पहले ट्विस होक में काम किया करती थी। उनकी अर्थ कल दिन के 11 बजे, कल शनिवार 9 मई को दिन के 11 बजे उनकी बेटी शैलेश भिखारी के मकान थ्रुडुदूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रुडुदूस की ही शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM सुभाष चंद्र बोस स्ट्रीट ग्रैंड पॉइंट टोपी मॉ में 68 साल की 68 years old की गीता चैतन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम दोहू, उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उनके पति बलराम चैतन्य के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पंथीपी मौखी शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM मोसलमो राफ्रेलो शे तेरूज में 86 साल के 86 years old के भाई अहमद रसे पीरन इंतकाल कर गए हैं। भाई अहमद बस पीरन इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 12 बजे उन्हीं के मकान तेगूर से निकाल कर दफनाने के लिए मेजिन कौदमास का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट नून। महादुलेन न्यूक्रोव में 67 years old की मिस गीता बाई महादू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें लीला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज सुबह के 10 बजे उनके भाई राजेश बाल्मीक महादू के मकान न्यूक्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागीजानी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM मिशन क्रॉस रोड खोबाफो लाल माची में 63 साल के 63 years old के जगदीश रामदान की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें संजय के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी मिसिस सती सावित्री रामदान के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM सेनेकर रोड रिवरवॉक लेन प्लेन दी रोश में 58 साल की 58 years old की संगीता रामनियाल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम इंदर नारायण, लोग उन्हें सुनीता के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान प्लेंदिगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM कोंकारोल केन्या प्लेन मान्यों में 80 साल की 80 years old की मती गणेश की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुनू, लोग उन्हें सती के नाम से अधिक जानती थी, और वे पहले रिवेदे क्रियोल की रहने वाली थी। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी बेटी छाया मोहोले के मकान प्लेन मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM जानकी स्ट्रीट पुद्रदो विलेज में 79 years old की विद्वंती मधु की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सोहन, लोग उन्हें वंती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे संजय मधु के मकान पुद्रदो विलेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो पुद्रदो विलेज की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM पालमा रोड कटरबोन में 77 साल की 77 years old की पुष्पामाला बुतन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम राम, लोग उन्हें मीला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1:15 बजे उन्हीं के मकान कटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा गांधी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 PM C11 NHDC Avenue Ambre Mongoumé 74 साल की 74 years old के जनाब फरुद मुसाफिया का इंतकाल कल हुआ है। उनका जनाजा कल रात्रि के 8 बजे उठाया गया। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: RM2 Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Mustie.
2: Good morning.
3: Hey, good morning. Friday, good morning. और काफी लोग कह रहे हैं थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे, यूपी, राइट, ब्यूटीफुल डे। वैसे मैं देख रहा था कि मॉर्निंग बहुत कमाल की थी, लगभग 19 डिग्री टू स्टार्ट हुए द सेंट प्लाटो, थोड़ी सी ठंड और खिड़कियां बंद और निकल पड़े अपनी राहों पे, जिंदगी की बाहों में, यही कहने के लिए कि इट्स गोना बी अ सुपर्ब मॉर्निंग। सो ऑफिस हो, कॉलेज हो या फिर घर का काम, इस सुबह मॉर्निंग को बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाने वाले।
2: एग्जैक्टली,
3: वॉल्यूम को बढ़ाएंगे और साथ साथ में ये बताएंगे 79 इज गोना बी लोडेड, जहां पर अपडेट्स होने वाली है, सेगमेंट्स होने वाली, वहीं पर मॉर्निंग क्रू की फुल ऑन मस्ती।
2: एग्जैक्टली, तो आप यही पर जुड़े रहना और बाकी सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा क्योंकि आपके लिए अमेजिंग गानों का सिलेक्शन है।
3: राइट, सो बॉलीवुड बीट्स के साथ शुरू करो एक एनर्जेटिक मॉर्निंग। वी आर राइट हियर टिल 9 AM।
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो। मॉर्निंग बीट RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: सात बज के 10 मिनट हो चला है
3: और आज एक बार फिर से स्पेशल डे तो है उनके लिए जो अपने बर्थडे मना रहे, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे। लेकिन यहाँ पर हम रुकने नहीं वाले इसलिए क्योंकि आपको अगर इनवाइट टू सेंड इन योर डिटेल्स या फिर अपने कलीग का, अपनी फैमिली का, किसी का भी, और हम उनको बर्थडे विश करना चाहेंगे।
2: यस, लाइव हम विश करेंगे उनको और उन्हें स्पेशल फील कराएंगे ऑन द स्पेशल डे।
3: राइट, सो वहीं पर आपको बताया कि आज जब ये तारीख है, फ्राइडे का दिन है, 8th of May है, सो आज है कौन सा दिन?
2: आज है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे।
3: राइट, अच्छी बात है क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन वर्क होना बहुत जरूरी है। अच्छा नीलमणि, अगर हम कहते हैं कि वेजिटेरियन तो वेजिटेबल्स खाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्या खाते हैं?

0: मैं नहीं बोलूंगी कुछ.
1: नहीं नहीं वो भी खाना पीना ही खाते हैं, तुम गलत मत सोचो. एनीवेज वी गोना रॉक द म्यूजिक. और आज अपने अलार्म ने तो काम कर दिया है, लेकिन अब आपको काम कर उठकर भागकर दौड़कर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है. सो कीप इट गोइंग ऑन, फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन मस्ती.
2: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
3: RM2 Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: राइट वैसे हर एक ट्रेन जाती है अलग अलग स्टेशन पर और अपना रेडियो स्टेशन पहुंचता है हर एक जगह पर. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यू लिसन टू द वेरी बेस्ट. 7:20 इज योर मॉर्निंग क्रू और हम हो गए शुरू. और आज की तारीख तुम कह रही थी क्या सॉक्स क्या
4: नो सॉक्स डे है.
3: ये क्या बात कर रहे हो तुम. नो सॉक्स डे. सॉक्स पहननी तो बहुत जरूरी है क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो ये पाते हैं कि अगर सॉक्स ना हो तो काफी चिपचिपा सा वेदर हो जाता है.
4: ये सही है लेकिन आज का दिन स्पेशली नो सॉक्स डे है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बेफुट जाएं और आप अपॉर्चुनिटी लीजिए टू लेट योर फीट रिलैक्स.
3: वहीं पर होता है कि आप अगर

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2
1: Radio Mustie.
2: यस मॉर्निंग मॉर्निंग में हम आ गए हैं किसी का दिन बनाने।
3: अरे क्या बात है, मॉर्निंग मॉर्निंग तूने किसी को पकड़ लिया है।
2: पकड़ लिया उसको।
3: हम कोशिश करते हैं कि किसी को पकड़ें और कहें उनको हैप्पी बर्थडे यानी कि सरप्राइज करें। और अभी हमारे साथ कौन है चलिए जान लेते हैं।
2: यस हमारे साथ भी है कार्तिके। हेलो
4: हेलो,
2: कैसे हो आप?
4: हम सब ठीक है।
2: ओके, तो आप क्या कर रहे हैं अपने स्पेशल दिन पर आज?
4: आज स्कूल जा रहे हैं।
2: आपको बोलेंगे वो कुहार।
3: देखो ऐसा है कि पता लगा कि आप 18 इयर्स के हो चुके हो, यानी कि माइनस से मेजर, और अभी सिचुएशन चेंज होने वाली है, यानी कि अब खुले पंख के साथ आप एक बड़ी उड़ान लेने वाले हैं इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, कुछ नाम बनाने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए। सो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको

0: from Radio Musti.
1: Hey Kartikeya, happy birthday to you. Bahut special greetings from the RM2 team.
2: And yes, of course, we mil raha hai voucher from Lulu Hypermarket to celebrate your special day. Congratulations.
3: Thank you so much.
1: अच्छा कार्तिकेय, तो बताओ कि प्लान क्या आज?
3: पूजा। हाँ?
1: अच्छा पूजा करेंगे। अरे वाह, ब्यूटीफुल स्टार्ट। जाकर ऊपर वाले से आशीर्वाद लेकर निकल पड़ो। सो एक बार फिर से लोड्स ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ, सक्सेस एंड डू वेरी वेल इन लाइफ। ऑल द बेस्ट बड़ी, हैप्पी बर्थडे।
3: थैंक यू सो मच।
4: मॉर्निंग बीट।
5: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
4: A good beat for your morning show.
6: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News,
3: Radio Musti in the mix.
4: चलिए अभी के लिए सुनते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स. आप सरविन जी, गुड मॉर्निंग.
5: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. यूरोपा लीग स्पेशलिस्ट उनई से नई एस्टन विला यूरोपा लीग के फाइनल में. पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोप की सभी तीन कप प्रतियोगिताओं में प्रीमियर लीग की टीमें हैं. चैंपियंस लीग फाइनल में आर्सेनल, यूरोपा लीग फाइनल में एस्टन विला और कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में क्रिस्टल पैलेस. एस्टन विला ने 4-0 से नॉटिंघम फॉरेस्ट को पछाड़ा. वाटकिंस का गोल फर्स्ट हाफ में, फिर सेकंड हाफ में पेनाल्टी पर बुइंडिया का गोल और कप्तान मैकगिन का डबल. कोच उनई एमरी

अपने पांचवें फिफ यूरोपा टाइटल के करीब और एस्टन विला को 30 साल से एक ट्रॉफी का इंतजार है शायद इस बार। फाइनल में एस्टन विला का मुकाबला फ्रीबर्ग से होगा। फ्रीबर्ग ने 3-1 से भागा को हराया। 20 मई को इस्तांबुल फाइनल एस्टन विला वर्सेस फ्रीबर्ग। अगर एस्टन विला यूरोपा लीग जीतता है तो प्रीमियर लीग से 6 टीमें चैंपियंस लीग में होंगी, पर इसके लिए एस्टन विला को प्रीमियर लीग में टॉप 4 से नीचे होना चाहिए। अभी विला 5वें स्थान पर हैं। कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल क्रिस्टल पैलेस और रायो वालेकानो के बीच होगा। पैलेस ने 2-1 से शक्ता दोनेत्स्क को हराया ऑन एग्रीगेट 5-2 से क्वालिफाई। रायो वालेकानो ने स्ट्रासबर्ग को 1-0 से हराया, वो भी स्ट्रासबर्ग के मैदान में ऑन एग्रीगेट 2-0 से रायो वालेकानो क्वालिफाई। सो कल के 4 मैचों के नतीजे, एस्टन विला 4 नॉटिंघम फॉरेस्ट 0 फ्रीबर्ग 3 ब्रागा 1 क्रिस्टल पैलेस 2 शक्ता दोनेत्स्क 1 स्ट्रासबर्ग 0 रायो वालेकानो 1। यूरोपियन चैंपियंस के का फाइनल, यूरोपियन चैंपियंस लीग का फाइनल आर्सेनल वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन, यूरोपा लीग का फाइनल एस्टन विला वर्सेस फ्रीबर्ग और कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल क्रिस्टल पैलेस वर्सेस रायो वालेकानो। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने 4-2 से शबाद टीम को हराया। युआओ फेलिक्स का हैट्रिक, रोनाल्डो का एक गोल रहा। आज चैंपियनशिप में प्रमोशन प्लेऑफ का सेमीफाइनल, हल का मुकाबला मिलवॉल से होगा। दूसरा सेमीफाइनल कल मिडिल्सब्रो वर्सेस साउथहैम्पटन। स्पेन के ला लीगा में आज लेवेंटे का मुकाबला ओसासुना से है। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बोरुशिया डॉर्टमुंड वर्सेस फ्रैंकफर्ट। इटली के सीरी अ में टोरिनो खेलेगा सासुओलो के खिलाफ। फ्रांस के लीग अ में लॉन्स नॉट। इंडियन सुपर लीग में दिल्ली का मुकाबला ओडिशा से। और प्रीमियर लीग में इस सप्ताहांत, इस वीकेंड के मैच, कल अर्ली किक ऑफ 3:30 PM लिवरपूल वर्सेस चेल्सी, फिर ब्राइटन वुल्व्स, फुलहम बोर्नमुथ, सनडरलैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी ब्रेंटफोर्ड। संडे मैच बर्नले एस्टन विला, क्रिस्टल पैलेस एवर्टन, नॉटिंघम फॉरेस्ट न्यूकासल यूनाइटेड, वेस्ट हैम यूनाइटेड आर्सेनल का स्वागत करेगा। और मंडे मैच टोटनहम हॉटस्पर वर्सेस लीड्स। चैंपियंस लीग के फाइनल में आकर आर्सेनल को 122 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग प्राइज मनी मिले हैं। अगर फाइनल जीत गए तो 10 मिलियन और मिलेंगे। लिवरपूल क्वार्टर फाइनल तक आया, प्राइज मनी टोटल 95 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, 95 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग लिवरपूल को मिलेगा। क्रिकेट IPL 2026 के ग्रुप स्टेज में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 9 रनों से हराया। लखनऊ की टीम में मिचेल मार्च 111 रन बना पाया। जवाब में विराट कोहली डक आउट 0 पर आउट। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है। अभी सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंक लिए पहले पोजिशन पर है। फिर आते हैं पंजाब किंग्स, उसके पास 13 अंक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के पास 12 अंक हैं। स्विमिंग की हमारी महारानी बन गई है अनिष्टा तिलक। अपने बर्थडे, अपने जन्मदिन के लिए 400 मीटर फ्री स्टाइल में नया रिकॉर्ड उसके नाम। 34 साल का पुराना रिकॉर्ड जो पहले कोरिन लिकलर के नाम था, अब अनिष्टा तिलक का हो गया है। अफ्रीकन चैंपियनशिप में एडन लिंगपिन अपना दूसरा मेडल जीत पाया, सिल्वर मेडल। 200 मीटर ब्रास में 100 मीटर में भी वो सिल्वर मेडल जीत पाया था। आप लोग भी, खासकर हमारे बच्चे, बच्चा पार्टी तैरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इस सोमवार से युवा एवं खेल मंत्रालय की पहल पर स्विमिंग क्लासेज शुरू किए जाएंगे। ये 7 और 17 साल के बीच के युवकों के लिए हैं। सेर्ज अल्फ्रेड बोबासें, पाविलियन, कैथरबोन, मार डालबे और रिविया जुरांपा में स्विमिंग क्लासेस होंगे। 13 और 14 मई को इंस्क्रिप्शंस होंगे। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। एस्टन विला ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के जंगल को तहस नहस कर डाला, 4-0 की शानदार जीत। फाइनल में है एस्टन विला और क्रिस्टल पैलेस भी कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में पहुंचा है। शाम को फिर से मिलेंगे। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। टेक केयर, बाय बाय।

0: थैंक यू स्पोर्ट्स न्यूज के लिए अरविंद जी.
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट.
2: RM2 Radio Musti.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: राइट फ्राइडे का दिन, तो फिर हम एक नज़र डालते हैं द मूवीज़। वैसे आपको बताया कि धुरंधर 2 स्टिल मेकिंग वेव्स, और वहीं पर जब शिवाजी साहब की आती है बात, तो उसके अंदर रितेश देशमुख की शाइनिंग बॉल ब्राइट एक मराठी मूवी है एंड काफ़ी कमाल कर रही है। और वहीं पर भूत बंगला इज ओके द मोमेंट, हमने जैसे सुना कि ठीक ठाक चल रही है। लेकिन अभी एक मूवी रिलीज हुई है,
4: यस, वो है कृष्ण अवतारम। कल को रिलीज हुई 7 मई को एंड इट जनरली रिसीव्ड मेनी पॉजिटिव रिव्यूज। उसकी सोलफुल स्टोरी टेलिंग, ग्रैंड विजुअल एस्थेटिक और सिंसियर परफॉर्मेंस के साथ इट वाज रियली गुड।
3: हाँ, और उसके गाने भी काफ़ी अलग स्टाइल के हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस कि एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा चलता रहता है, वहीं पर कुछ मैथोलॉजिकल और वहीं पर कुछ रिलीजियस और वहीं पर हम बात करते हैं तो डुशुम डुशुम से लेकर रोमांटिक। आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड क्योंकि हर किसी को कुछ अलग ही चाहिए और बॉलीवुड ये ऑफर करता ही है।
4: एग्जैक्टली, और ऊपर से उनका सोलफुल म्यूजिक साउंडट्रैक इस संग बाय प्रसाद एस, इरशाद कामिल भी है जो अच्छे अच्छे गाने वाले हैं। तो आप यही पर स्टे ट्यून, आपके लिए और भी खबरें लाते रहेंगे। अभी के लिए गाने को एंजॉय करते हैं साथ में और फ्राइडे को बनाते हैं फंडे।
1: रेडियो मस्ती, हिट म्यूजिक ओनली, फील्स अ मस्ती, रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: सुबह के 8 बजे है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्विन ने कल एबन में एक प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष नेता जुले रोंगो के बयान पर ही जवाब दिलन ओ बोलन की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच जे समझौता भेल रहल ओकर तय दर के पूरा पालन करल गल बा। मंत्री ई भी याद दिलैलन कि ई समझौता 2023 में भेल रहल जब जुले रोंगो ऊर्जा मंत्री रहलन। मंत्री ई भी बोलन कि एसटीसी रोजमर्रा के जरूरी सामान के आयात करी और ई खातिर जल्दी स्टैंडर्ड प्रक्रिया शुरू करल जाए। 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के एगो मजबूत मंच बन चुकल बा। हर 6 महीना पर ही आयोजित बैठक के मुख्य उद्देश्य बा ड्रग की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई मजबूत करे के। ये बरिस फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन भी इस समूह से जुड़ गल बा जमे अवैध धन लेन देन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकी। काला पोटली के लाइन बाराक्स में आयोजित बैठक लगावल गल सितंबर 2026 से मॉरिशस और रीयूनियन के बीच नागरिक सुरक्षा खातिर एगो नवा उपसमिति भी बनावल जाए। ई बरिस जुलाई महीना में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के 18वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित हुई। 4 दिन ने मोशवासी गल्फ

0: एन एस्टेट अफ्रीका और अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक चर्चा के केंद्र रही। आयोजक लोगन के अनुसार 2500 से जस्ती प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लियंजा, जेमें कम से कम 7 नेता भी शामिल रहियंजा। हर बरिस सड़क सुरक्षा दुर्घटना में लगभग 11,90,000 जना जान गवावे लंजा। दुनिया भर में हर दिन 3,000 से जस्ती जना सड़क हादसा में मौत के शिकार हो जालंजा। WHO के अनुसार सड़क दुर्घटना अब 5 से 29 बरिस के युवा लोगन में मौत के सबसे बड़ा कारण बन गलबा। विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 से 14 मई ले मनावल जाता। अधिकारी लोगन मांग करत हवन जा कि सावधानी से अधिकांश हादसा रोके जा सकेला। थिंक बिग एंड एक्ट ग्लोबल विषय पर आधारित नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल अवार्ड 2026 में 76 प्रतिभागी में से 12 महिला उद्यमी फाइनल ले पहुँचलन जा। रेजुइके को 2 टेक्नोपोल में आयोजित समारोह में 5 पुरस्कार प्रदान करल गल। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओयाना वोमारी महिला ठेकेदार लोगन से अफ्रीका और हिंद महासागर इलाका में नवा अवसर खोजे खातिर प्रोत्साहित करलन। उबुलन की वित्तीय सहायता तकनीकी सेक्टर में असमानता और पारिवारिक जिम्मेदारी आज हो चुनौती बनल बा। मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर के खिताब और 1,00,000 रुपया पुरस्कार अफ्रीकाना ग्रुप के जूलियन ब्रिजेट पेट्रोनिल के प्रदान करल गल। 6 मई ले मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामला दर्ज करल गल बा। ये बरिस के शुरुआत से अबले कुल संख्या 2,770 ले पहुंच गल बा। डॉक्टर फाजिल कोदाबुकस के अनुसार मौसम बदलत समय मॉरिशस महामारी के चरम स्थिति के करीब पहुंच गल बा। कौंदोस प्रयोगशाला में जांच के दबाव बढ़ गल बा। हालांकि स्वास्थ्य कर्मचारी लोगन 48 घंटा के भीतर PCR परीक्षण के परिणाम देवे के प्रयास करत हवन जा। अटलांटिक महासागर में गो क्रूज जहाज पर ही अंता वायरस संक्रमण के मामला सामने आवे के बाद स्वास्थ्य अधिकारी लोगन सतर्क हो गल हवन जा। अंता वायरस एगो गंभीर संक्रमण बा जे अधिकतर संक्रमित चूहा के संपर्क में फैलेला, जबकि इंसान से इंसान में संक्रमण बहुत ही कम की होला। हुर्मुज समुद्री मार्ग में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गल बा। ईरानी मीडिया के अनुसार इलाका में विस्फोट और गोलीबारी भइल, जबकि अमेरिकी सेना दावा कर ले बा कि ओकर युद्ध पोत पर मिसाइल ड्रोन और छोटा नौका से हमला करल गल। अमेरिकी सेना जवाबी कार्रवाई भी करलक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलन कि युद्ध विराम अभियो जारी बा, बकेर ईरान के समझौता पर हस्ताक्षर करे के पड़ी। तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर $102 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गल बा। तो ये रहल हमने के भोजपुरी में समाचार, हमने के सुनना जा, धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: ये 8:08 हो चला है, चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर जारी है। पूर्वानुमान आज सुबह के दौरान देश के ऊंचाइयों पर रहकर बरसात हो सकती है। अन्य जगहों में दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। रात को ऊंचे इलाकों पर मौसम खराब रहेगा, अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम साहली इलाकों पर 21 से 24, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त 5:44 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Envie de vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prix en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier plus facilement et toujours au meilleur prix. Et préparez-vous, la fête du pain arrive très bientôt chez Winners pour encore plus de bons moments autour de produits que vous aimez. Des prix en beauté, plus d'économies et toujours plus de plaisir chez Winners.
5: On est tous Winners!
1: Morning Beat. James.
2: RM2 Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: बीच बीच में आपके मॉर्निंग को इजी एंड हैप्पी बनाने के लिए हम आते रहेंगे।
3: क्या बात कर दी, वैसे तो हमने सोच लिया कि बीच बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, जरूरी है। नहीं, काम तो अभी शुरू हुआ है। नहीं, मैं कह रहा था कि अलार्म ने अपना काम कर दिया है और अगर आपका बॉस ऑनलाइन आ चुका है यानी कि आप लेट हो गए हैं। राइट right, लेकिन नो राजा, देखो ऐसा होता है कि रोड पर काफी लोग सोचते हैं यार लेट हो गया, जल्दी से गाड़ी भगाता हूँ। अरे स्पीड लिमिट है, बाकी ट्रैफिक रूल्स है, सबका पालन करो, इसलिए घर से निकलो थोड़ा सा टाइम पर। तुम जल्दी निकल जाते हो घर से?
2: हाँ जी, निकलना पड़ता है,
3: बहुत जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी कंप्लेन कर रही थी लड़की, सुबह सुबह उठना ना काफी मुश्किल हो रहा है।
2: मुश्किल है बहुत,
3: नहीं ठंड भी हो रही है ना, इसलिए काफी लोगों को लग रहा है कि इतनी ठंडी में उठो कैसे, पैर हाथ जम जाते हैं, लगता है काम नहीं हो रहा। एनीवेज मैं कहता हूँ कि मेल्स को करी छुट्टी और ये पीलो जन्म घुट्टी की म्यूजिक कमाल का है। राइट, प्रोडक्टिव डे के लिए एक ही मैजिक है, गुड मूड एंड गुड म्यूजिक।
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: राइट वैसे गानों कब कैसे किस सिचुएशन में यूज कर ले पता नहीं चलता नहीं। वहीं पर मम्मी कहती बेटा इतना लेट हो गया, कहाँ हो तुम? मम्मी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। राइट 24 past 8 in the morning, good morning.
1: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices. Milo, libère ta force. Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force. Nestlé, good food, good life.
0: हर दिन की शुरुआत परिश्रम, मेहनत, कोशिश, लेकिन इंसान कभी कभी घबरा जाता है कि कुछ करूंगा तो गलती होगी। अरे गलती कुछ और नहीं, एक सबक। इंतजार करोगे कब तक? गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि वही सबसे बड़ा टीचर होते हैं। जो गिर कर उठना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है, और वही असली ग्रोथ है।
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices. Milo, libère ta force. Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport. Milo, libère ta force. Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier. Milo, libère ta force. La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport. Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force. Nestlé, good food, good life. Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices. Milo, libère ta force. Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force. Nestlé, good food, good life.
2: RM2 Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: अय्या सभी के लिए आपके लिए गेम लेकर आए हैं.
3: Right, it's brought to you from Rogers Capital. जीतने का मौका और ये मौका है जीतने का 1,000 रुपए का वाउचर.
2: And वो भी Domino's पिज़्ज़ा की तरफ से.
3: मैं कह रहा हूँ कि वीकेंड का टाइम आ रहा है तो बहुत सारी प्लानिंग हो जाती है. वाउचर लेते ही दिमाग में जितने भी मेंबर्स इनको लेके जाना है क्योंकि 1,000 का कितना खाओगे, कितना चबा पाओगे, कितना डाइजेस्ट कर पाओगे. तुम्हारा लगता नहीं इतनी कैपेसिटी
2: है.
3: देने की जरूर है वाउचर 1,000 रुपए की. राइट क्वेश्चन आज के लिए.
2: एंड यस क्वेश्चन है, व्हिच कंपनी क्रिएटेड द नूला एप्लीकेशन. आपको भेजना है 5491294 पर अपने नाम और पते के साथ.
1: RM2 रेडियो मस्ती. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti feels a musty.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: और जी मॉर्निंग का टाइम मैं तो फिट हो गया और मॉर्निंग में मूड अगर ठीक हो, म्यूजिक चल रहा हो कमाल का, तो लगता है जैसे आपकी मूड ने पकड़ ली है रफ्तार, राइट? अभी के लिए तो हम चलते हैं अपने विनर के पास. और क्वेश्चन था,
4: क्वेश्चन था, व्हिच कंपनी क्रिएटेड द नूला एप्लीकेशन, एंड विनर हमारे बन चुके हैं, एंड वो है पीतों के रहने वाले क्रिश भरत जी. कांग्रेचुलेशंस टू यू.
3: कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको मिलता है रॉजर्स कैपिटल की तरफ से एक वाउचर 1000 रुपए का
4: डोमिनोज पिज्जा से. वाव.
3: और जवाब क्या था?
4: जवाब है रॉजर्स कैपिटल.
3: ऑफ कोर्स रॉजर्स कैपिटल ने बनाया है नूला एप्लीकेशन, जो कि आपको बहुत फैसिलिटेट करता है. आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिए और उसके बाद आपको कतार में नहीं खड़ा होना होगा, है ना?
4: यस, एक्चुअली ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ प्रोमो है, आप बिना कतार किए हुए खरीदारी कर सकते हैं अपनी नूला ऐप के जरिए.
3: यहाँ पे ना नीलमणि को बड़ा फनी लगा, कतार में खड़े हैं आप तो सोचते जैसे कंट्री है ना कतार, वहाँ पे खड़े हैं आप. नहीं, नॉट रियली. ऑलराइट, एनीवेज, टॉकिंग अबाउट रॉजर्स कैपिटल, आपको बता दें कि लाइसेंस बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन, और ये जो वाउचर है भाई साहब आप तक पोस्ट कर दिया जाएगा. सो आराम से बैठिए, इत्मीनान प्लान बनाइए एंड एंजॉय द म्यूजिक ऑन आराम टू.
0: Oh God, one more remix. A good beat for your morning show.
1: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: मॉर्निंग बीट
1: ओ गॉड वन मोर रिमिक्स
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
1: A good beat for your morning show. RM2.
2: Radio Musti.
3: जिंदगी क्या रफ्तार से आगे चल रही नहीं। वैसे बच्चों की बात करें तो उनके हाथ में अब AI है, इंटरनेट है। वहीं पर मम्मी कहती, बेटा कितना टाइम स्क्रीन पे रहोगे? और बेटा कहता, मम्मी डोंट यू वरी, क्योंकि मैंने उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल लो कर दी है। यानी हर चीज़ का उनके पास एक सोल्यूशन है। नहीं हाँ, वैसे ये तो है ही है। और अब आजकल उससे दूर भी नहीं रह सकते, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन आपकी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, या फिर आपको अपने जो असाइनमेंट्स है चेक करने हैं, ग्रुप वर्क करना है, और सब कुछ होते होते
4: सब कुछ मिल जाता है ऑनलाइन।
3: ये भी है, लेकिन दिमाग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। यू नो, हमारे टाइम पर लिखना शुरू और उसके बाद सब कुछ रिविजन बोल बोल के, सो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब तो टैबलेट हो या आपका स्मार्टफोन हो, सब कुछ अपने आप ही बोल पड़ता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे आजकल अगर बात करें इंटरनेट की, ये AI की, या फिर टेक रिलेटेड टर्म्स की, तो एक इंसान ने कहा कि मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी है, मेरा प्यार जैसे OTP बता दूं,
4: One time password.
3: हाँ,
4: तो बताया बॉस,
3: पता नहीं कब आता है और कब एक्सपायर भी हो जाता है। ऐसा ही मेरा प्यार OTP की तरह है।
1: Morning beat, a good beat for your morning show.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: अच्छा नलमणि, ये जो सुने सुना टन टन टन है ना, दिन में बजी घंटिया। अरे सुनो, एक टन कितना किलोज होता है? क्या हुआ? हेलो, एक टन कितना होता है? 1000 किलोज। तो थ्री टन कितना होता है?
1: 300।
0: अगर एक टन होता है 1000 किलो, तो थ्री टन होता है टन टना टन।
2: A good beat for your morning show. RM2
3: Radio Musti.
0: लड़की फंस गई। ये बहुत खुश करते हैं कि कुछ बोले ही ना। देखो लेकिन रेडियो है तो बात तो करनी पड़ेगी। और आए इतने सारे मैसेजेस, अभी हम उनसे मिल लेते हैं। कौन है हमारे साथ?
1: यस, हमारे साथ सुबह सुबह में है मेवा चंद्रानी जी, सेंजुनिया विलाज से है। वो विश करना चाहते हैं अपनी नीस को हैप्पी बर्थडे। हर नेम आपने नहीं लिखा, नाम ऐसे ही मैसेज छोड़ दिया।
0: हाँ नहीं, आजकल लिखते नहीं, वो टाइप करते हैं। टाइप क्या होगा ना?
1: हाँ,
0: टाइप करना भूल गया, मतलब
1: टाइप करना भूल गया।
0: ओके, ऑलराइट। और नेक्स्ट,
1: नेक्स्ट वी हैव अ प्लीज गिव अ सॉन्ग फॉर हुडा हिबात वाला रोज ननलोल, जो कि क्योपिप के रहने वाले हैं।
0: हेलो सभी के लिए। और वहीं पर कितने सारे हैं जो अभी एक कॉमन बस के अंदर, यानी कि वो जो पूलिंग करते हैं ना, वो छोटी छोटी बसेस होती हैं या फिर कारवांस होती हैं, उसमें निकल पड़ते हैं। और होता है कि चलो भाई मैं यहाँ से आ रहा हूँ, आई विल पिक यू ऑन द वे। तो वो भी ऐसे मस्ती के अंदर कलीग्स हों, दोस्त हों, ऑल द बेस्ट यू गाइस।
1: यस, और एक मैसेज है माधवी गुलजार जी से, जो कि थ्रियोले की रहने वाली है। वो बोलते हैं सॉन्ग सिलेक्शन बहुत फैबुलस है और डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट सॉन्ग उनके कलीग्स के लिए, जो कि मॉरिशस स्पोर्ट्स काउंसिल से है। ऑल द हैंडी वर्कर्स वर्किंग एट अंजाली स्टेडियम, कलीग्स के नाम भी लिखे हुए हैं बहुत ज़्यादा। आप है राजीव, अकदर, दर्शना, सेल्वी, गीता, आतिश, मिसेस दावी, जया, संदीपा, और भी है, बॉबी है, मनीता है, राजू जी है, विदुर है, जारा है, वीमा है, भोला है, नजीर है और नुसरीन है। एंड फॉर ऑल द बेस्ट फिल्म टीम, वो विश कर रहे हैं हैप्पी फ्राइडे।
0: हे, हैप्पी फ्राइडे टू यू। सो एंजॉय योरसेल्फ। और अभी थोड़ी देर में आने वाली है पूना आपका साथ देने के लिए इन योर मस्ट मॉर्निंग शो 9 से 12 के बीच में। हम जल्दी मिलते हैं। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव फैंटाबुलस फ्राइडे।
1: यस, ऐसे ही स्टे ट्यून्ड टू आरएम2 रेडियो मस्ती।
2: मॉर्निंग बीट। ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स। A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. The Musti.
3: टाइम चेक, सुबह के 9 बज रहे हैं। समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था। चलिए सुनते हैं उनसे संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आस्था।
4: नमस्कार जी हाँ, 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। व्यापार मंत्री माइकल सिक्योन ने कल इबन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में विपक्ष नेता जुली रोंगो के बयानों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मंत्री ने याद दिलाया कि यह समझौता वर्ष 2023 में तय किया गया था, जब जुली रोंगो ऊर्जा मंत्री थे। मंत्री ने यह भी कहा है कि एसटीसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का आयात करेगी और इसके लिए जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया जारी की जाएगी। वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। मुख्य उद्देश्य है ड्रग्स की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत बनाना। इस वर्ष एफसीसी की भी इस समूह से जुड़ गई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाया जा सके। आपको बता दें कि सितंबर 2026 से मॉरिशस और रीयूनियन के बीच नागरिक सुरक्षा को समर्पित एक नई उपसमिति भी स्थापित की जाने वाली है। अन्य खबरों में, इस वर्ष जुलाई महीने में अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में लगने वाला है। 4 दिनों तक मोशवासी गल्फ स्टेट अफ्रीका और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय आर्थिक और व्यापारिक चर्चाओं का केंद्र रहेगा। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में 2500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें 7 नेता भी होंगे। हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 90,000 लोगों की जान जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं आज 5 से 29 वर्ष के युवा

0: में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 से 14 मई तक मनाई जा रही है और इस बीच अधिकारियों का मानना है कि सावधानी और जिम्मेदार व्यवहार से ही अधिकांश हादसों को रोका जा सकता है। बुधवार 6 मई तक मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामले दर्ज किए गए। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2,470 तक पहुंच गई। डॉक्टर फासिल कोदाबुकस के अनुसार मॉरिशस इस समय महामारी के चरम पर है। कौंडस प्रयोगशाला में जांच का दबाव बढ़ चुका है, हालांकि स्वास्थ्यकर्मी पीसीआर परीक्षण के परिणाम 48 घंटे के भीतर देने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में हुर्मुज जलमार्ग में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ चुका है। ईरानी मीडिया के अनुसार क्षेत्र में विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई, जबकि अमरीकी सेना ने अपने युद्ध पोतों पर हमले का दावा किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम अब भी जारी है, लेकिन ईरान को अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर $102 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
2: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अरे आज तो मौसम हाय रे हाय, इतना अच्छा हो गया है ना, कूल कूल हवा और साथ में बारिश का साथ जो उठ गए हैं उनको ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग बोंजू। और जो अभी भी बेड में है, जिन्होंने रात भर काम किया है, उनको बस कहते हैं बाहर निकलिए, एंजॉय कीजिए आपका मस्त मॉर्निंग शो। मैं हूँ आपके साथ पूनम आर एम टू के साथ, और इन्जॉय कीजिए आपका ये प्रोग्राम और साथ में गाने।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:33 हो चुके हैं दोस्तों, जो प्यार में हैं उनकी सुबह तो ऐसी अच्छी अच्छी हो जाती है, और जब आता है कोई गुड मॉर्निंग का प्यारा सा मैसेज तो मूड अपने आप बदल जाता है और अच्छा सा हो जाता है। तो आपके भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं हमको, और मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो आप ये कह रहे हैं ललित जी USA से और अपने 15 स्टाफ के साथ में कह रहे हैं भैया बड़ा मज़ा आ रहा है, मॉर्निंग के गाने आपके होते हैं पर हमारी तो नाइट बन जाती है। तो कोई बात नहीं, इन्जॉय कीजिए सर और आपका पूरा स्टाफ, हम अभी आपके पसंद के गाने चलाएंगे। साथ में अमित जी हैं वाकवा से, और में कह रहे हैं सभी लोगों को, सभी लिसनर्स को कि अम्ब्रेला और जैकेट लेके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बाहर का मौसम सच में बहुत ही सुहाना है। साथ में यलेश जी भी जुड़े हुए हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई अगर बॉर्डर मूवी का दिलजीत दोसांझ का कोई गाना सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। बिल्कुल हम चलाने वाले हैं प्रिया, सुमेश, हमीशा, प्रिशा बेबी, कुकू, रविंदर एन, उनके साथ उनके हस्बैंड हरविंदर जी भी साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके हम नाम नहीं बता पाते हैं, पर यह है कि आपका साथ होना सबसे इंपॉर्टेंट है। इंजॉय कीजिए आपके beautiful songs morning morning musty morning ke naam.
1: You're listening to musty mornings
3: musty morning show.
1: Stay tuned, stay musty, radio musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: listening to Masti Mornings.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
0: Stay tuned, stay musty.
2: Must Morning Show.
0: Radio Musty.
3: Your daily horoscope.
0: RM2, Radio Musty.
4: तो गुड मॉर्निंग म्यूजिक स्माइल और गुड वाइब्स के साथ रेडी हो जाइए क्योंकि अब टाइम है आपके राशि फल का. तो सबसे पहले शुरू करते हैं
5: एरीज मेष राशि.
4: आज एनर्जी फुल ऑन रहेगी. आपका कॉन्फिडेंस लोगों को इम्प्रेस करेगा. आज एक नया काम शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो बस उसको कंसंट्रेट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आप क्या काम करने जा रहे हैं. तो ज़िंदगी में थोड़ा सा अच्छा रहे तो बहुत प्यारी चीज़ होती है. तो लकी कलर बनेगा आपका रेड. लकी नंबर है 9.
5: टॉरस वृषभ राशि.
4: आज आराम और खुशी दोनों साथ रहेंगे. आप अपने लोगों के साथ अच्छा फील करेंगे. आज छोटी बातें भी स्माइल दी जाएंगे आपकी जिंदगी में. तो लकी कलर बनेगा क्रीम. लकी नंबर है 6.
5: जेमिनी मिथुन राशि.
4: आज आपकी बातें सबको पसंद आएंगी. कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा. आज फन और एक्साइटमेंट बना रहेगा. लकी कलर बनेगा येलो. लकी नंबर है 5.
5: कैंसर कर्क राशि.
4: आज दिल खुश और हल्का रहेगा. फैमिली वाइब्स आपको अच्छा फील कराएगी. आज केयर और प्यार महसूस करने का दिन है, तो बस सबका साथ दीजिए और प्यार महसूस कीजिए. लकी कलर है व्हाइट. लकी नंबर है 2.
5: लियो सिंह राशि.
4: आज आपका चार्म शाइन करेगा. लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. आज खुद को एक्सप्रेस करने का बेस्ट डे है. तो लकी कलर बनेगा गोल्डन. लकी नंबर है 1.
5: वर्गो कन्या राशि.
4: आज फोकस स्ट्रांग रहेगा. काम आसानी से पूरे होते नजर आएंगे. आज सेटिस्फेक्शन फील होगा. लकी कलर है ग्रीन. लकी नंबर है 4.
5: लीब्रा तुला राशि.
4: आज मूड बैलेंस्ड और फ्रेश रहेगा. रिश्तों में स्वीटनेस बढ़ेगी. आज दिन स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगा. लकी कलर बनेगा पिंक. लकी नंबर है 7.
5: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
4: आज कॉन्फिडेंस हाई रहेगा. अपने आप गोल्स पर फोकस आप दे पाएंगे और आज आपको स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा. तो स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा सोच लीजिएगा. लकी कलर बनेगा मेहरून. लकी नंबर है 8.
5: सजिटेरियस धनु राशि.
4: आज एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी साथ रहेगी. कुछ नया करने का मूड बनेगा. आज लाइफ को इंजॉय करने का दिन है, तो अच्छे से इंजॉय कीजिए. लकी कलर है ऑरेंज. लकी नंबर है 3.
5: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
4: आज मेहनत का अच्छा फील मिलेगा. काम में स्टडी प्रोग्रेस रहेगी. आज आप प्रैक्टिकल सोच रखेंगे. लकी कलर बनेगा ब्राउन. लकी नंबर है 10.
5: एक्वेरियस कुंभ राशि.
4: आज क्रिएटिव आइडियाज आते रहेंगे. आप कुछ अलग सोच सकते हैं और एक्साइटमेंट और फ्रेशनेस आपकी जिंदगी में बनी रहेगी. तो लकी कलर बनेगा स्काई ब्लू. लकी नंबर है 11.
5: पाइसेस मीन राशि.
4: आज माइंड काम एंड पीसफुल रहेगा. आज छोटी छोटी खुशियां एंजॉय करने का दिन है. आज सॉफ्ट वाइब्स आपको हैप्पी रखेंगी. लकी कलर है पर्पल. लकी नंबर है 12. तो ये था आज का राशिफल. स्माइल के साथ दिन शुरू कीजिए और वाइब्स हाई रखिए. मैं हूँ आपके साथ पूनम. RM2 रेडियो मस्ती के साथ एंजॉय कीजिए आपके गाने.
3: Your daily horoscope.
0: RM2 Radio Musti. You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
2: Musty Morning Show.
0: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: टाइम चेक, सुबह के 10 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था, आपको नमस्कार।
7: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। इस वर्ष जुलाई महीने में अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा। 4 दिनों तक मॉरिशस अफ्रीका और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय आर्थिक और व्यापारिक चर्चाओं का केंद्र बनेगा। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में 2500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें कम से कम 7 नेता भी मौजूद रहेंगे। वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस यूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज इलाकाई सुरक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। मुख्य उद्देश्य है ड्रग्स की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत बनाना। इस साल फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन भी इस समूह से जुड़ गया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाया जा सके। सितंबर

0: 2026 से मॉरिशस और रीयूनियन के बीच नागरिक सुरक्षा को समर्पित एक नई उपसमिति भी स्थापित की जाएगी। अधिकारियों ने जोखिमपूर्ण गतिविधियों और वेश्यावृत्ति नेटवर्क जैसी साझा चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 11,090,000 लोगों की जानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं आज 5 से 29 वर्ष के युवाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 से 14 मई तक मनाई जा रही है। ये मनाया जा रहा है, अधिकारियों ने कहा कि सावधानी और जिम्मेदार व्यवहार से अधिकांश हादसों को रोका जा सकता है। बुधवार 6 मई तक मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामले दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2,470 तक पहुंच चुकी है। मॉरिशस इस समय महामारी के चरम पर है। कौंडस प्रयोगशाला में जांच का दबाव बढ़ गया है। हालांकि स्वास्थ्यकर्मी PCR परीक्षण और परिणाम 48 घंटे के भीतर देने का प्रयास कर रहे हैं। अटलांटिक महासागर में क्रूज जहाज पर फैले एंटीवायरस संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि ये COVID-19 जैसी नई महामारी नहीं है। WHO के अनुसार ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और नज़दीकी संपर्क से फैलता है। अब तक 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य अधिकारी जहाज से उतरे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का पता लगाने में जुटे हैं। WHO ने फिलहाल खतरे का स्तर कम बताए हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में और मामले सामने आ सकते हैं। दक्षिण पूर्वी मैक्सिको में आयोजित एक मेले में भीषण आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हुई। यह हादसा एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में लोग घबरा कर भागते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दोस्तों 10:07 हो चुके हैं और कहते हैं ना दिल अच्छा हो ना तो छोटी छोटी बातें भी बहुत खूबसूरत लगती है। और ऐसे बाहर का जो मौसम है ना जो इतना इस समय सुहाना और क्या वो तो और भी एक्साइटिंग लगता है। और बस कहते हैं कि ऐसा मौसम पूरे दिन रहे, पर जिनको कामों पे जाना होता है तो उनके लिए थोड़ा सा टेक केयर करना है, पूरे दिन की बात है। गीले बिल्कुल मत होइएगा, कहीं ना कहीं अपने शेल्टर ज़रूर लेते रहिए, कहीं शेड में बैठिए, कहीं धूप लगे तो वहाँ पर धूप ले लीजिए, और जहाँ पर लगे आपको आप गीले हो रहे हैं तो टिश्यू पेपर अपने साथ ज़रूर रखिए, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। अम्ब्रेला रख सकते हो, अपने कोई जैकेट वगैरह ले सकते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी फायदेमंद रहती हैं। साथ में अनीता जी फ्लिकॉम फ्लाग से जुड़ी हुई हैं और सबको कह रही हैं हैप्पी फ्राइडे, तो थैंक यू सो मच ये मैसेज के लिए। साथ में आज रनेश एंड रुशिका गुडलैंड्स में जो रहते हैं उनकी शादी है, तो पूरा परिवार डैरन श्वेता रविश प्रिशा लोवेश एंड होल अपादू फैमिली उनको विश कर रही है और कह रही है जिंदगी का नया चैप्टर है भाई, शुरू कर रहे हो मुस्कुराते हुए हंसते हुए एंड हमेशा प्यार से रहो। विनीता एंड पंकज की भी आज इंडिया में शादी है और पूरी ढले फैमिली उनको विश कर रही है और वो भी यही कह रही है जिंदगी बहुत प्यारी है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, खुश रहो हमेशा, एंजॉय करो। और उनके लिए एक गाना बढ़िया सा डांस वाला तो बनता है ना, चलो चलाते हैं और एंजॉय करते हैं उनकी शादी का, एंटरटेनमेंट हम कराते हैं आपको।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: RM2.
1: Radio Musty.
2: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: तो चलिए बात करते हैं एक फैशन की। तो एक फैशन के लिए फ्रेश फैशन टिप देते हैं कि कपड़े खरीदते वक्त सिर्फ आपको फ्रंट स्टाइल यानी कि जो फ्रंट साइड होता है उसको नहीं देखना है, आपको बैक फिटिंग भी चेक करना है, आपको हर एंगल से देखना है कि वो कहीं से फोल्ड तो नहीं हो रहा, कहीं से वो टूटा नहीं है, फटा नहीं है, कलर डिसमैच तो नहीं हो रहा। तो जो आउटफिट आगे से परफेक्ट लगते हैं लेकिन पीछे से फिटिंग लूज़ या फोल्ड होती है तो सच में बहुत ख़राब लगती है। तो सच मानिए, रियल क्लासी लुक्स वही होता है जब आपने हेयर बहुत अच्छे से किए होते हैं, कॉम या उसका स्टाइल बनाया होता है, बन बनाया होता है, उसको कर्ल्स किए होते हैं और एंगल्स जो होते हैं ना साइड सारी तरफ से बहुत अच्छा लगता है। और जो कलर्स मैचिंग होता है इसको भी बिल्कुल ख्याल रखिए, नेल पेंट लगाइए।

0: लगता है, न्यू ट्रेंड में लगता है, क्लासी लगता है, और अगर कुछ पुराना डाल रहे हैं तो उसके साथ में आप थोड़ा सा चूड़ियाँ डाल लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, और भी बहुत सारे आपको फैशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एक पूरा पैकेज होता है। फैशन सिर्फ एक चीज़ कपड़ों से नहीं होता, आपको सैंडल भी देखने हैं, आपको हाथ भी, स्किन भी, ग्लोइंग स्किन भी, और अपना मेकअप पर पूरा ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर आप लाइट मेकअप करेंगे तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा वेडिंग पे जा रहे हैं या किसी पार्टी पे जा रहे हैं और ठीक मेकअप करना पड़ भी रहा है तो आप कर लीजिए। क्या जा रहा है, लड़कियां हैं या लड़के, फैशन हमेशा ट्रेंडी होना चाहिए। एंजॉय कीजिए, ये आपका गाना।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: कार्टून ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन देखना ना भूले क्वार्टर फाइनल नंबर टू इस संडे को इस रविवार एमबीसी 3 6:30 PM कौन सी वो फोर टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन एमबीसी 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स Radio Musty feels a musty in the mix.

0: मस्ती।
1: कहते हैं कभी कभी एक इंसान ही पूरे दिन की खुशी बन जाता है, और कभी किसी का मैसेज आ जाए और किसी ने कॉल करके बस इतना पूछ लिया ना, अरे कैसे हो, ठीक हो, ध्यान रखना अपना, खाना पीना आराम से, तो बस वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट लगता है ना कि हाय रे किसी ने तो हमें पूछा। चलो भाई हमें कौन पूछने वाला है, हमें भी मैसेजेस से में कई लोग पूछ रहे हैं और कई लोग आप लोगों को पूछ रहे हैं, तो चले पूछ लेते हैं कौन कौन किसको पूछ रहा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं ललित जी और कह रहे हैं एक ढोलना मूवी का गाना चलाइएगा। तो भैया हमने चला दिया, अगर मुझे लगता है कि आप खुश तो हो गए होंगे, चलो भाई गैम्बो खुश हुआ। तो उसके साथ में ही श्याम देवी चरण जी हैं पेरेवेयर से और कह रहे हैं कि भाई गाने बहुत मस्त हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपका मैसेज आया, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में ललिता जीतन जी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं हॉट हॉट कॉफ़ी के साथ इंजॉय कर रही हूं आपके गाने और सारे कलीग्स और टीचर्स मिमी रोशी सिमी रानी लव्या लिली नीना ललिता एंड जीतन फैमिली जो कि लवोचिया से हैं, उनमें कह रहे हैं कि भाई इंजॉय करो, फ्राइडे का दिन है, फिर कल से मंडे से फिर बहुत सारे काम करने हैं, तो बस आपकी खुशी ही हमारी खुशी है। साथ में आशा जी आशा जानू जो कॉटेज से जुड़ी हुई हैं और सभी को यही विश कर रही हैं कि फ्राइडे है भाई, इंजॉय कर लो, उसके साथ में कुछ खा पी लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मामा कुमारी नेफ्यू शुभम ऋषभ दीदी आरती जीजू राज और सभी जानू फैमिली को बोल रहे हैं हेलो जी, सब कैसे हैं, सब ठीक हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। साथ में ही है आज किसका बर्थडे, वेरी गुड, बड़े अरे इतने सारे संगर जी जो कि फ्रांस से हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में जीना जी भी जुड़ चुकी हैं और वो भी इंजॉय कर रही हैं हमारे गाने। साथ में दीक्षा का आज बर्थडे है और फूफू मीला और देवी दिन और जो कि उन्हें विश कर रही हैं और बस यही बोल रही हैं कि भई तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसे ही बने रहो और इन्जॉय करो अपने गाने और साथ में बस इतना ही है पढ़ाई करते रहना। तो चलो वही फूफू है, फूफू का दिल तो करता है ना ऐसी बातें करने का, तो इन्जॉय करो आपका ही गाना।
2: Welcome to RM2
0: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक, सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। व्यापार मंत्री माकिया सिक्वेन ने एबेन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष नेता जुली रोंगो के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है। मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि यह समझौता वर्ष 2023 में तय किया गया था। उस समय जुली रोंगो ऊर्जा मंत्री थे। व्यापार मंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। माइकल सिक्वेन ने यह भी कहा कि एसटीसी रोजमर्रा के आवश्यक सामानों का आयात करेगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया जारी की जाएगी। थिंक बिग एंड एक्ट ग्लोबल विषय पर आधारित नेशनल वीमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल अवार्ड्स 2026 में 76 प्रतिभागियों में से 12 महिला उद्यमियों ने फाइनल तक अपनी जगह बनाई। कोदो में आयोजित समारोह में 5 पुरस्कार प्रदान किए गए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओयन्ना वोमाही ने महिला ठेकेदारों को अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र में नए अवसरों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता, तकनीकी सेक्टरों में असमानताएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर का खिताब तथा 1,00,000 रुपए की नकद राशि अफ्रिकाना शॉप की जूलियन ब्रिजेट पेट्रोनिल को प्रदान की गई है। वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस यूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। उद्देश्य है ड्रग्स की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करना। इस वर्ष एफसीसीपी इस समूह से जुड़ गई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाया जा सके। सितंबर 2026 से मॉरिशस और यूनियन के बीच नागरिक सुरक्षा को समर्पित एक नई उप समिति भी कायम की जाएगी। 6 मई तक मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामले दर्ज। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2,470 पहुंच चुकी है। डॉक्टर फाजिल कोदाबोकस के अनुसार मॉरिशस इस समय महामारी के चरम चरण के करीब पहुंच रहा है। कौंडस प्रयोगशाला में जांच का दबाव बढ़ गया है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मी पीसीआर परीक्षण के परिणाम 48 घंटे के भीतर देने का प्रयास कर रहे हैं। अटलांटिक महासागर में क्रूज जहाज पर फैले हंटा वायरस संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि ये COVID-19 जैसी नई महामारी नहीं है। WHO के अनुसार ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और नजदीकी संपर्क से फैलता है। अब तक 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है जबकि 3 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य अधिकारी जहाज से उतरे यात्रियों चालक दल के सदस्यों का पता लगाने में जुटे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिलहाल खतरे का स्तर कम बताया है लेकिन आने वाली हफ्तों में और मामले सामने आ सकते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कोट रॉयल पेटी राफ्रेमी 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री

0: चंद्रदत्त अनंत, श्री चंद्रदत्त अनंत की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें पेद्रो के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज शाम के 3:30 बजे उनके बेटे विक्रम अनंत के मकान रॉयल रोड पृथ्वीराफरे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पृथ्वीराफरे ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू दी एट 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Radio Musti.
3: Hit music only.
2: Feels a Musti. Radio Musti.
4: Welcome to RM2.
5: Musty Mornings. Radio Musty.
6: MBC Astia da Oulame. Nous présentons une nouvelle application MBC Play. Une nouvelle façon pour vivre vos programmes préférés directement au mobile, tablette, ordinateur ou même télévision. Get to ban chaîne en direct, écoute ban radio préférée, découvrir films, séries et si tu parles au journal télévisé, n'importe quoi tu étais. Download MBC Play lo App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec ou partout.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:10 हो गया दोस्तों, और क्या आवाज़ है अरिजीत सिंह की। मतलब आवाज़ सुनते सुनते ना, और गाना ये इतना अच्छा बनाया है। कहते हैं ना, बॉलीवुड के गाने सभी हर मूड के ऊपर बनाए जाते हैं। तो जब मूड अच्छा हो, चाहे सैड हो, चाहे कैसा भी हो, बॉलीवुड के गाने जो हैं हमारे को फिक्स कर देते हैं, उस फीलिंग में लेके चले जाते हैं, जहाँ पर हम कभी कभी जाना चाहते हैं, कभी नहीं जाना चाहते। बट हमें तो सारे मूड देखने पड़ते हैं भाई, आप सबकी पसंद जो होती है। तो चलिए भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं लेडीज़ के साथ। तो कहते हैं ना, हर चीज परफेक्ट करने के पीछे मत भागे। लेडीज ज्यादातर सोचते हैं कि घर भी, हस्बैंड भी, इन लॉज भी, अपने पेरेंट्स भी, दोस्त भी, परिवार भी, सब कुछ परफेक्ट हो। पर ऐसे में अगर आप घर चलता रहे और आप खुश रहें, वही बहुत होता है। तो सुबह उठते ही बस 2 मिनट सबसे पहले आप अपने लिए निकालें, स्ट्रेचिंग कीजिए। बेड पर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा सा गर्म गर्म पानी रख लीजिए कोई रात को कोई बॉटल में भरकर, और जब उठने से पहले 5 मिनट तक वो पी लीजिए। फिर देखिएगा आपका पूरा दिन बहुत ईजी जाएगा, आपको थोड़ा सा गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि घर में ऐसा माहौल बन जाता है कि बहुत सारे काम करने होते हैं। और लेडीज़ को होता है कि बच्चों को उठाओ, हस्बैंड्स को उठाओ, पेरेंट्स को पूछो, चाय पूछो, खुद कुछ नहीं कर पाती हैं, और बस ये डांटा डांटी में पूरा दिन निकल जाता है, और फिर मूड भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो पहले अब 5 मिनट अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा प्रेयर कीजिए, जो भी मूड बनाना है वैसा बनाइए, उसके बाद कुछ काम कीजिए। फिर उसके बाद देखिएगा आपका मूड भी अच्छा होगा, घर भी आराम से सारे काम हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि अरे ये ज़िंदगी ना प्रेशर नहीं है, बहुत हंसी मजाक वाली है, बस इंजॉय कीजिए। ये गाने आपके और मैं हूँ आपके साथ पूनम, और थर्ड आवर चल रहा है, तो इंजॉय कीजिए। और उसके साथ में अगर किसी को मैसेज भेजना है तो आप मुझे भेज सकते हैं 5491294 पर।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दोस्तों 11:28 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम के साथ मस्ती मॉर्निंग और साथ में आरएम टू रेडियो मस्ती। रेडियो मस्ती बस ऐसे ही है कि बस आपको एंटरटेन करना दिल करता है और बस हम ये कहते हैं कि आप अपने काम करो और साथ साथ कानों के पास बस रेडियो के लगे रहने दो और आप इंजॉय करो आपके फेवरेट सॉन्ग, लेटेस्ट सॉन्ग या पुराने सॉन्ग जो भी चल रहे होते हैं सब आपकी पसंद के ही होते हैं। तो हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं सोना जी जो कि इटली से हैं और वो कहती हैं एक बात कि जो भी फुल काम में लगे हुए हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं साथ साथ और जो

0: काम कर रहे हैं, बस एक बात याद रखिए, हॉबीज़ को पीछे मत छोड़िए। अगर थोड़ा टाइम अगर आपको मिले पेंटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, या आपको जो भी कुछ पसंद हो उसको करते रहिए, उसके लिए समय ज़रूर निकालिए। थैंक यू सो मच सोना जी इतना ब्यूटीफुल मैसेज भेजने के लिए, थैंक यू। साथ में गिरीश हरलोल जी भी साथ दे रहे हैं और उन्होंने एक गाना मांगा था, बट हम वो बहुत ही पुराना हो गया था, मतलब इस टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं था, थोड़ा सा एनर्जी आने दो सर, और वरना फिर सारे ऐसे सोते सोते काम करेंगे। तो चलिए भाई, आपने थैंक यू मैसेज किया और ब्यूटीफुल आपकी आवाज़ है, मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है। विजया जी भी जुड़ी हुई हैं और कह रही थोड़ा सा मूड ख़राब था बट अभी बिल्कुल सेट हो गया, क्या बात है क्या बात है। सीता गीता जी भोला राम फैमिली साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गाने अच्छे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, सुबह के सारे काम अपने आप हो रहे हैं। हाँ हाँ, अपने आप कुछ नहीं होता, करने पड़ते हैं, बट यह मूड फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो इन्जॉय कीजिए अपने ये गाने।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
3: Tune of the year 2026 Hindi quiz competition. Dekhna na bhule, quarter final number 2 is Sunday quiz, Ravivar, NBC3, 6:30 PM. Kaun si wo 4 teams hongi jo pahunchengi finals mein? Ye janne ke liye bhule nahi, Sunday ko 6:30 PM on NBC3 aa raha hai quarter final number 2, student of the year 2026.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: क्या बात है भाई, थर्ड आवर स्टार्ट हो गया हमारा और इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना, बट हम उसमें भी चूज करते हैं कि किसी को अगर हमारे कोई टिप से कोई फ़ायदा हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ दो तीन ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको कह रहे हैं कि भैया विंटर्स आ रहे हैं और हमको थोड़ा सा लग रहा है कि हमारी स्किन हमने थोड़े से गर्मियों में बहुत डार्क कर दी है, अब क्या कर सकते हैं, अंडर आर्म्स डार्क हो गए हैं, स्किन डार्क लग रही है। कई बार लोग जब लामिया जाते हैं यानी कि सी साइड जाते हैं तो भी स्किन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो आप इसमें बड़ा अच्छा सा एक काम कर सकते हैं कि अगर पहले तो हार्श और बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, अगर आप हो सके तो अपने सिंथेटिक कपड़ों को अवॉइड कीजिए, कॉटन कपड़े पहनिए, थोड़ा सा हो सके तो मॉइस्चराइज़र लगाइए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाइए। मतलब आपका जो रेगुलर एलोवेरा होता है ना, जो कि मार्केट से नहीं लिया होता, जो एलोवेरा जेल जो होता है जो पेड़ में लगा होता है, उसको थोड़ा सा स्क्रैप करें, उसमें थोड़ा सा सोडा डालें या थोड़ा सा उसके अंदर शुगर डालें, उससे थोड़ा सा स्किन को स्क्रब करें तो आपको देख लगेगा कि बहुत ही स्किन बहुत ही सुंदर और स्किन सॉफ्ट हो गया। एकदम से कोई भी स्किन एकदम से नहीं ठीक होती है, बट आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आप उस पर रेगुलर वर्क करेंगे तो देखिएगा कि आपकी स्किन चाहे चेहरा हो चाहे कोई भी ऐसे स्किन बॉडी के पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि भाई थोड़ा डार्क हो गया है तो उसको कैसे करा जाए, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी करें, उसके साथ दही खाएँ, थोड़े वेजिटेबल्स थोड़ा ज़्यादा खाएँ, थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीजिए, ये आपकी स्किन को भी हेल्दी करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको थोड़ी सी फीवर वगैरह ना हो तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें करेंगे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। कितनी भी टेंशन हो स्ट्रेस को कहिए बाय बाय और ये है आपका प्रोग्राम, आपका ही रेडियो मस्ती।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
3: Débat climat peut commencer. Banzenes qui représente 16 collèges à travers Maurice fin paré pour faire tendre la voie au changement climatique et son impact. Qui a une vision pour l'avenir? Débat climat est l'initiative groupe MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration de Dr. François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 9 mai à partir de 8h30 à soir pour premier épisode de MBCN et MBCSAT.
1: Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Chez McDonald's, il y a toujours une bonne raison de se faire plaisir. Et avec McSaver's, c'est encore plus simple et encore plus gourmand.
3: It's McSaver's time!
2: On pourrait t'en parler longtemps. Fini, toi! Du Junior Chicken and Cheese au Beef Burger avec la pizza McPuff. Zotto! Des McSaver's à partir de 50 roupies. Le vrai goût du partage à petit prix.
4: It's McSaver's time. Mon content, mon poche content.
2: McDonald's? Pa-la-pa-pa-pa. I'm loving it.
5: चलते चलते बस इतना ही. मौसम कूल कूल है, म्यूजिक फुल मूड में है, तो बस आप भी स्माइल करते रहिए, जुड़े रहिए RM2 के साथ. मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे नई मॉर्निंग मस्ती के साथ. मेरे बाद आएगी किनीशा रेट्रो रिदम लेकर.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं आस्था से संक्षिप्त समाचार। आस्था आपको नमस्कार।
7: नमस्कार। 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। व्यापार मंत्री माइकल सिक्योन ने कल एबेन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में विपक्ष नेता जुली रोंगकॉक के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है। मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि यह समझौता वर्ष 2023 में हुआ था। उस समय जुली रोंगकॉक ऊर्जा मंत्री थे। माइकल सिक्योन ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने ये भी बताया कि एससीसी रोजमर्रा के आवश्यक सामानों का आयात करेगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। थिंक बिग एंड एक्ट ग्लोबल विषय पर आधारित नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल अवार्ड्स 2026 में 76 प्रतिभागियों में से 12 महिला ठेकेदारों ने फाइनल तक अपनी जगह बनाई। रेजी में आयोजित समारोह में पुरस्कार 5 लोगों को दिए गए। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओयन नवोमाही ने महिला उद्यमियों को अफ्रीका और हिमसागर इलाके में नए अवसरों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता, तकनीकी सेक्टरों में असमानता और पारिवारिक जिम्मेदारियां आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। बुधवार 6 मई तक मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामले दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2,470 तक पहुंच गई। डॉक्टर फाजिल कोदाबोकस के अनुसार मॉरिशस इस समय महामारी के चरण पर है। कांडिस प्रयोगशाला में जांच का दबाव बढ़ गया है। हालांकि स्वास्थ्यकर्मी पीसीआर परीक्षण के परिणाम 48 घंटे के भीतर देने का प्रयास कर रही है। दक्षिण पूर्वी मैक्सिको में आयोजित एक मेले में भीषण आग लगने से कम 5 लोगों की मौत। ये हादसा एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुआ जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग घबरा कर बाहर दिखाई देती नजर आई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। नंबर 23 गुद्दे कासी पोटली में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की वृंदा हरनारायण की मृत्यु हो गई है। वृंदा हरनारायण की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम खेमराज, लोग उन्हें सुरेखा के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज सुबह 3 बजे उन्हें के मकान रॉयल रोड गुद्दे कासी पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालीन पोटली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
8: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: Retro Rhythm.
5: RM2 Radio Musti.

वेल गाइस, चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 12:09 हो चुके हैं। रेट्रो रिदम शुरू हो चुके हैं आपके और हमारे बीच में। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी के म्यूजिक लवर्स का इस खूबसूरत से शो में। तो चलिए जी, 5491294 पर योर दिल की बात लेके जाएंगे यादों की गलियों में आज। So stay tuned and stay connected. We're gonna kickstart this beautiful weekend with some mesmerizing gaane on RM2 Radio Masti, especially.

0: Retro Rhythm.
1: Well, guys, I really hope that you are really loving these beautiful and lovely गानों के selections जो लेकर आए हैं, especially आप लोगों के लिए on our time to radio mercy. 12:14 हो चुके हैं, you're listening to Kinesha right now, Friday 8th of May 2026. Yes, weekend यहीं से शुरू होते हैं और आपको तो पता है on our radio mercy जब भी weekend आ जाते हैं तो ढेर सारी खुशियां भी हम लेकर आते हैं और खूबसूरत गानों का selections भी, just to make you feel the vibes and kickstart this beautiful weekend. To all those जो अभी काम पे हैं और काम पे हमें सुनते सुनते अपना वक्त जो है जल्दी जल्दी और बोले कि हाँ जी फ्राइडे हैं तो वी नीड टू जस्ट कंप्लीट अवर वर्क एंड गो बैक सो दैट वी कैन रियली एंजॉय विद योर फैमिली एंड विद योर डियर वन. सो व्हाई नॉट, आई हैव गॉट यू द बेस्ट ब्यूटीफुल गानों का सेलेक्शंस 5499124 पर. आई हैव गॉट योर डेडिकेशंस एज वेल एंड वी डू हैव जाना जो काम कर रही है फ्लैग से. सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माय डियर एंड इवन फॉर रीमा जनीता शिष्टा आंसनी वी डू हैव सिल्विया एंड यू विक ऋषि से सगन परिवार जो साथ दे रहे हैं. हैव अ लवली टाइम माय ब्यूटीफुल. अ बिग हाय टू यू संगर फ्रॉम फ्रांस एंड the next one badwaga bidesi of tayak. Hello ji, kaise ho aap? Romantica na anushka kedan ke liye of mataba zarur ko zarur play karenge, a beautiful one for you. And I just wanna dedicate the next one for you with best wishes to Ranish and Rushika of Goodlands. And they are going to get married today. Unki shadi hai aaj, so dhe sara pya dhe sari shubkamnaye, my dear. That's coming from Darren Shweta, Ravish Prishalavish and Apadu families. Jo saath de rahe hain from Roshnoir. So thank you so much for choosing us as your radio partner and wishing all those who are getting married this weekend a happy married life. And chaliye ji, aap ki kasam, one of my favorite guinea. And yes, time flies and spaces as well, and even the clip of that song is still fresh in your mind, I guess. Romance and just romance, wow. And that's coming from Ghana, straight away here, all the way from Ghana. That's from Dini Himohan Punam. The next one goes out to you, my sweetheart. Chatubina Rese, we do have Ashni, Rika, Sureka and Madhav Parivar. Hey, thank you so much, my beautiful and lovely RM2 Radio Masti families, for being tuned on RM2 Radio Masti. Friday vibes, eh? To chaliye ki ek Usha Uthab ki awaaz mein ho jaye. 5499124 send me your dedications.

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल जी, न्यू रेट्रो रिदम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे, एक्चुअली वो गाने जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत होता चला जाता है। देखा जाए तो वो अल्फाज जो दिल को आज भी छू जाते हैं। तो आइए दोस्तों मिलकर जीते हैं फिर से उन हसीन लम्हों को जो आपके जिंदगी की सबसे बेस्ट हसीन लम्हे हुआ करते थे। दिल के कोने में आपने छुपा के क्यों रखा है? हम तो कहते हैं कि जियो, फिर से जियो उन्हीं लम्बों को, बार बार जियो इन खूबसूरत गानों के जरिए। सिर्फ यही कि आपके इसी शो पर रेट्रो रिदम हैपनिंग विद मी निशा राइट नाउ ऑन R2 रेडियो मस्त। फिलहाल के लिए चलिए जी, योर डेडिकेशंस ऑन 5499124 पर। एंड साथ में आपको याद दिला दे, द शो इज लाइव। यस, द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक R2 रेडियो मस्त। अगर आप चाहे तो यू कैन जॉइन द मस्ती राइट नाउ राइट देयर। एंड चलिए जी, फिलहाल के लिए वी डू हैव द नेक्स्ट वन स्पेशली याली शाम के लिए। आपने इतना प्यारा, मतलब प्यारे खाने खाने का फोटो भेजा है, पूरी भी है, सब्जी भी है, अचार भी है। ओए होए मेरे जान, क्या बात है। सो बोन अपेटिट टू यू याली शाम फ्रॉम सुरीनाम। एंड चलिए, किसी ने लिखा है, आई ओनली सॉन्ग धुरंधर इज कमिंग इन माई माइंड बाई लिसनिंग टू दैट सॉन्ग रंबा हो हो। ऑफकोर्स, एक्चुअली ओरिजिनल वाले कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि जो उनकी सीक्वल्स बनते हैं, जो दोबारा उनकी फिर से दोबारा बन जाते हैं वो गाना, तो ऐसा लगता है ना कि कभी कभी आप उनसे कि ओरिजिनल से भी ज़्यादा अच्छा, लेकिन इतना घुस जाता है ना दिमाग में। बट स्टिल उषा उठाव के ओरिजिनल गाना रंबा हो हमेशा हमेशा वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, वन ऑफ माई फेवरेट। हाई मॉरिशस, यस मिस्टर डे फ्रॉम City of Love from Paris. The next one, aapke pyar aapki biwi ke liye, thank you so much. And we do have Brinda Jogi, she's watching us live from the City of Love as well, from Paris. We have Vishal from Australia is watching us live right now. Hi Vishal, thank you so much for choosing us as your radio partner. We have Kaji Yaglagan, aapke dono babies ke liye, and aapke husband Rocky ke liye, Premila ke liye, she's watching us from Belgium. Thank you so so much. Anuradha bolte hai ek gana ho jaye Doreen aur Anu ke liye zarur. Anisa, the next one goes out to you. We have Vimi and Simla Yaglagan, aapke naam. Hi Nush 41, hey, I'm fine sweetheart, how are you? And we do have a Sinot Ji Yaglagan Dolat aapke liye, sare जर्नलिस्ट के लिए, गिनेशाव के लिए माधुरी दीक्षित का कोई गाना। चलिए अभी थोड़ी देर में जरूर अगना प्ले दैट फॉर यू। और वर्षा के लिए एक गाना हो जाए, शी इज वर्किंग राइट नाउ एट योर गवर्नमेंट स्कूल, सो कुराज टू यू माय डियर। नोरा ये अगला गाना आई जस्ट वांट टू डेडिकेटेड आपके लिए। तो बाकी जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, 5499924, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू द मैजिकल नंबर जहाँ पे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हियर वी गो, द नेक्स्ट वन गोज़ आउट टू यू।
0: RM2 Radio Masti.

0: स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन देखना ना भूले क्वार्टर फाइनल नंबर 2 इस संडे को इस रविवार एमबीसी 3 6:30 PM कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन एमबीसी 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल जी, गोरों की नाकालों की रेडियो मस्ती है दिल वालों की, और आप जैसे दिल वाले जब हमारे साथ देते रहते हैं तो वाकई दिल को बहुत ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो सो मच साथ देने के लिए। 12:45 हो चुके हैं, यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ राइट अवे ऑन आवर टाइम टू रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए चलिए जी, लेट्स चेक इट आउट योर डेडिकेशंस। लेकिन उससे पहले हम आपको जरूर कहना चाहेंगे टू जॉइन अस राइट नाउ, यस, ऑन आवर टाइम टू रेडियो मस्ती ऑन टिकटॉक वेयर द शो इज लाइव। वैसे हमेशा याद रखना दोस्त की जिंदगी एक सफर है दोस्तों, बिल्कुल कभी तेज तो कभी धीमी चलनी पड़ती है। वैसे हर पल का मजा लीजिए, छोटी छोटी खुशियों को अपनाए, छोटी छोटी खुशियों को आप सेलिब्रेट करते रहे अपनों के साथ, और हर दिन को एक नई सीख के रूप में देखिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हमेशा आपके साथ होगा। सो पॉजिटिव रहिए एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती एंड योर डेडिकेशंस आर आज फलोज। एंड हियर वी गो, आई हैव गॉट माय ब्यूटीफुल प्यारी सीख वीना फ्रॉम काटे मिली। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम। मैं ठीक हूँ, परिवार सब ठीक है मेरी जान। एंड चलिए अगला गाना आपके लिए, एंड विशिंग यू हैप्पी फ्राइडे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड माय डियर। सो देवी जी, कैसे हो आप? जय माता दी, आपको भी एंजॉइंग प्रोग्राम। आज ऑस्ट्रेलिया की बहू, ओए होए, ऑस्ट्रेलिया की बहू क्या बात है, सभी ऑस्ट्रेलिया की बहू है वो। एंड उनका नाम है वर्षा, उनकी जन्मदिन है। सो विशिंग यू हैप्पी बर्थडे। उनके पति विमल, बेटी एंड निया, बेटा वीर एंड तायाक के मम्मा भैया जो हैं अश्विन, भाभी देवीना, बेटे अलेशनव एंड रक्षित एंड ऑल राम रतन एंड राम गुलाम एंड कुआरू एंड गोरन सिंह परिवार की तरफ से थैंक यू सो सो मच। हे, आई एम फीलिंग सो नॉस्टैल्जिया बाय लिसनिंग टू दिस ब्यूटीफुल एंड लवली सॉन्ग। हाँ जी, दैट्स कमिंग फ्रॉम संगर। हे, विशिंग यू अ वेरी गुड आफ्टरनून अब्दुल जी एंड सैरा बानू जी, हैव अ गुड टाइम, यू आर हैविंग अ गुड टाइम रेडियो मस्ती के साथ, उसके लिए शुक्रिया जी। वी हैव नूश, ये अगला गाना आपके लिए, एंड किसी ने बोला है ऑन टिकटॉक वो हमें देख रहे हैं, नाम है मॉली शेफ। सो आपकी बीवी के लिए अगला गाना, एंड वी डू हैव अविश, अविश इज वॉचिंग फ्रॉम इंग्लैंड। हाय अविश, हाउ आर यू? वी हैव सीवी एंड वी हैव डॉलर जी एंड प्रकाश जी, ये अगला गाना आपके लिए। वी हैव आदिल एंड वी डू हैव हरि धनंजय जी एंड चलिए जी राजेश जी, ये अगला गाना आपके नाम भी है। एंड ब्रिंडा, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माय ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिलहाल के लिए बप्पी लहरी और जानकी के आवाज़ों में लेट्स ऑल एंजॉय द नेक्स्ट वन। बाकी ये सभी को तो पता ही है, जब मैसेजेस भेजनी हो तो इट्स ऑल हैपनिंग ऑन 5499124 पर।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नते बार बार।
1: कैसे?
0: ऐसे।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: बिल्कुल, हम भी गिन रहे थे 1-2-3 और हमने भी बोला आजा आजा आजा और हमारी प्यारी रजनी जी आ गई फॉर द न्यूज़, शी इज ऑलरेडी इन द स्टूडियो। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। ऑन राइट टू रेडियो मिस्टी चेक योर टाइम इज ऑलरेडी 1 PM।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती
2: नॉर्थ साउथ
3: 103.5,
2: ईस्ट वेस्ट
3: 96.4,
2: सेंटर
3: 99.4।
1: RM2
3: रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती।
0: आइए सुनते हैं समाचार रजनी के साथ। नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकनगुनिया कई बात करते हैं। मॉरिशस में चिकनगुनिया के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले जनवरी महीने में 2400 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इस तरह मॉरिशस महामारी को लेकर चरम तक पहुंच रहा है। पिछले 6 मई तक 147 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कि साल की शुरुआत से अब तक कुल 2470 मामले पाए जा रहे हैं। डॉक्टर फाजिल कोनामाकस ने समझाया कि देश महामारी चरम तक पहुंचने के करीब ही है, खासकर गर्मी और सर्दी के मौसम के बीच की अवधि में। रोड्रिग्स में भी एक मामला पाया जा रहा है। संबंधित सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही रहते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस के मामले भी देश में पाए जा रहे हैं, जिनके चलते संबंधित सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य के बाद अब चलिए अन्य प्रमुख चुनौती की बात करते हैं, जिससे दुनिया के कई मिलियन परिवार संबंधित हैं। दुनिया भर में रोज 3000 से अधिक लोगों की जानें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 1.19 मिलियन लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। 5 और 29 वर्ष की आयु के बीच के लोगों में मृत्यु का ये पहला कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से याद दिलाया जाता है कि अधिक जिम्मेदाराना तरीके से गाड़ी चलाने के चलते दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर, रुख करते हैं सबसे पहले चीन। चीन के ह्यूनान प्रांत में लियोलांग शहर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 तक हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। एशिया में ही रहते हैं, इंडोनेशिया में देश के पूर्व में स्थित दुकोनो ज्वालामुखी के विस्फोटित होने से कम 3 हाइकर्स की मृत्यु हो गई। राहत कर्मियों के अनुसार ज्वालामुखी के विस्फोटित होने के बाद से अन्य कई लोग अभी भी लापता हैं। मारे गए लोग ऐसी जगह में थे जहां पर उनका जाना मना था। इंडोनेशिया द्वीप समूह के इस इलाके में अभी भी खोज कार्य जारी है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 23 गुद्दे कासी पोर्ट्रीस में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बृंदा हरनारन पैदाशी नाम खेमराज, जो सुरेखा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ आज दिन के तीन बजे उनके घर नंबर 23 गुद्दे कासी पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालिन पोटलीस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रोथ रॉयल पेटी राफ्रे में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रदत्त अनोत जो पेदो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके बेटे श्री विक्रम अनोथ के घर रोथ्रॉयल पेटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेटी राफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3:30 PM। नंबर 77 मौसलमा ओबोन बॉम्बू में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री महादेव कहानू जो जिसिक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर नंबर 77 मौसलमा ओबन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ससुर व बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. Retro Rhythm.
1: RM2, Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: Welcome back in the second hour of this beautiful show, and that's your Retro Rhythm happening right now on our Into Radio Bestie with me, Ginisha Ji. Hi, 1:10 ho chuke hai, my dear lovely listeners. खूबसूरत गाने तराने स्पेशली फॉर यू, आई हैव गॉट यू द बेस्ट सिलेक्शन. सो कुछ हमारे पसंद के और कुछ आपके पसंद के ही. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर, एंड टू ऑल दोस जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है. आई जस्ट वांट टू विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी फ्राइडे गाइज, एंड आई विश यू टू हैव अ ग्रेट एंड लवली वीकेंड अहेड. और आपको तो पता है जब रेडियो मस्ती साथ देते हैं तो आपके वीकेंड को और भी जबरदस्त और भी धमाकेदार बनाते हैं. यू नो हाउ? क्योंकि हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे, सो दैट यू कैन रियली फील द गुड वीकेंड वाइब्स. एंड रिमाइंडिंग यू, दिस इज लाइव राइट नाउ ऑन टिकटॉक और इन टू रेडियो मस्ती. जी हाँ, आप हमें लाइव देख सकते हैं. जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला रियल मस्ती वहीं पे होता है, तो देरी किस बात की. फॉलो अस राइट नाउ राइट व्हेन यू गोना बी नोटिफाइड जब भी हम लाइव आएंगे. और फिलहाल के लिए 5499294 ऑफ गॉट योर डेडिकेशंस. एंड द नेक्स्ट वन जो है हम लेकर आए हैं ऋषि विदेशी फ्रॉम बॉम्बू, विशिंग एवरी लिसनर्स अ लविंग फ्राइडे ऑन आवर इन टू रेडियो मस्ती. एंड चलिए ये अगला गाना आपकी मूडी गर्लफ्रेंड के लिए जो बाबू की रहने वाली है, लेकिन नाम नहीं लिखा आपने. चड्डू जी कोई बात नहीं,
2: मीना
1: मीना नाम है उसका, शायद हो भी सकता है.

0: अरे कहाँ है तेरा ठिकाना।
1: You're listening to a Radio Mastery.

0: बिल्कुल जी, यही तो हम करने आए हैं ऑन ऑन टू रेडियो मस्ती। जितने भी हमारे आजिज आते हैं, गानों का सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन प्यार का सिलसिला भी चलता ही रहता है आपके और हमारे बीच में। हाँ जी, हम तो प्यार ना मांग रहे हैं, बस दे ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गानों के जरिए हमारा प्यार आपके घरों तक, आपके दिलों तक जरूर पहुँच रहे हैं। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन
1: ऑन टू रेडियो मस्ती।

0: Remembering late R.D. Burman on RMT Radio Message in your retro rhythm.
1: Retro rhythm.
0: तो जी कैसा लग रहा है आपको ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं। टाइम भी इतना चला जा रहा है जी हाँ, 1:21 भी हो चुके हैं। आज है फ्राइडे, आई है मेरी जान। अच्छा लगता है ना जब भी फ्राइडे आते हैं। एक्चुअली वीकेंड जब आ जाते हैं ना तो मैं तो हमेशा मानती हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि टेंशन वेंशन को ज़रूर छोड़ देना चाहिए। भूल जाओ, काम की फिक्र को भूल जाओ और शुरू करो अपना मस्ती का टाइम, और वो भी रेडियो मस्ती के साथ, हमारे सारे लवली लवली रेडियो मस्ती फैमिली के साथ। जी हाँ, डांस करो, म्यूज़िक सुनो और अपनी एनर्जी को फुल ऑन रिचार्ज करो। और ये है वीकेंड आपका जिसमें कि रेपेक 5499-1294 पर। चलिए जी, लेट्स चेक इट आउट योर डेडिकेशंस ऑन 5499-1294 पर। एंड हियर वी गो, ये अगला गाना जो है एंजॉय कर रही हो रेडी मस्ती को, अच्छी बात है। और ब्यूटीफुल मेमोरीज अगेन, थैंक यू सो मच हेमंत कुमार, फॉर पूनम, मुनिका, पल्लवी एंड क्या बोलते हैं विशाल, उमेश एंड अर्षी के लिए, सरोज, राजन, मुनिका, वी लव यू एंड रेडियो मस्ती, हैप्पी फ्राइडे टू यू, थैंक यू सो मच माई स्वीट हार्ट। सही, नमस्कार, प्रणाम, आपको भी एंजॉइंग ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक छोटी सी कविता जुड़ाई, कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे एक दिन जुड़ा हो जाओगे। अब मुझे मालूम हुआ तेरी मंजिल कितनी पास है और मेरी कितनी दूर है। ओके माय स्वीट हार्ट, माय मीट हार्डेल, दैट्स माय गायत्री फॉर श्योर, थैंक यू सो मच। सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड अनुषा, हे, हेक्टिक डे एट वर्क, फिर भी टेंशन वेंशन लेने का नहीं, देने का है मेरी जान। तो चलिए, कुराज टू यू एंड डेडलाइंस बहुत हैं, सो अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं जस्ट टू गिव यू वन ऑफ द अच्छे मूड सेट करने के लिए, डेडिकेटिंग द नेक्स्ट वन। लेकिन ये जो गाना आपने मांगा है ना, एक्चुअली रेट्रो रिदम में नहीं प्ले कर सकते हैं अब भी, तो आपको पता है लेटर वी हैव 70s, 80s एंड 90s के गाने लेकर आई हैं। एंड वी हैव सो मेनी पीपल वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक, ऑल राइट टू रेडियो मस्ती, थैंक यू सो मच। जी साथ देने के लिए कवितो बाय जो है आई गेस यू आर फ्रॉम इटली, तो चलिए नीतीश बुलाकी एंड द वेकिंग स्वैग से किया है आपका स्वागत। अविनाश बोलते हैं हमारी वाइफ जो है अनुषा समोसे गर्मा गर्म बना रही है, तो आप खा लीजिए। वाइजा कैसे हो, वालेकुम अस्सलाम आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी। एंड चलिए, किसी ने बोला थैंक यू सो मच फॉर द कंपनी। एंड तरन जी, ये अगला गाना आपके नाम, वी हैव सारा, अनिता पटब, आपके पति एंड आपके पति आडिया के, अच्छा पोती पति नहीं, छोटी सी ग्रैंड चिल्ड्रन है उनका, एक फर्स्ट बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे फ्रॉम अनिता। एंड हाय सारा, विशाल, बोन कुराज टू यू एज वेल। एंड जफूर फुदन जी, ये अगला गाना आपके लिए, वी डू हैव द नेक्स्ट वन टू एवरी वन, जी हाँ जो साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। तो चलिए, म्यूजिक तो हम ऐसे लेकर आए हैं कि आज बस आपको मजबूर कर देंगे डांस करने के लिए, सो जस्ट एंजॉय करते रहें। और वैसे मैं आपको बता दूं कि

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल जी, ये जो गाना था हमने लिया था फ्रॉम द मूवी सत्य पे सत्ता, और स्पेशली जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। और वैसे गा के क्या, हम तो सुनाते सुनाते थक नहीं जाते हैं विद दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गाने जो स्पेशली चुन चुन कर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। फ्राइडे 8th of May फॉर दोस जो आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। हेलो जी, हमारे पूरे रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आज सोना विश मैजिकल बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। एंड जिन जिन के घरों में शादी हो रही है, शहनाई बज रही है इस वीकेंड को, अरे ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। वर्षा गुरन सिंह फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हेलो, थैंक यू सो मच गिनी फॉर सच ब्यूटीफुल एंड स्वीट गाने। इट्स योर बर्थडे, हेलो ब्यूटीफुल, देन हैप्पी बर्थडे।

0: फ्रॉम रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, रेडियो मस्ती की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल माय स्वीटहार्ट एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम योर हस्बैंड अविमल, आपके बच्चे निया एंड अवीर एंड मम्मा, ब्रदर अश्विन, वी हैव सिस्टर इन लॉ डेविना और आपके नेफ्यूज लेशनव एंड रक्षिता एंड गुरन सिंह, परिवार जो है फ्रॉम तैयार का मोसे सुडेवी फ्रॉम वाकवा एंड हैव एन अमेजिंग फ्राइडे माय डियर एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। तो चलिए बर्थडे वाले गाना आगे पोटी आधिया के लिए हमने उनको विश कर लिया है। हैप्पी बर्थडे अनीता जी फ्रॉम फिकम फ्लैग एंड आप भी नाच रहे हैं रेडियो मस्ती को सुनकर। अच्छा, ये है हमारी प्रिश कृष्णी फ्रॉम कॉम्फो को, प्रणाम आपको भी। सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू कृष्णी जी एंड कृष्णी, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। माय स्वीट बेबी अंजलि के लिए आई लव यू सो मच एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम काव्या, और वो बोलते हैं बॉबी मूवी का एक गाना हो जाए।
2: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो,
1: सोचो सोचो
2: सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम
3: रेडियो मस्ती
2: एक कमरे में बंद हो,

0: स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन देखना ना भूले क्वार्टर फाइनल नंबर 2 इस संडे को इस रविवार MBC 3 6:30 PM कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन MBC 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती

थैंक यू जी साथ निभाने के लिए दिल की गहराई से. अभी फिलहाल के लिए ये 1:51 हो चुके हैं और इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू. आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा ये फ्राइडे वाला वाइब्स हमारे साथ ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती किक स्टार्टिंग द ब्यूटीफुल वीकेंड. आई रियली विश ऑल ऑफ यू टू हैव अ ग्रेट वन विद योर डियर वंस योर फैमिली एंड योर लव वंस. एंजॉय कीजिए, टेंशन वेंशन को मारो गोली, काम को साइड में रखो और बस अपने मन को रिलैक्स करो और साथ में हमेशा रखो आवर एंटी रेडियो मस्ती का जो टीम है. वी हैव अ लवली गानी. हियर वी गो. थैंक यू. बाय बाय. And God bless you all.

0: Music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Check your time. It's a sharp at 2 p.m. I'm Cynthia Samachar Rajni ke saath. Namaskar.
3: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक टिकाऊ कृषि और कृषि डाइवर्सिफिकेशन के लिए खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी के संदर्भ में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल और जूनियर मंत्री फैब्रिस डेविड ने कल रोजबेल सुगर स्टेट द्वारा संचालित कृषि जमीनों का दौरा किया। यहाँ पर जमीन तैयार की जा रही है जहाँ पर मुख्य रूप से सब्जी पैदावार की जाएगी। 300 बीघा कृषि जमीन में से 150 खेतिहरों के लिए निर्धारित, साथ ही अन्य जमीनों पर ईख के गन्ने उगाए जाएंगे। लोगों से वापस जमीन की ओर जाने के अलावा उत्पादन के फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किया जा सके। चलिए अब स्विमिंग तैराकी स्कूल की बात करते हैं। ये युवा एवं खेल मंत्रालय की पहल है जो इस मॉरिशस स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से संचालित मूल ढांचों के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों और छात्रों को तैरने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है। देश के 4 स्विमिंग पूल से संबंधित 18 में मौदालबेया, पावियों, कैटरबोन, रिवे जोपा और पुबासे स्थित सेर्ज अल्फ्रेड स्विमिंग पूल 7 और 17 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों के लिए ये निर्धारित है। 3 चरणों में ट्रेनिंग है और 14 और 24 सेशंस भी होंगे। संबंधित वेबसाइट पर 13 और 14 मई को रजिस्ट्रेशन होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकुनगुनिया की बात करते हैं। मॉरिशस में चिकुनगुनिया के मामलों में बढ़ोतरी नोट की जा रही है। पिछले जनवरी महीने से 2400 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इस तरह मॉरिशस महामारी को लेकर चरम तक पहुंच रहा है। पिछले 6 मई तक 147 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कि साल की शुरुआत से अब तक कुल 2470 मामले पाए गए। डॉक्टर फासिल कोदामाकस ने समझाया कि देश महामारी चरम तक पहुंचने के करीब ही है, खासकर गर्मी और सर्दी के मौसम के बीच की अवधि को लेकर। रोड्रिक्स में भी एक मामला पाया गया और साथ में देश में लेप्टोस्पायरोसिस के मामले भी पाए जा रहे हैं, जिनके चलते संबंधित सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है। विदेशी समाचारों में भारत में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के 4 दिन बाद शुक्रवार को आज बंगाल को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। गृह मंत्री व पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह की उपस्थिति में दोपहर बाद कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में नेता यानी मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 मई को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये जानकारी देते हुए एक लेख में भव्य दिव्य सोमनाथ धाम को समर्पित अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक विनाशक और ईरान के बीच गोलीबारी के बावजूद ईरान के साथ अभी भी युद्ध विराम जारी, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पहला हमला करने के आरोप लगा रहे हैं। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 23 रोद्दिकासी पोटलिस में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बृंदा हरनारन जो खेमराज, पैदाशी नाम खेमराज, जो सुरेखा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर नंबर 23 रोद्दिकासी पोटलिस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन पोटलिस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे आज 3 PM। रोद्रॉयल पेटी राफे में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रदत्त अनुत जो पिदो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके बेटे श्री विक्रम अनुत के घर रोद्रॉयल पेटी राफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेटी राफे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3:30 PM। शुक मेरुबेन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
4: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: more music in the mix.
1: Aaj Azadi Hai.
2: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: So चलिए दोस्तों, फ्राइडे आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम आप सभी का. 2:08 हो रहे हैं और इट्स 8th of May. मैं हूँ परी आपके साथ. मई का महीना तो शुरू हो चुका है एंड आई डू होप दैट इट्स ब्रिंगिंग लोड्स ऑफ गुड लक टू ईच एंड एवरीवन. हमारे सभी दोस्तों के लिए गुड विशेस तो हम पहुँचाते रहते हैं. अभी के लिए आपका और मेरा साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. मैं हूँ परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, जहाँ पर बी टाउन की खबरें कर रही हैं आपका इंतजार. कुछ खबरों के साथ कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स एज वेल और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑपरेशन सिंदूर को अब एक साल हो चुका है और इस पर फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने देश की सेना को सलाम किया है। उन्होंने सशस्त्र बलों के साहस को नमन करते हुए कहा, एक साल बीत गया है जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि शांति हमारा स्वभाव है लेकिन चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं। साथ ही उन्होंने लिखा, Years since India showed the world that peace is our nature but silence is not our weakness. Today I bow my head to the courage of the leadership led by Narendra Modi and a brave army and the one spirit of every Indian who stood united in the moment of national resolve. And perhaps the greatest tribute we can offer is to ensure the story of Operation Sindoor is told to the world. Truthfully, powerfully, so the world remembers what was defended, what was sacrificed and what it cost to keep humanity alive. History remembers wars and civilizations remember courage. ये पोस्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने, जो उनकी फिल्मों के लिए काफी जाने जाते हैं, उनके बेबाक ख्यालों के लिए काफी जाने जाते हैं। एंड ऑफकोर्स एक साल तो हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर को एंड वी ऑल नो दैट काफी बड़ा डिसीजन लिया था नरेंद्र मोदी ने उस टाइम। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो सलाम है। ऐसे ही हमारे जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उनको तो हम सलाम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिल्म मेकर्स हैं, कहते हैं ना कि भाई हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनके हाथ में काफ़ी पावर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं और जब कोई पोस्ट ऐसा आता है उनकी तरफ से, इट मीन्स अ लॉट। और अभी के लिए हमारे जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए। आफ्टरनून टाइम, इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। फ्राइडे आफ्टरनून है, दोपहर में कुछ प्यारे गाने और साथ में बी टाउन की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, आप भी साथ दे रहे हैं। तो नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस हैपनिंग 5499-1294 पर।
0: RM2 Radio Musti.

0: स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन देखना ना भूले क्वार्टर फाइनल नंबर 2 इस संडे को इस रविवार एमबीसी 3 6:30 PM कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन एमबीसी 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
1: वेलकम टू RM2 आता है मुझको प्यार में जल जाना
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक
3: चेक दिस आउट
2: रेडियो मस्ती रेडियो मस्ती फील द मस्ती
4: निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा
3: चेक दिस आउट
2: रेडियो मस्ती द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक
1: RM2
2: Radio Musti.
5: Hey famille, pas besoin de faire au shopping moyaz, pas besoin de place.
6: Côté Alcoury Fashion, nous nazis tout pour toute la famille.
5: Designer lehenga, lecha, jodhpuri, crop top, sherwani, costume complet, blazer et bien plus encore à bas prix imbattable.
6: Alcoury Fashion, route royale, vis-à-vis Jean des Pamplemousses, téléphone 57 99 37 82.
5: Alcoury Fashion, c'est tradition, élégance et qualité.
1: RM2
2: Radio Musti.
7: वेल सो लेटेस्ट हिट्स आपके लिए यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज जहां पर वी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं अभी के लिए वी हैव दिस गाना द लेटेस्ट वन फ्रॉम पति पत्नी और वो दो और ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम रहा है काफ़ी पॉपुलर इट्स वेरी पॉपुलर इंडी पॉप लेकिन अब मूवी में आने जा रहा है So, जब हम इसे देखेंगे मूवी पर यानी कि बड़े पर्दे पर उससे पहले आपको सुनाते हैं राइट या एक्सक्लूसिवली ऑन रेडियो मस्ती

0: then.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाए.

0: तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए एक और खबर बॉलीवुड की जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो वेल, जितने भी लिसनर्स हमारे सामने वाले हैं, एकता कपूर के बैनर बालाजी मोशन पिक्चर्स की फिल्म भूत बंगला, जिसमें अक्षय कुमार नजर आए, हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। और इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी 14 ईयर्स बाद फिर से एक साथ नजर आई है। इससे पहले दोनों ने हेरा फेरी, भूल भुलैया, गरम मसाला जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में साथ काम किया और भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच एकता ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पिता जितेंद्र और अक्षय कुमार के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए दिल छूने वाला पोस्टर लिखा है। एकता ने अपने नोट में लिखा है कि दोनों सितारों के बीच गजब की सिमिलैरिटीज है, खासकर उनका अनुशासन और निर्माता के जो विजन है उस पर मजबूत भरोसा। उन्होंने कहा कि ऐसे कलाकार ही इंडस्ट्री की कमर्शियल रीड को मजबूत बनाए रखते हैं, क्योंकि एक्टर्स का लगातार काम करना हर स्तर के प्रोड्यूसर्स के लिए मौका पैदा करता है। और उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह की मेहनत, समर्पण ने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने, रोजगार देने और इसकी रफ्तार बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। सो यहाँ पर तो तारीफों के पुल बांधती नजर आई एकता कपूर, क्योंकि उनकी जो फिल्म है अब फाइनली हिट हो चुकी है। वैसे इस फिल्म के साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी एंड फाइनली ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी है। सो वेल, अभी के लिए तो उसी फिल्म का ये गाने भी रहे काफ़ी पॉपुलर। लेकिन फिल्म की जो कॉमिक टाइमिंग है, वैसे मिक्स रिव्यूज आ रही हैं। कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत ज़्यादा कॉमेडी लग रही है, कुछ को लग रही है कि ये फिल्म ओके है। लेकिन जो भी रिव्यूज आ रही हैं, फिल्म हो गई है हिट। और जब फिल्म हिट होती है तो फिर लोग इसे देखते ही हैं। अब बड़े पर्दे पर देखें या फिर जब OTT पर रिलीज होगी तब देखें, लेकिन अभी के लिए तो आ रही हैं गुड रिव्यूज़। यह है एकता कपूर की ओर से, जो है अपने स्टार अक्षय कुमार और उनके पापा जितेंद्र के लिए।
1: You're listening to Radio Masti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: सो वेल फ्रेंड्स, फ्राइडे आफ्टरनून है और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 पीएम राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. लेकर आई हूं आपका अपना शो बॉम्बे टॉकीज. यहां पर हमारी टॉकीज तो चलती रहेगी, लेकिन इट्स टाइम कि आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी हम पहुंचाएं आपके अपनों तक. साथ दे रहे हैं आप 1549912 94. सो ऋषि विदेशी बॉम्बू से कहते हैं एक हैप्पी हैप्पी फ्राइडे टू ऑल रेडियो मस्ती लिसनर्स एंड स्पेशली गोज आउट फॉर माई मूडी गर्लफ्रेंड ऑफ बॉम्बू. ओहो हो, चलिए यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि जो गर्लफ्रेंड है आज उनका मूड उतना मूडी ना हो एंड शी इज ऑल सेट, ऑल हैप्पी हैप्पी आपके साथ इस फ्राइडे को हैप्पीली स्पेंड करने के लिए. साथ ही यहाँ पर मिस्टर सांगा साथ दे रहे हैं आप ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस. नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू. वी आल्सो हैव डेविसन फ्रॉम लाल माची हमारा साथ दे रहे हैं. सो वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. एंड भगवत विदेशी साथ दे रहे हैं, कहते हैं गाना हो जाए एक ब्यूटीफुल गाना फॉर अनुषा, वो भी साथ दे रही हैं ऑन रेडियो मस्ती. एंड यलेश इस वक्त साथ दे रही हैं और कहते हैं दैट एक प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म धुरंधर, इसे आप डेडिकेट करना चाहते हैं फॉर ऑल फैमिली शाम फैमिली ऑफ सुरिनाम. थैंक यू सो मच. साथ यहाँ पर सीता जी हमारा साथ दे रही हैं आप भी. ओके जी, आपका मैसेज हम तक पहुँच गया एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव, फॉर द केयर, फॉर द अफेक्शन, इट मीन्स अ लॉट. और नाम ही सीता है तो आप तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं. सो वेल थैंक यू सो मच. अभी के लिए अगला गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम. विशिंग यू अ हैप्पी फ्राइडे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस ऑन 5499-1294. फ्राइडे है और पेपी सॉन्ग्स, वी ऑल्सो हैव सम रोमांटिक सॉन्ग्स. और इस गाने को हम कैसे ना चलाएं. अरिजीत सिंह, अरमान खान की आवाजें फ्रॉम द फिल्म धुरंधर, अ ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना. सभी लिसनर्स के नाम स्पेशली गोज आउट फॉर यू यलेश एंड फॉर ऑल शाम फैमिली ऑफ सुरिनाम.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। रजनी से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। एक टिकाऊ कृषि और कृषि डाइवर्सिफिकेशन के वास्ते खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी के संदर्भ में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद उडेल और जूनियर मंत्री फैवेज दाविद ने रोजवेल शुगर स्टेट द्वारा संचालित कृषि जमीनों का दौरा किया। यहां पर जमीन तैयार की जा रही है जहां पर मुख्य रूप से सब्जी पैदावार की जाएगी। 300 बीघा कृषि जमीन में से 150 खेतीहरों के लिए निर्धारित, साथ ही अन्य जमीनों पर

0: ईख के गन्ने उगाए जाएंगे। लोगों से वापस जमीन की ओर जाने के अलावा उत्पादन से फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किया जा सके। कल बोपलों के एक पंप स्टेशन में चलाई गई ये कार्रवाई के बाद दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया जिनके पास से भारी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी को रोका जिसे निकोला कौंजी चला रहे थे। उनकी मॉरिशन एवं फ्रांसीसी दोहरी नागरिकता प्राप्त है। गाड़ी में अफसरों को 146 ग्राम से अधिक के तथाकथित हेरोइन मिले। ड्रग के कई पैकेट्स भी मिले और साथ में कैलिबर 12 की एक बंदूक भी। संदिग्ध व्यक्ति गुडलैंड के रहने वाले एक वॉचमैन बंदूक के साथ था। उसके बाद जांचकर्ताओं ने पेरेबिया में निकोला कौशी के घर पर छापा मारा। वहां से गांजा और हेरोइन के कई पैकेट्स मिले। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जिस पर मादक द्रव्य के निशान थे। दूसरे संदिग्ध के यहां पुलिस को शस्त्र और कैलिबर 12 की गोलियां मिली। संदिग्ध व्यक्ति ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया उसे जब्त कर दिया गया। बरामद मादक द्रव्य की लागत 2.7 मिलियन रुपए से अधिक की बताई जाती है। गांधीनगर नॉर्थवेस्ट के कैदखाने में पेश आए हादसे के बाद एक जांच शुरू की गई है। असल में दो कैदियों पर अस्थायी आरोप है कि उन्होंने एक अन्य कैदी पर हमला किया। 46 वर्षीय व्यक्ति को चेहरे पर चोट लगी। कैदखाने के एजेंट जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे। साथ ही अन्य दो कैदियों पर अन्यों ने हमला किया। कैदियों की मेडिकल यूनिट की ओर से तीनों घायल लोगों को संभाला गया। फिर इलाज के लिए उन्हें रोजवेल स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। सबसे पहले रुख करते हैं भारत, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 मई को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये जानकारी देते हुए एक लेख में भव्य दिव्य सोमनाथ धाम को समर्पित अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। और भारत से ये भी खबर है कि तमिलनाडु में यथापति विजय की पार्टी तमिलनाडु वेंट्री कजगम TVK के सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। CPI, CPIM, VCK और कांग्रेस ने TVK को समर्थन देने की घोषणा की है जिसके बाद पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक विनाशक और ईरान के बीच गोलीबारी के बावजूद ईरान के साथ अभी भी युद्ध विराम जारी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर सबसे पहला हमले करने का आरोप लगा रही है। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वामे, नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वामे 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री कुमार नेओल, श्री कुमार नेओल जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ थी कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वासे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले दे फतह की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 10 AM। फेलिक्स देवाटो शॉ दे माउस पोर्ट लुइस में, फेलिक्स देवाटो शॉ दे माउस पोर्ट लुइस में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री बिपिन रोही जो बिपिन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके घर फेलिक्स देवाटो शॉ दे माउस पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉकबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए यहाँ पर बी टाउन की खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं। सर के चुनर गाने के विवाद को लेकर आज बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुई और माफी मांगी। इससे पहले संजय दत्त और बादशाह भी इस गाने को लेकर माफी मांग चुके हैं। महिला आयोग से निकलने के बाद नोरा ने खुद इसकी जानकारी दी। नोरा फतेही ने कहा कि मैं इस मामले में NCW से माफी मांग रही हूँ और जिम्मेदार नागरिक बनना जरूरी है, इसलिए मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ले रही हूँ। ये समाज के लिए जरूरी है और मैं 100 अनाथ बच्चियों की शिक्षा को स्पॉन्सर भी करूंगी। बता दें कि फिल्म कैदी द डेविल के गाने सर के चुनर में महिलाओं को कथित तौर पर अभद्र तरीके से दिखाया गया, जिसे लेकर आयोग ने उन्हें एक समन्स भेजा था और उसी के चलते आज नोरा फतेही उनके सामने पेश हुई। सो अभी के लिए तो उन्होंने स्पॉन्सर किया है 100 ऑफन गर्ल्स को, जहां पर उनकी जो शिक्षा है उसे वो स्पॉन्सर करेगी। लेकिन उनका मानना है दैट उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं थी बल्कि जो लिरिसिस्ट हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे वो और भी प्रिकॉशंस लेंगी और ऐसा कोई मामला लाइफ में दोबारा ना हो, इसके लिए वो अच्छे से ख्याल रखेगी। सो वेल फ्रेंड्स, 3:30 हो रहे हैं, फ्राइडे आफ्टरनून, कनेक्टेड हैं आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ। आई डू होप दैट यू आर एंजॉइंग योर फ्राइडे। वैसे फ्राइडे तो अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है बिकॉज अभी तो काम खत्म होगा, उसके बाद आपके जो प्लान्स हैं वो रंग लाने वाले हैं। सो व्हाट आर द प्लान्स फॉर टुनाइट? आई एम श्योर काफ़ी सारे प्लान्स ऑलरेडी बन गए होंगे, दोस्तों के साथ, अपनों के साथ आउटिंग या फिर बस घर पर रिलैक्स चिलैक्स करना। जो भी है आपके प्लान्स, नॉट टू फॉरगेट RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ विद सम गुड म्यूजिक। सो दिस वन गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आफ्टरनून टाइम है, इसमें थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का हम भी लगा रहे हैं। साथ दे रहे हैं आप ऑन रेडियो मस्ती,
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti
3: वेल फ्रेंड्स इट्स 3:53 एंड इट्स टाइम फॉर परी टू से गुडबाय। जाते जाते यहाँ पर लॉन्ग लिस्ट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस की ललिता जीतन साथ दे रही हैं एंजॉयिंग द प्रोग्राम साथ में इलायची चाय। क्या बात है, परफेक्ट आफ्टरनून। बॉलीवुड सॉन्ग्स और इलायची वाली चाय की चुस्कियां, इससे परफेक्ट और कुछ हो नहीं सकता। सो एंजॉय योर फ्राइडे आफ्टरनून। डेडिकेटिंग गाना पूरा परिवार के नाम, सभी परिवार जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरोज, कुमारी, रतन, वीना, गीता, ज्ञानती, दो भाई है संजय एंड विजय एंड सभी जीतन परिवार जो लावांचे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू कुमार देवीचंद, आप भी इस वक्त कुकिंग कर रहे हैं एंड एंजॉयिंग द प्रोग्राम। अगला गाना होगा फॉर लवली डैड श्याम देवीचंद, साथ दे रहे हैं पे बैसे। एंड वेल यहाँ पर झाना जी ऑल द वे फ्रॉम फ्लाक आई हैं अपनी गोरी गुड विशेस के साथ, कहती हैं रेडियो मस्ती सुन रही हूँ और काम करते जा रही हूँ। ऐसे में एक प्यारा सा गाना आप जरूर डेडिकेट करें पूरे परिवार के नाम। बेटियाँ हैं रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी, सिल्विया, साथ में है यूवी, कृषि, शिवसरन परिवार फ्लाक से हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप। मिस्टर सांगा फ्रॉम फ्रांस आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, सो आपका वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। एंड वेल कहते हैं थैंक यू सो मच अनुषा, साथ दे रही हैं आप। अगला गाना होगा आपके नाम और कहते हैं धुरंधर द रिवेंज इज कमिंग ऑन 15th ऑफ मे। वाह जी वाह, कौन है ये? ओटीटी पर रिलीज हो रही है, आपने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन थैंक यू फॉर द गुड न्यूज। यहाँ पर आप भी तो न्यूज शेयर कर रही हैं। सो इंतजार रहेगा 15th ऑफ मे का। और अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। यहाँ पर गानों का कारवा आपके लिए जारी रहेगा। इट्स गोइंग टू बी टाइम फॉर योर फ्राइडे मैशअप, सो कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। एंड वी ऑल्सो हैव रिया कमिंग अप नेक्स्ट इन खूबसूरत गीतों के साथ। सो मुलाकात होगी जल्द। हैप्पी फ्राइडे एंड गुड विशेस, हैव अ वंडरफुल वीकेंड।
2: वेलकम वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
4: रेडियो मस्ती
5: हिट्स, म्यूजिक ओनली
4: फील्स अ मस्ती।

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: RM2 Radio Musty.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musty.
0: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
5: अपनी घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 4 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम रजनी के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको रजनी।
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं कृषि के साथ। जी हाँ, एक टिकाऊ कृषि और कृषि डाइवर्सिफिकेशन के लिए खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी के सिलसिले में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद दुलेर और जूनियर मंत्री फाविज दाविद ने रोजवेल शुगर स्टेट द्वारा संचालित कृषि जमीनों का कल दौरा किया। यहाँ पर जमीन तैयार की जा रही है जहाँ पर मुख्य रूप से सब्जी पैदावार की जाएगी। 300 बीघा कृषि जमीन में से 150 खेती के लिए निर्धारित, साथ ही अन्य जमीनों पर ईख के गन्ने उगाए जाएंगे। लोगों से वापस जमीन की ओर जाने के अलावा उत्पादन से फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किए जा सके। कैप मालेगांव में कैप लिस्पोर शेल्टर के मैनेजमेंट की ओर से बताया जा रहा है कि वहां पर खाद्य सुरक्षा तथा साफ सफाई और किस्म को लेकर नियंत्रण प्रक्रियाएं बढ़ाई जा रही है। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय द्वारा कल प्रकाशित एक विज्ञप्ति से ये बात सामने आई। असल में शेल्टर में रहने वालों के लिए निर्धारित भोजन परोसे जाने में बर्गर ब्रेड खराब होने के तथाकथित आरोप मिलने पर सोशल मीडिया पर चित्र दिखाए गए, जिसके बाद ये मामला सामने आया, प्रतिक्रिया सामने आई। इसके अलावा विज्ञप्ति में ये भी बताया गया कि मामले को योग्य अधिकारियों के हवाले किया गया है, जैसे पुलिस और विभिन्न जगहों पर स्थित सैनिटरी दफ्तर। बोपलों के एक पंप स्टेशन में चलाई गई एक कार्रवाई के बाद दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद हुए। बताया जाता है कि बरामद मादक द्रव्य की लागत 2.7 मिलियन रुपए से अधिक की है। गांधीनगर नॉर्थ वेस्ट के कैदखाने में पेश आए हादसे के बाद एक जांच शुरू की गई है। दो कैदियों पर अस्थायी आरोप है कि उन्होंने एक अन्य कैदी पर हमला किया। 46 वर्षीय व्यक्ति को चेहरे पर चोट लगी। कैदखाने के एजेंट जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे, साथ ही अन्य दो कैदियों पर अन्यों ने हमला किया। कैदियों की को मेडिकल यूनिट की ओर से तीनों घायल लोगों संभाला गया, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें रोजवेल स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। विदेश समाचारों की ओर बढ़ते हैं। रुख भारत। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन की घड़ी आ गई। कोलकाता में जारी बीजेपी विधायक दल की बैठक से बड़ी खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी को पार्टी ने अपना नेता चुन लिया है और वे बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह और मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। शुभेंदु अधिकारी कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक रायगेट परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: It's not just about the music, it's about the feeling.
2: Friday Mashup, Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: Good afternoon, Saveko, and welcome to Radio Musti. अभी हम घर में लाते हैं 4:09 और क्या खूबसूरत मौसम है आज, न ज्यादा धूप न ज्यादा बादल, बस एक परफेक्ट फ्राइडे वाइब, बिल्कुल वीकेंड जैसे फील हो रहा है। और जब मौसम भी मूड के साथ हो तो रेडियो मस्ती पर शुरू होता है फ्राइडे मैशअप। मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया, और आज का सफर होगा फुल म्यूजिकल रोलर कोस्टर। थोड़े स्वीट गाने, थोड़ी एनर्जी, थोड़ा रोमांस, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, मतलब सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। शो की शुरुआत हुई है एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, गजब का है दिन, इट्स अ ब्यूटीफुल वन फ्रॉम द मूवी सनम री। आज का दिन वाकई गजब का है। सो वेयरएवर यू आर, ऑफिस में, गाड़ी में, या ऑलरेडी वीकेंड प्लानिंग मोड में, वॉल्यूम आप बढ़ा ही दीजिए, because thank god it's a friday, so let's get into the friday mood. Hamare saath friday mashup aap enjoy kar sakte hain, and not to forget aapke dedications, aapke messages on 5499194, and I just hope that you enjoy your ride. Aap gaadi chala rahe hain dhyan se, I know traffic mein bhi shayad phans jayenge, koi baat nahi, agar aap hamare saath connected hain to ye jo safar hai ise musical hum bana hi denge, and we'll get it interesting as well. So hamare saath yahi aap connected rahi, loads and loads of love goes out to all of you, aur aasha karti hu ki aap bhi hamara saath full on dene wale hain.
1: It's not just about the music, it's about the feeling.
0: Friday Mashup. Get down. Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: वेल, फ्राइडे का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होता है वो जब दिमाग

0: दिमाग ऑटोमेटिकली काम से वीकेंड मोड में शिफ्ट हो जाता है, ईमेल्स ये सब स्लो हो जाते हैं और स्माइल्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और दिल हमारा कहता रहता है कि अब बस म्यूजिक ही चाहिए। फ्रेडी मैशअप का रूल बहुत ही सिंपल है, नो स्ट्रेस नो रॉ लिमिट। जी हाँ, सिर्फ गुड म्यूजिक और गुड वाइब्स लेकर आते हैं आपके नाम। और जैसे कि आपको बताया था दैट इस आवर में हम लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत गाने, सभी प्रकार के गाने। जी हाँ, अगर आपको सॉफ्ट गाने पसंद है तो सॉफ्ट मिलेंगे, अगर आपको एनर्जेटिक फ्राइडे वाला फील्स चाहिए तो ये भी आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर। सो आप रेडी हो जाइए क्योंकि नेक्स्ट गाना थोड़ा सा सुकून देने वाला है, क्योंकि वी गॉट अ सॉफ्ट गाना यहाँ पर। फ्राइडे मैशअप को हम शुरुआत तो कर चुके हैं, इसकी शुरुआत, बट इसे हम आगे बढ़ाते ले चलेंगे बट एक दो टच ऑफ मिठास के साथ। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रैक, इट्स अ ब्यूटिफुल वन फ्रॉम द मूवी सुल्तान।
1: It's not just about the music, it's about the feeling.
2: Friday Mashup. Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: और ये था तुम ही हो बंधु मूवी कॉकटेल से लिया गया ये गाना 2012 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, लेकिन ऑनेस्टली लगता ही नहीं कि इतने साल बीत गए. आई थिंक 14 साल बीत गए हैं एंड यस बहुत टाइम हो गए है. एंड कुछ गाने होते ऐसे जो सिर्फ हिट नहीं होते वो टाइमलेस बन जाते हैं और कॉकटेल मूवी का म्यूजिक एग्जैक्टली वैसा ही था. फ्रेश अप एंड यंग एंड फुल फील गुड वाइब्स, चाहे तुम्हें हो बंधु हो दारू देसी या सेकंड हैंड जवानी, हर सॉन्ग ने एक जनरेशन का वीकेंड साउंड ट्रैक बनाया था. एंड अब लेट मी टेल यू अबाउट द एक्साइटिंग न्यूज कि कॉकटेल 2 भी जून में रिलीज होने वाली है. सो इट्स बहुत ही जल्द. फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड है देखने के लिए कि इस बार स्टोरी म्यूजिक और वाइब किस डायरेक्शन में जाएगी. लेकिन एक बात तो पक्की है कि ओरिजिनल कॉकटेल ने जो म्यूजिकल हैंगओवर दिया था वो आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है. फ्राइडे मैशअप चल रहा है रेडियो मस्ती पर और नेक्स्ट गाना भी इसी फ्राइडे फीलिंग को और भी परफेक्ट बनाएगा. सो स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ यूं ही आप फ्राइडे मैशअप के फील गुड गाने एंजॉय करते रहिए.
1: It's not just about the music, it's about the feeling.
2: Friday Mashup. Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
3: Radio Musti in the mix.
4: घड़ी मिलाते चलिए 4:40 और अभी स्टूडियो में आ गए हैं अरविंद. सुनते हैं आजकल स्पोर्ट्स जगत में हो क्या रहा है. हेलो एंड गुड आफ्टरनून आपको अरविंद.
5: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. वीकेंड आने वाला है और डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैपनिंग. प्लान खाके खासतौर पर जब रोडिगेशन फिर चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन की बात हो या फिर टाइटल जीतने की बात हो. इट मे हैपन इस वीकेंड को. सो इसे पहले बता दें आज चैम्पियनशिप प्रमोशन प्ले ऑफ का सेमीफाइनल है हल सिटी और मिलवॉल के बीच. ये आज के मैच स्पैनिश ला लीगा में लेवेंटे ओसासुना, जर्मनी के बुंदेश लीगा में डॉर्टमुंड फ्रैंकफर्ट, इटली के सीरी आ में टोरिनो सासुओलो. ये आज के कुछ मैच हैं. फ्रांस के लीग में लॉन्स खेलेगा नॉर्थ के खिलाफ और इंडियन सुपर लीग में इसी समय मैच चल रहे हैं दिल्ली और ओडिशा के बीच. 2-0 से ओडिशा की टीम आगे हैं. तो ये तो आज के लिए. कल के जो मैच होंगे स्टार्टिंग विद लिवरपूल वर्सेस चेल्सी अनफील्ड रोड में 3:30 अर्ली किक ऑफ. लिवरपूल और चेल्सी दोनों चैंपियंस लीग फुटबॉल की तलाश में है. चेल्सी के लिए तो अब

नामुमकिन है। लिवरपूल के लिए ज़रूरी है जीतना, और अगर जीत जाए तो इट शुड बी इन द पॉकेट। अन्य मैच जो 6 बजे से खेले जाएंगे, ब्राइटन वुल्व्स, फुलहाम बोर्नमाउथ, संडरलैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी ब्रेंटफोर्ड। सो ये कल के मैच, और परसों बर्नली एस्टन विला, क्रिस्टल पैलेस एवर्टन, नॉटिंघम फॉरेस्ट न्यूकासल यूनाइटेड और वेस्ट हैम यूनाइटेड आर्सेनल। ये लोग सोमवार को टोटनहम हॉटस्पर खेलेगा स्पर्स वर्सेस लीड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पर्स लीड्स के खिलाफ हैं। द स्पर्स यानी टोटनहम हॉटस्पर, दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। इधर वेस्ट हैम यूनाइटेड भी फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, और वेस्ट हैम यूनाइटेड खेल रहा है लंदन राइवल, न केवल अपना लंदन राइवल बल्कि टोटनहम हॉटस्पर का भी लंदन राइवल आर्सेनल के खिलाफ। सो टोटनहम हॉटस्पर के फैंस चाहेंगे कि आर्सेनल वेस्ट हैम को हरा कर टाइटल जीते, या फिर चाहेंगे कि वेस्ट हैम यूनाइटेड आर्सेनल को हरा कर वो टाइटल जीतने से रोके। सो अभी डबल साइडेड हैं ये दोनों। नॉटिंघम फॉरेस्ट जो एलिमिनेट हुआ अभी हाल ही में फ्रॉम द यूरोपा कप, वो भी सुरक्षित नहीं अभी तक न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ। देन बर्नले एस्टन विला, एस्टन विला उसका सिचुएशन उस अभी चैंपियंस लीग से 5वें पोजीशन पे है, सो द लास्ट वन। लेकिन एस्टन विला के पास और एक रास्ता है, अगर वो यूरोपा कप जीतता है और इवन टॉप 5 में नहीं आता तो वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। सो अभी के लिए 76 पॉइंट्स आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी 71, मैनचेस्टर यूनाइटेड 64, फिर आता है लिवरपूल 58, एस्टन विला के पास भी 58, बोर्नमाउथ के पास है 52। तो 3 मैच खेलने हैं अभी, लिवरपूल, एस्टन विला और बोर्नमाउथ के बीच 6 अंकों का फासला। अगर एक मैच कल लिवरपूल जीत जाए सो द कैच शुड बी इन द बैग। जबकि चेल्सी 48 पॉइंट्स, वो लिवरपूल को या फिर एस्टन विला को नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन यूरोपा कप में जाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना होगा। नीचे वेस्ट हैम यूनाइटेड, बर्नले और वुल्व्स तो पहले से ही आउट हैं। वेस्ट हैम यूनाइटेड 36 पॉइंट, स्पर्स केवल एक अंक ऊपर, नॉटिंघम फॉरेस्ट 42 पॉइंट्स, वो अगर कल अपना कोई रिजल्ट लाता है सो दे कैन क्वालिफाई फॉर, बच जाएगा प्रीमियर लीग से, जाएगा नहीं। कुछ अन्य खबरें फुटबॉल से ही, यिमेनेज को सस्पेंड कर दिया गया है, बोर्नमाउथ ने उसे सस्पेंड किया है, डिफेंडर एलेक्स यिमेनेज को। ये कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट को लेकर बातें चल रही हैं। इधर लिवरपूल के मैनेजर आर्ने स्लॉट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसाक और मामादाश्विली ट्रेनिंग ले चुके हैं, एलिसन अभी ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। सो शायद देखा जाएगा इसाक को या फिर मामादाश्विली को कल खेलने का मौका दिया जाए, लेकिन दे हैव जस्ट जॉइन द ट्रेनिंग, शायद चेल्सी के खिलाफ खेलने के लिए तैयार न हो। इतना कुछ फुटबॉल के बारे में। फिर क्रिकेट में आज का जो मैच होगा इन द आईपीएल 2026, दिल्ली कैपिटल्स अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स, 6 बजे मैच शुरू होगा। इस टेबल में वी हैव सनराइजर्स हैदराबाद लीडिंग 14 पॉइंट्स, पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स, फिर 12 पॉइंट्स हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के पास। वीकेंड में भी काफ़ी मैच खेले जाएंगे और मॉरिशस में भी काफ़ी कुछ होगा इस वीकेंड के दौरान। बहुत कुछ जिसे हम बता रहे थे अभी, स्विमिंग में हमारे काफ़ी मेडल मिले हैं, सो उनको कंग्रेचुलेशंस। साथ साथ में रीजनल लेवल पर भी काफ़ी कुछ होगा, इस पर हम आपको जानकारियां देते रहेंगे समय समय पर। दिस वन जो हमें गोल्डन स्टार्स की ओर से आया है, ये लोग अपना एक मैच खेलने वाले हैं, तो इट्स गोल्डन स्टार्स वर्सेस, ओके द मेंबर्स ओमका लिमिटेड भी हैं। सो गोल्डन स्टार, ओमका लिमिटेड, रोड वितरण एफसी, रेडिसन ब्लू, अजोरी रिजोर्ट एंड स्पा, ये सब मिलकर एक फुटबॉल फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं। ये होगा सैटरडे संडे 10th मई 1 PM। साथ साथ में सुबह हमने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग अपने बच्चों को, खासतौर पर 7 से 17 साल के बच्चों को तैराक यानी स्विमिंग सिखाना चाहते हैं सो ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि युवा और खेल मंत्रालय की ओर से इसका सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और ये आप लोग सेर्ज अल्फ्रेड, फिर पाविलियन कैट्रोबोन, मॉडलबे और रिवेजरों पर, वहाँ पर सिखाए जाएंगे बच्चों को स्विमिंग।

0: ड्राइंग सिखाना अच्छा होता है। एंड फाइनली आपको पता है कि वर्ल्ड कप होने वाला है, और वर्ल्ड कप जब होता है स्पेशली तो एक गाना चलता है, यू नो दैट, एक स्पेशल गाना चलता है। तो आज ऑफिशियली वर्ल्ड कप का जो गाना है उसको लॉन्च किया गया है, और एंड नंबर वन ये तो सभी लोग जानते हैं काफ़ी, और शकीरा इज देयर। तो अब शकीरा का गाना है डाई डाई, डाई माने मरना नहीं है,
1: डाई तो
0: ये दूसरा, सुन लेते हैं ये गाना पहले, इट्स लाइक दिस।

0: सो डायडा ये क्या है? डेफिनेटली वो नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं, यानी मरना. तो इसका मतलब यू नो वहाँ पर साउथ अमेरिका में चल रहा है, तो इसीलिए वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आएंगे. एंड शी विल बी परफॉर्मिंग ऑन द फर्स्ट डे. और कोइंसिडेंस देखिए, यूएसए में जहाँ पर फाइनल खेला जाएगा उस स्टेडियम में आज वो जो पिच है वो लगाया गया. तो यहाँ पर द मीनिंग ऑफ डायडा डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, दो इट इज करंटली मोस्ट फेमस एज द टाइटल ऑफ शकीरास ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप 2026. इटालियन में डायडा कहते हैं कमॉन कमॉन. सो इट
1: ओके, तो चलिए हमारे लिसनर्स को एक नया शब्द भी पता चल गया है,
0: कमॉन कमॉन या गो गो. तो अगर दिस इज द राइट मीनिंग, इटली वर्ल्ड कप में नहीं है तो इटली का डायडा वर्ल्ड कप में है.
1: Okay.
0: That's it, the latest from the sports world.
1: Jaldi, thank you so much, Arvind, and thank you hamare saath itne sare updates share karne ke liye.
2: Qualité déco, puis annonce sous sous Mega Sales pour des semaines seulement. Mob à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, sanitaire à portière 3500 roupies, parquet laminé et SPC. Avec la pause gratuite, s'il vous plaît. Et beaucoup des autres super offres pour toute la case. Qualité déco, et n'a tout pour décoration intérieure et extérieure. Recette pavé décoratif, quartz, robinetterie, la lumière, meubles, salle de bain et beaucoup des autres encore. Visite-nous tous showroom à travers l'île. Fast type de paiement disponible. Plus renseignements, l'autre page Facebook, Qualité déco.
3: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
4: Radio Musti.
5: Hit music only.
4: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: 5:09 और सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं ऑन ये फ्राइडे मैशअप. दिस इज रेडियो मस्ती फॉर यू. यहाँ पर हम लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने आप सभी के नाम, और फ्राइडे मैशअप का सेकंड आवर अभी ऑफिशियली ऑन हुआ है. अभी अभी शुरुआत हुई है खबर नहीं से, इस गाने से फ्रॉम द मूवी दोस्ताना. एक ऐसा गाना जो रोमांस भी है, नॉस्टैल्जिया भी है, और एक सॉफ्ट हैप्पी वाइब भी लेकर आता है. और इस आवर का सिंपल थीम हम लेकर आए हैं ऑल रॉ म्यूजिक, यानी कि आप सभी के पसंद के गाने हैं यहाँ पर. मतलब मूड चेंज होता रहेगा, कभी रोमांटिक, कभी एनर्जेटिक, कभी फील गुड, कभी डांस वाली एनर्जी. मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया, और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, जहाँ फ्राइडे का मूड सिर्फ फील नहीं सेलिब्रेट होता है. सो यस, हमारे साथ ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए. वी हैव द बेस्ट ट्रैक्स यहाँ पर, और जैसे कि हमने आपको बताया ऑल रॉ गाने हैं यहाँ पर. तो एक सॉफ्ट गाना हमने सुन लिया है, तो क्यों ना एक थोड़ा सा एनर्जेटिक गाना भी हो जाए.
1: इट्स नॉट जस्ट अबाउट द म्यूजिक, इट्स अबाउट द फीलिंग.
0: फ्राइडे मैशअप, फ्राइडे मैशअप,
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
3: इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं, और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं. ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे. और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा.

0: जी वो फोर टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में, ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन MBC3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: राइट, यू कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती और आप सुन रहे हैं फ्राइडे मैशअप पर रिया के साथ. वैसे हम लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने आपके नाम, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन गानों के साथ साथ हम लेकर आते हैं कुछ और, कुछ स्पेशल, और वो भी अक्सर लेकर आते हैं गेम्स. जी हाँ, हम गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर एक गेम हम लेकर आए हैं आपके नाम, एंड इट्स फ्रॉम थिंक कैरियर. सो द गेम इज़ पावर्ड बाई थिंक रिक्रूटमेंट, और आपको बस खेलना पड़ेगा MBC के साथ, और अगर जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है एक गिफ्ट वाउचर ऑफ डायमंड लेजर सेंटर ऑफ 500 रुपीज, लोकेटेड एट ग्लायस एवेन्यू कैथर बोन, ऑफर टू यू बाय थिंक रिक्रूटमेंट. सो यस, हम यहां पर एक बॉलीवुड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. जी हाँ, हमारे जो बॉलीवुड क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं. तो हमने बात की थी अबाउट द मूवी कुकटेल, और आपको बताया था कि कुकटेल 2 रिलीज होने वाली है बहुत ही जल्द. बस आपको यही हमें बताना है कि कब रिलीज होगी मूवी, एंड एग्जैक्ट डेट आप हमें बताइए. और अगर आप एग्जैक्ट डेट देते हैं, और पूरे नाम और पूरे पते के साथ देना अनिवार्य है, ज़रूरी है. सो अगर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो यू स्टैंड अ चांस टू विन. सो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, और फटाफट फ़ोन उठाइए और सही जवाब के साथ साथ पूरा नाम पूरा पता ऑन 5499-1294, एंड लेट मी विश यू ऑल गुड लक. चलिए, आपके मैसेजेस का हमें इंतज़ार रहेगा.
3: जब भी

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musty.
2: That was a beautiful track. जब भी हम ये गाना चलाते हैं तो आई नो कि बहुत सारे लिसनर्स हमारे खुश हो ही जाते हैं. और चलिए, यहाँ पर हमने एक गेम खेला था आप लोगों के साथ एंड द गेम

0: powered by यस फिंक रिक्रूटमेंट. और हमने एक बॉलीवुड क्वेश्चन पूछा था दैट द अपकमिंग मूवी के बारे में, कॉकटेल 2 ये मूवी रिलीज होने वाली है, और हमने पूछा था व्हाट्स द डेट. और यहाँ पर बहुत से सारे सही जवाब हमें मिले. इट्स 19 June 2026. बहुतों ने दिए है सही जवाब, लेकिन एज यू नो लकी विनर एक ही चाहिए. लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गया है हमारा लकी विनर, एक्चुअली मिल गई है हमारी लकी विनर. सो कंग्रेचुलेशन टू यू गेशना चमन, आप है त्यागोश से और आपने खेला है MBC के साथ, और इसी के चलते आपको मिलता है एक gift voucher of a Diamond Laser Center of 500 rupees located at Glaus Avenue, 4 Bond. And this is offered to you by Think Recruitment. तो आप तक ये कैसे पहुंचाया जाएगा? ये हम आपसे संपर्क करेंगे. So it's not to worry. और congratulations. So once again, और जो लोग नहीं जीत पाए, आप दिल छोटा कतई न करें, क्योंकि बारी आपकी जरूर आएगी. आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो शायद बाद में. तो चलिए आप हमारे साथ यूं ही कनेक्टेड रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाने एंजॉय करते रहिए. वंस अगेन बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू गेशना, और ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
1: Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musti.
3: राइट, वेडिंग सीजन आ गया है और आज का फैशन टिप स्पेशली जेंट्स के लिए है। शादी हो या रिसेप्शन,

0: एक वेल फिटेड सूट कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता। कलर आप चूज करते समय या सिर्फ ब्लैक टक लिमिटेड मत रखिए, नेवी ब्लू, चारकोल ग्रे या इवन बेज सूट्स अब बहुत ही क्लासी लगते हैं और डे हो या इवनिंग फंक्शंस दोनों के लिए परफेक्ट ही होते हैं। और याद रखिए कि फिट इज एवरीथिंग, सूट महंगा हो या सिंपल, और अगर फिटिंग परफेक्ट है तो लुक ऑटोमेटिकली प्रीमियम लगता है। स्टाइलिश सूट्स, एलिगेंट कट्स और वेडिंग रेडी लुक्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं अल्कोवी फैशन, बिकॉज जेंटलमैन डिजर्व टू लुक शार्प टू। चलिए अब वापस चलते हैं टू आवर फ्राइडे मैशअप, बट ध्यान से याद रखिएगा जरूर अल्कोवी फैशन के यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, स्पेशली द सूट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो डू गो देयर एंड हैव अ लुक।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: बजकर 54 मिनट एंड यू कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती. आप साथ दे रहे हैं इन योर फ्राइडे मैशअप रिया के साथ. सो यस, यहाँ पर हम कुछ मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे और देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. संगत जी, आप हैं फ्रांस से और देखा कि विदेश से भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड रहते हैं. आई होप यू आर लविंग द ट्रैक्स और नेक्स्ट ट्रैक हम जरूर आपके नाम चलाएंगे. ललिता जीतन जी है हमारे साथ जुड़ी हुई और अभी घाट पर है, खाना बना रही है, यानी डिनर की तैयारी में लगी हुई है. सो आपको हम बुखार कहते हैं. एंड नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करना चाहती है फुकुमारी, रतन, सरोज, गीता, ज्ञानती, वीना, संजय, विजय एंड द होल जितन परिवार जो लावंचिया रहते हैं. सो लावंचिया से जितने भी लोग साथ दे रहे हैं, आई होप आपको गाने पसंद आ रहे हैं. एंड नेक्स्ट ट्रैक आप सभी के नाम हम डेडिकेट करते हैं. वी ऑल्सो हैव यहाँ पर गायत्री पोर्ट लुइस से साथ निभा रही है. पोर्ट लुइस में आई नो कि काफ़ी देर तक भागा दौड़ी होती ही है ट्रैफिक, बट अगर आप रेडियो मस्ती के साथ कनेक्टेड है तो गाने आप शो के आपको बहुत ही पसंद आ रही है. एंड यस, यहाँ पर धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति और अराग परिवार के नाम जो मजल बह रहते हैं, इनके नाम नेक्स्ट ट्रैक जाता है. वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल वन नेक्स्ट एंड इट्स कमिंग फ्रॉम द मूवी काइट्स. लेट मी टेल यू दैट इस गाने के बाद आप सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन और इसके बाद हम ही वापस लौट आएंगे.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 6 बज रहे हैं।
6: शुक्रवार 8 मई 2026 इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियां जो इस प्रकार है। कुछ पदार्थों के दामों में बदलाव बरकरार, चाहे सब्सिडी भी प्राप्त हो, इन बदलावों के पीछे कई मुद्दे जुड़े हुए। विनिमय मंडी से लेकर फ्रेट का दाम, स्टॉक की उपलब्धता, व्यवसाय मंत्रालय की तरफ से इन सब का हिसाब। एक टिकाऊ कृषि और कृषि डायवर्सिफिकेशन के लिए खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी के संदर्भ में कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल और जूनियर मंत्री फैबर्स डेविड ने रोजवेल शुगर स्टेट द्वारा संचालित कृषि जमीनों का किया दौरा। उत्पादन से फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर, ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किया जा सके। ईद उल अधा के लिए अंतर मंत्री स्तरीय समिति एक नतीजे पर पहुंची। मांस का दाम किलो पीछे 186 रुपए तय। मंत्री शाकिल मोहम्मद ने कहा कि तय दाम लोगों की खरीद शक्ति को बरकरार रखने के लिए है। सरकारी विभाग में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किए जाने से संबंधित एक सर्कुलर जारी, जिसके कुछ ही समय बाद इसे हटा दिया गया। इससे काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ। सार्वजनिक सेवा मंत्री राजबेंजा ने इस बात का दिया आश्वासन कि इस तरह की प्रणाली लागू करने से पहले संबंधित पक्षों के साथ की जाएगी बातचीत। और विदेश समाचारों में, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे और इंग्लिश काउंसिल के प्रारंभिक नतीजों के मुताबिक रिफॉर्म की जीत हो रही है। एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। एक टिकाऊ कृषि और कृषि डायवर्सिफिकेशन के लिए खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी के संदर्भ में कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल और जूनियर मंत्री फैब्रिस डेविड ने कल रोजवेल शुगर स्टेट का द्वारा संचालित कृषि जमीनों का दौरा किया। यहां पर जमीन तैयार की जा रही है, जहां पर मुख्य रूप से सब्जी पैदावार की जाएगी। 300 बीघा कृषि जमीन में से 150 खेतिहरों के लिए निर्धारित, साथ ही अन्य जमीनों पर ईख के गन्ने उगाए जाएंगे। लोगों से वापस जमीन की ओर जाने के अलावा उत्पादन से फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है, ताकि श्रम शक्ति

0: ते खर्च कम किया जा सके। सिंचामुतु करुणा लालू।
1: खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद से रॉसबेल शुगर स्टेट ने अपनी कृषि भूमि, खासकर किसानों द्वारा छोड़ी गई जमीनों के बेहतर उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाया है। लगभग 300 बीघा जमीन की पहचान की गई है, जिनमें से करीब 150 बीघा किसानों को सौंपे जाएंगे। बाकी में मुख्य रूप से आलू की खेती की जाएगी। 118 किसानों को जमीन प्राप्त हो चुकी है। मंत्री अरविंद बुले ने
2: कहा,
1: खाद्य आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो जमीन उपलब्ध होनी चाहिए, उसे तैयार करना चाहिए। खेतिहरों को कृषि जमीन दी जा रही है। इस पहल में मशीनीकरण की अहम भूमिका है, जमीन तैयार करने से लेकर फसल तक के लिए। डॉक्टर अरविंद बुलेल कहते हैं, एक मशीन उसकी टेक्नोलॉजी जीपीएस के साथ ली जा रही है, जो दिन में 4 हेक्टेयर तैयार करेगी। इसके लिए संभवतः 75 लोगों की आवश्यकता होती। जूनियर मंत्री फैब्रिस डेविड ने कहा, एक लैंड बैंक कायम किया गया है। वैज्ञानिक अध्ययन की बदौलत एक लैंड स्विटेबिलिटी इंडेक्स भी तैयार किया गया है। ये जान सकेंगे कि कौन सी जमीन पर कौन सी खेती बेहतर होगी। किसानों की ओर से कुछ लोगों द्वारा खेती छोड़ने के बावजूद कई अभी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। सूरज सुभन की तरह, जो 38 सालों से खेती करते हैं, कुल 50 बीघा पर खेती करते हैं, जिनमें से 25 बीघा रॉसबेल में स्थित हैं। बाजार जाने वाले लोगों के बस्ते में टमाटर, आलू, प्याज होने चाहिए। हमारी मांग अधिक जमीन की है, ताकि रोपाई कर
3: सकें।
1: चेतन ने कहा, पढ़ाई करने के बावजूद मेरे पिताजी ने मुझे खेती बाड़ी करने की सलाह दी। आज खेती करता हूँ। आशा है सरकार हमें जमीन, ग्रांट और मशीन प्रदान करते रहे। कृषि भूमि के उपयोग के अलावा रॉसबेल शुगर स्टेट पिछले कई वर्षों से ऑर्किड की खेती में संलग्न है।
0: कृषि उद्योग खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में ही रहते हैं। ईद उल अधा के लिए अंतर मंत्री समिति के नतीजे पर तय पहुंचे हैं। मांस का दाम किलो पीछे 186 रुपये तक तय किया गया है। आयातकों के मांगों के बावजूद प्रति किलो 220 रुपये की मांग कर रहे थे। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि तय दाम लोगों की खरीद शक्ति को बरकरार रखने के लिए है। ये कीमत तेहवर के 10 दिन बाद तक बरकरार रहेगी। अधिकारियों ने सख्त काबू रखने का वादा किया है। किसी भी तरह की ज्यादती न हो, ये भी ऐलान किया गया है कि मवेशियों के आयात के मोनोपोल को खत्म करने के कदम उठाए जाएंगे। मंत्री शाकिल मोहम्मद को सुनते हैं।
4: Le prix a été fixé par le gouvernement. Le prix initial qui était demandé par l'importateur, c'était de 220 roupies par kilo. Le gouvernement fin fait ce comité interministériel. Le gouvernement répète lui fin considère tout le prix.
1: सरकार द्वारा दाम निर्धारित किए जा चुके हैं। शुरू में 220 रुपए प्रति किलो की मांग की गई थी। सरकार की अंतरमंत्री बैठक लगाई गई और उसके द्वारा सभी दामों को लिखा गया, सभी लागत को भी, और तब ये फैसला लिया गया कि इसे 186 रुपए प्रति किलो होने चाहिए। भावी ईद उल अधा के लिए हमने एक उचित तरीका अपनाया है। हम सोचते हैं कि हद से ज़्यादा लाभ कमाने की ज़रूरत नहीं। सभी लागत को हमने देखा है, पहले ऐसा कभी नहीं किया गया, और तब हमने मैक्सिमम मार्कअप निर्धारित किया। चाहे लोग नाखुश होते हैं, लेकिन सरकार अपनी स्थिति पर बनी रहेगी, राय नहीं बदली जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि मुनाफा काफ़ी नहीं, कई बहाने होंगे, ये उनकी राय होगी, वे स्वतंत्र होंगे, लेकिन कानून का पालन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अगली बार परमिट जारी करते वक्त इसे ध्यान में रखा जाएगा। मत भूलना चाहिए कि सरकार का मकसद सब प्रकार की अति को रोकना है, चाहे ग्राहकों को लेकर हो या फिर आयातकों को लेकर।
4: Parce que nous n'oublions pas que l'objectif principal du gouvernement c'est de pas autoriser toutes sortes d'abus que ce soit vers le consommateur que ce soit vers l'importateur. On a choisi
0: निवारण करुणा लालू का रहा। आगे समाचारों को बढ़ाते हैं, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं।

0: कौंदस स्थित विक्टोरिया अस्पताल में कैंसर के इलाज कर रहे मरीजों के लिए ये खबर। बता दें कि अभी के लिए रेडियोथेरेपी विभाग बंद है। रेडिएशन सेफ्टी एंड न्यूक्लियर ऑथोरिटी की ओर से इस सिलसिले में एक प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी किया गया और तुरंत के लिए इसे बंद कर दिया गया। जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि रेडियो एक्टिव संबंधी इलाज से जुड़ी अपर्याप्त सुरक्षा कदमों के चलते लोगों और पर्यावरण को काफी खतरे हो सकते हैं। जिन मरीजों को कैंसर के लिए इलाज की जरूरत है उन्हें अब से सुल्फेरिनो का नेशनल कैंसर सेंटर की ओर भेजा जाएगा। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
1: रेडियोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार में व्यापक रूप से किया जाता है। इसमें एक्सरे, गामा किरणों और अन्य कणों का इस्तेमाल कर ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। ये उपचार पद्धति अक्सर सर्जरी या कीमोथेरेपी के साथ मिलाकर दी जाती है। विक्टोरिया अस्पताल के रेडियोथेरेपी विभाग के बंद होने के बाद नेशनल कैंसर सेंटर के विभिन्न इकाइयों ने उपचार सुचारू रूप से जारी रखने के लिए विशेष व्यवस्था लागू की है। डॉक्टर एस प्रसाद चरुमोनी ने कहा, फ्लेक्सी टाइम पर काम किया जिस पर स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कि एक रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट और एक मेडिकल फिजिसिस्ट सुबह 7 से रात 7 बजे तक काम करेंगे, यानी सभी मरीजों को अपना इलाज प्राप्त होगा। चिकित्सकों के अनुसार स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। संजय बिहारी ने कहा, जब एक्सरे किया जाता है, इलाज किया जाता है, तो स्कैटर्ड रेज निकलती हैं जिन्हें डिटेक्ट कर रखा जाता है। हर 3 महीने इसे फिजिसिस्ट को भेजा जाता है, वे देखते हैं कि कितना डोज दिया गया है, इसमें सीमा है, हमेशा ये नीचे रहता है। दो बंद दरवाजे, 60 से 45 सेंटीमीटर मोटी मजबूत कंक्रीट की दीवारें, बेसमेंट जहां रेडियोएक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है, जिस पर कड़ा नियंत्रण रहता है।
2: मशीन लामन इन अमन केसिंग लेड लाडो मन लेड केसिंग कुट ला रेडिएशन ऑटो।
1: वरिष्ठ मेडिकल फिजिसिस्ट मौशी जगन्नाथ बोरामबोली ने कहा, इसमें लेड केसिंग है जिससे इस मशीन के चारों ओर रेडिएशन बहुत कम है। सुरक्षा के कई चरण हैं। नेशनल कैंसर सेंटर में लगभग 40 कर्मचारी कार्यरत हैं और यहां प्रतिदिन औसत 70 मरीजों का उपचार किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जनवरी से अब तक कैंसर के लगभग 3,000 नए मरीज पंजीकृत किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या पूरे साल लगभग 2,400 थी।
0: सुर्खियों में हम इसका उल्लेख कर रहे थे, कुछ पदार्थों के दामों में बदलाव बरकरार है, चाहे सब्सिडी भी प्राप्त हो रही हो तब भी। इन बदलावों के पीछे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं, विनिमय दर से लेकर फ्रेट का दाम, स्टॉक की उपलब्धता आदि। व्यवसाय मंत्रालय की तरफ से इन सब का हिसाब किया जाता है। यासिन दैन महमूद की रिपोर्ट पर विवरण पूजा सुकालू।
3: 65.70 रुपए ये लक्की स्टॉक के हरे डिब्बे की कीमत है जो मंत्रालय द्वारा तय की गई है। अप्रैल महीने में ये 64.20 रुपए समय बिक रहा था। कई अन्य सब्सिडी वाले उत्पादों की तरह कीमतों में बदलाव दिख रहा है। आज 1 लीटर का रीना तेल 63.92 रुपए में बिक रहा है, जबकि फरवरी में इसकी कीमत 69.70 रुपए थी। यही स्थिति 1 किलो वाला फार्मलैंड पैकेट दूध का है। मार्च में इसकी कीमत 269.29 रुपए थी, जबकि आज ये 252.56 रुपए में बिक रहा है। एक्सचेंज रेट के अलावा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। वर्तमान में लागू नियम के तहत हर खेप की अलग कीमत हो सकती है। अधिकतम बिक्री कीमतें निर्धारित करने का काम व्यापार मंत्रालय की प्राइस मॉनिटोरिंग डिवीजन द्वारा किया जाता है।
2: Pour les capables, elles recevoir le prix
4: qui est fixé par le ministère. Et deuxièmement, communique avec ce détaillant et revendeur.
3: दाम को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले तथ्यों में फ्रेट प्रमुख है।
5: Avant le conflit, disons une fret depuis le Kadjali, depuis Jebel Ali, était environ 2000 dollars et il est fini augmenté par à peu près 215%. Mais cela dit, ce qu'on nous guette ailleurs, par exemple de Chine, l'ICA a fini augmenté environ 22 à 27% en 20 pieds. De l'Inde, il est un peu plus bas, il est 8 à 10% le 20 pieds. Donc à dire que depuis l'Europe, par exemple, pas fini aucune augmentation de fret, mais les lignes ajoutent une surcharge qui est à la hauteur de 10%. Et il y a impacté directement le coût de la marchandise qu'un importateur fait à venir.
3: इसके अलावा सब्सिडी वाले उत्पादों की एक नई सूची पहले से तैयार है।
6: La liste là bien intéressant. Donc valeur du jour c'est qu'il est capable dire où nous avons demandé feu vert ministère finance. Nous attendons ce feu vert dès que nous gagne feu vert, c'est-à-dire no objection du ministère des finances, là nous parle au cabinet.
3: इस बात की भी घोषणा की गई है कि कीमतों पर बेहतर नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एसटीसी कई अन्य बुनियादी उत्पादों का आयात करेगी।
0: इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन ने नादरा अमीर और मुशीरा अब्दुल्लाही तथा उनके पुराने मालिक के खिलाफ मामले में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन ने निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों महिलाएं भेदभाव की शिकार हुई हैं। 2025 के जून महीने में हिजाब पहनने की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद इनसबोर्डिनेशन को लेकर उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। काप मलेरे में कापलिस्पोर शेल्टर के मैनेजमेंट की ओर से बताया जा रहा है कि वहां पर खाद्य सुरक्षा तथा साफ सफाई और किस्म को लेकर नियंत्रण प्रक्रियाएं बढ़ाई जा रही है। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय द्वारा कल प्रकाशित एक विज्ञप्ति में ये बात सामने आई। शेल्टर में रहने वालों के लिए निर्धारित भोजन परोसे जाने में बर्गर ब्रेड खराब होने के तथाकथित आरोप मिलने पर सोशल नेटवर्क पर चित्र दिखाए गए, जिसके बाद ये मामला सामने आया, प्रतिक्रियाएं सामने आई। इसके अलावा विज्ञप्ति में ये भी बताया गया कि मामले को योग्य अधिकारियों के हवाले किया गया है, जैसे कि पुलिस और रिविया जोहों पर स्थित सैनिटरी दफ्तर। कल बोपलों के एक पंप स्टेशन में चलाई गई कार्रवाई के बाद दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी को रोका जिसे निकोला कौशी चला रहे थे। उनकी मॉरिशन एवं फ्रांसीसी दोहरी नागरिकता है। गाड़ी में अफसरों को 146 ग्राम से अधिक के तथाकथित हेरोइंस मिले, ड्रग के कई पैकेट भी मिले और साथ में कैलिबर 12 की बंदूक भी। संदिग्ध व्यक्ति गुडलैंड्स के रहने वाले एक वॉचमैन जॉन एमिलियो बंदूक के साथ था। उसके बाद जांचकर्ताओं ने पेरेबिया में निकोला कांजी के घर पर छापा मारा। वहां से गांजा और हेरोइन के कई पैकेट्स मिले। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी, जिस पर मादक द्रव्य के निशान थे। दूसरे संदिग्ध के यहां पुलिस के को शस्त्र और कालीबर 12 की गोलियां भी मिली। संदिग्ध व्यक्ति ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था उसे भी जब्त कर दिया गया। बरामद मादक द्रव्य की लागत 2.7 मिलियन रुपए से अधिक की बताई जाती है। घान रिवियर नॉर्थ वेस्ट के कैदखाने में पेश आए हादसे के बाद एक जांच शुरू की गई। दो कैदियों पर अस्थायी आरोप है कि उन्होंने एक अन्य कैदी को पीटा, उस पर हमला किया। 46 वर्षीय व्यक्ति को चेहरे पर चोट लगी। कैदखाने के एजेंट जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे। साथ ही अन्य दो कैदियों पर अन्यों ने हमला किया। कैदियों की मेडिकल यूनिट की ओर से 3 घायल लोगों को संभाला गया, फिर इलाज के लिए उन्हें रोजबेल स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। चलिए अब स्विमिंग तैराकी स्कोर की बात करते हैं। ये युवा एवं खेल मंत्रालय की पहल है, जो मॉरिशस स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से संचालित मूल ढांचों के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को तैरने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है। देश के 4 स्विमिंग पूल से संबंधित 18 मई मादालबेया, पावियों का ट्रोबोन, रिविया जोरांपा और बोबासा स्थित सेर्ज अल्फ्रेड स्विमिंग पूल 7 और 17 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चे इससे संबंधित होंगे। बता दें कि 3 चरणों में ट्रेनिंग निर्धारित है और 24 सेशंस होंगे। संबंधित वेबसाइट पर 13 और 14 मई को रजिस्ट्रेशन होंगे। और अब ये खबर सुर्खियों में इसकी चर्चा कर रहे थे। सरकारी विभाग में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किए जाने से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया गया और कुछ ही समय बाद इसे हटा भी दिया गया। इससे काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया। मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि मंत्रालयों और अर्ध सरकार

0: विभागों में इस दस्तावेज को भेजे जाने से पहले किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सार्वजनिक सेवा मंत्री राजपंचा ने इस बात का आश्वासन दिया कि इस तरह की प्रणाली कायम करने से पहले संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जाएगी। यासिंदन महमूद, करुणा लालू।
1: ये सर्कुलर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के जारी किया गया था। सिविल सेवा मंत्री राजपंचा ने कहा कि इस प्रकार का कोई भी निर्णय पहले मंत्रालय स्तर पर इस पर विस्तार से अध्ययन किया जाता है, उसके बाद मंजूरी के लिए मंत्री परिषद में पेश किया जाता है। इस मामले में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
2: इसे
1: समर्थित करने के लिए कोई भी नीति नहीं। जांच के बाद कि चूंकि कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, इसे हटाना चाहिए और आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए। इस संबंध में किसी निर्णय से पहले श्रमिक संघ और सरकारी कर्मचारियों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। एक ऐसा फैसला जिससे 58,000 सरकारी कर्मचारी सीधे रूप से प्रभावित होते हैं, उनका परिवार भी, इस बारे में ठीक से विचार करना चाहिए। उसे लागू करने से पूर्व गहरा विचार विमर्श करना चाहिए ताकि वो स्वीकार्य हो। मंत्री राजपंचा ने कहा कि इस विषय पर एक प्रारंभिक बैठक पहले ही हो चुकी है, लेकिन आगे की चर्चाओं के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। साथ ही मंत्रालय द्वारा ऊर्जा बचत के लिए अल्पकालिक उपाय पहले से ही लागू किए गए हैं।
0: बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। भारत में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के 4 दिन बाद आज बंगाल को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे। शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के सीएम के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। विवरण सुमेरा अकबर अली।
3: आसाम में ऐतिहासिक राजनीतिक पड़ाव को मनाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह 12 मई के लिए निर्धारित है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे।
4: वोट टेकिंग सेरेमनी 12 मई को होगा, 11 बजे होगा। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहेंगे। जो प्रमुख हस्तियां है, सभी के उपस्थिति में खानापाड़ा फील्ड में शपथ ग्रहण अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा।
3: पश्चिम बंगाल में प्रांतीय मंत्री परिषद को भंग कर दिया गया, बावजूद ये कि ममता बनर्जी ने हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किया। अब शनिवार को भव्य शपथ ग्रहण समारोह लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संचालक भाग लेंगे। केरल में अभी तक लीडरशिप को लेकर विचार विमर्श किए जा रहे हैं। मुख्य मंत्रालय की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए, लगातार 3 दिनों के लिए सलाह मशवरे जारी है। सबने कहा कि हाई कमांड को फैसला लेना होगा। ऑब्जर्वर दोबारा दिल्ली जाएंगे और हाई कमांड को रिपोर्ट देंगे।
5: ऑब्जर्वर्स विल गो बैक टू दिल्ली एंड दे विल स्पीक टू द हाई कमांड एंड रिपोर्ट, दे विल गिव देयर रिपोर्ट्स।
3: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कालागम की भारी जीत के बाद अब बाकी की सीटें समेटने की कोशिश की जा रही है। टीवीके को और सिर्फ 5 सीटें चाहिए ताकि वो सरकार बना सके। इसी मकसद से छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों से बातचीत की जा रही है। विजय की पार्टी के साथ 5 निर्वाचित उम्मीदवार जुड़ चुके हैं। टीवीके के पास अभी 113 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 118 सीटें जरूरी हैं। ईमेल और अन्य संचार माध्यमों से हमने पार्टियों से रابطہ कायम किया और उनके समर्थन की मांग की। बड़ी घोषणा करने से पहले सलाहकारी बैठक लगाएंगे। कई राज्यों में यही सिलसिला है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के सिलसिले में अहम फैसले लिए जा रहे हैं।
0: और एक बार फिर से चुनावों की ही बात करते हैं। इंग्लैंड में इंग्लिश काउंसिल के प्रारंभिक नतीजों के मुताबिक रिफॉर्म की जीत हो रही है। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री खैर स्टॉमर ने कहा कि वे जाएंगे नहीं। पूर्व लेबर गढ़ में रिफॉर्म सीट जीत रही है। अभी तक इंग्लैंड में 50 काउंसिल की ओर से नतीजे घोषित किए गए हैं। अभी भी 86 के नतीजे बाकी हैं। विजय दिवस पूरे

0: यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक पल दर्शाता है। 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए समर्पण पर दस्तखत किए थे। इस जीत के साथ कई सालों तक चली जंग का खात्मा हुआ। फ्रांस में लोगों ने आज़ादी और शांति की वापसी का जश्न मनाया। तब से ये तारीख हिम्मत, याद और आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद का प्रतीक बनी हुई है। ये दिन उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने युद्ध के दौरान दुख और कष्ट सहे, साथ ही उन सिपाहियों को भी जो आज़ादी और शांति के लिए लड़े। स्पेन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए आपात कदम लागू किए हैं। कैनारी टापुओं में हंटा वायरस के चलते स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है। एमवी हॉन्जियस जहाज पर उच्च निगरानी रखी जा रही है क्योंकि संक्रमण के कई शकी मामले, संदिग्ध मामले पाए जा रहे हैं। जहाज पर 5 मामलों की पुष्टि की गई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इंक्यूबेशन अवधि के दौरान और संक्रमित मामले सामने आ सकते हैं। WHO ने निदेशक पेड्रोस अदानोम को सुनते हैं। विवरण सुमेरा बरली।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास पूरी रिपोर्ट है, कितने लोगों में संक्रमण के संकेत पाए जा रहे हैं, किसने संक्रमित यात्रियों से बात की या उनके करीब रहा। हम संबद्ध अधिकारियों के साथ सीधे तौर पर राबता कायम कर रहे हैं। संक्रमित होने के बाद इंक्यूबेशन अवधि 6 हफ्तों की है। इस समय के दौरान और मामले सामने आ सकते हैं। ये एक संगीन घटना है।
0: मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार हैं। मॉरिशस के लिए आज रात 10 बजे से ऊंची लहर उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो रविवार 10 मई 2026 को सुबह 4 बजे तक लागू है। दक्षिण पूर्व की ओर से बड़े ही कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हैं वे आज रात से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात धीरे धीरे बादल घिरने लगेंगे और रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। टापू भर में कल मौसम बरसाती ही रहेगा और ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं कुछ इलाकों में। समुद्र खराब रहेगा, धीरे धीरे ज्यादा खराब होने लगेगा। 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ये ऊंची लहरें पश्चिमी एवं दक्षिणी लगुनों तटीय इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं, खासकर ज्वार भाटे के दौरान। इसीलिए मच्छरों, प्लेजर क्राफ्ट चलाने वालों और आम जनता को सलाह दी जाती है, मांग की जाती है कि दूर समुद्र में ज्वार भाटे के दौरान ना निकले और समुद्र तटों के पास ना जाएं। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:44 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:28 पर सूर्योदय।

0: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों फैजन और लुविशा को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: नंबर 77 मोसेलमा ओबर्न बॉम्बू में। नंबर 77 मोसेलमा ओबर्न बॉम्बू में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री महादेव कहानू, श्री महादेव कहानू जो जिसे के नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर नंबर 77 मोसेलमा ओबर्न बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसोवे बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 AM। नंबर 94 पियतों पेलावाल सेंतक्वा में। नंबर

1993 पियतों पेलावा सेंतखवा में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सत्यज रशन, श्रीमती सत्यज रशन, पैदाशी नाम

जानकी स्ट्रीट पुथुदो विलेज में, जानकी स्ट्रीट पुथुदो विलेज में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिद्वंती मधु, श्रीमती बिद्वंती मधु पैदाशी नाम सोहन जो वंती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल सुबह 10 बजे उनके बेटे श्री संजय मधु के घर जानकी स्ट्रीट पुथुदो विलेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो पुथुदो विलेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वा में, नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वा में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री कुमार नेओल जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले दिप्रत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। फर्स्ट रोड फोंजीसाक में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दनिशा रघुबीर पैदाशी नाम निरंजन जो सुनंदा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल सुबह साढ़े दस बजे उनके घर फर्स्ट रोड फोंजीसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजीसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। रॉयल रोड थ्रू दो दूस में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुलमंती बिखारी पैदाशी नाम होलमन और जो मानती नाम से भी जानी जाती थी और पहले ट्वेस्क होटल में काम करती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री शैलेश भिखारी के घर रॉयल रोड थोदोदूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोदोदूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो 8:11 AM। जोली स्ट्रीट 400 में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुविना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मंगुत्रोय की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उनके पति श्री शरद चंद द्वारका प्रसाद के घर जोली स्ट्रीट 400 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दिवकर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। शमे शांतिनी जांती सैप्य में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री तगोमन महादिया जो जैक्सन नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी ललिता देवी महादिया के घर श्रीमय शांतिनी जांती सैप्य से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्तान सैप्य की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 12:30 PM। Avenue Guy Rosemont, Trèfle-Rosilmé, 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पा बिसेसर जो रीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के सवा एक बजे उनके घर एवेन्यू गी रोजमोंट ट्रेफ्ले-रोसिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिवियो रोसिल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 12:15 PM। पाल्मा रोड कैटरबोन में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पा माला बूतन पैदाशी नाम राम जो मीला नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के सवा एक बजे उनके घर पाल्मा रोड कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाल्मा गांधी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 12:15 PM। फेलिक्स देवाटोर शांडेमाउस पोर्ट लुइस में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री बिपिन रोही जो बिपिन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के दो बजे उनके घर फेलिक्स देवाटोर शांडेमाउस पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबाओ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो 8:00 PM। रुथ रॉयल टेयर रूज में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री रामेश्वर गिरधारी जो रमेश बाजौ नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है अगले रविवार 10 मई को सुबह साढ़े नौ बजे उनकी पत्नी श्रीमती माला देवी गिरधारी के घर

0: गुतवायाल तेहोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे नेक्स्ट 10th of May एट 9:30 AM। नंबर 9 रुई ला रेनेसांस, नंबर 59 120 फ्रांस में 72 साल के 72 years old की श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी, श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी और पहले ली बेतो वाकवा रहती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले सोमवार 11 मई को दिन के 2:45 उनके घर नंबर 9 रुई दे ला रेनेसांस लस फ्रांस से उठाकर उनका अंतिम संस्कार एली लील ऑफ फ्रांस में ही किया जाएगा। मुरा पे चित्रिविया में 62 साल के 62 years old के श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण जो पिपित नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले मंगलवार 12 मई को मुरा पे चित्रिविया से उठाकर दिन के 10:00 तेमिनिस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूजडे नेक्स्ट 12th of May एट 10 AM। शुक मेरुविन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBCRadio.TV.
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup. Get down. Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: 6:40 मिनट हो चुके हैं और फ्राइडे मैशअप का थर्ड आवर शुरू हो रहा है रेडियो मस्ती पर. आप सभी का फिर से स्वागत तो मैं करती हूँ आपकी रिया आपके साथ इन योर गुड म्यूजिक शो. तो पूरा आफ्टरनून रहा एनर्जेटिक वाइब्रेंट और फुल फ्राइडे फील्स के साथ है, लेकिन अब समय है थोड़ा पेस स्लो करने का. शाम ढल चुकी है, मौसम भी सॉफ्ट है और दिल ऑटोमेटिकली रोमांटिक मोड में एंटर हो ही जाता है. इसलिए अब 7 बजे तक यानी कि 20 मिनट्स अभी शेष हैं, तो 20 मिनट्स के लिए हम फ्राइडे मैशअप ले जा रहे हैं रोमांटिक ट्रैक्स पर. ब्यूटीफुल मेलोडीज, सोलफुल लिरिक्स और वो गाने जो सीधा दिल को टच करते हैं. मैं हूँ आपके साथ एंड अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, किसी स्पेशल के साथ समय बता रहे हैं, ये बस आप ऐसे खुद के साथ एक पीसफुल मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, टू स्टे ट्यून्ड हमारे साथ, ऐसे ही आप कनेक्टेड रहे. और अगर आप किचन से साथ निभा रहे हैं, अभी डिनर की तैयारी में लगे हुए हैं या अभी आप खाना खा रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, आपको हम शुभ आहार कहते हैं. But still, you have to stay connected हमारे साथ क्योंकि हम लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने आपके नाम. जैसे कि ये नेक्स्ट गाना अभी हम ने आपको बताया है कि हम पेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे और विल प्ले सम रोमांटिक ट्रैक्स आप सभी के नाम. सो ये सब के डेडिकेशन मैसेजेस आप भेज सकते हैं. 19 मिनट्स बाकी है. सो यस, यू कैन सेंड योर डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499-1294.

कभी कभी फ्राइडे सिर्फ पार्टी और एनर्जी का नाम नहीं होता, कभी फ्राइडे शाम होती है फीलिंग्स की। दिन भर की हसल के बाद जब शाम धीरे धीरे सेटल होती है तो दिल लाउड म्यूजिक नहीं बल्कि सॉफ्ट मेलोडीज सुनना चाहता है। ये वो समय होता है जब एक गाना किसी की याद दिला देती है, एक लाइन स्माइल ले आती है और एक मेलोडी पूरी इवनिंग को ब्यूटीफुल बना देती है। तो अगर आप किसी स्पेशल को मिस कर रहे हैं या सीक्रेटली किसी के बारे में सोच रहे हैं, ये नेक्स्ट ट्रैक उन्हीं फीलिंग्स के नाम और आई जस्ट होप दैट यू आर लविंग द ट्रैक्स। यहाँ पर फ्राइडे मैशअप में हम कुछ कुछ परिवर्तन लेकर आए हैं, एक दो रोमांटिक ट्रैक्स बस आपके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल लाने के लिए।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: चलिए इसी गाने के साथ इट्स टाइम टू से बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी मुलाकात जल्दी होगी, कल सवेरे होगी। तब तक यू टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग। आपको दिव्या के हवाले हम छोड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे मूड में आई हुई है एंड शी हैज गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स आप सभी के नाम।

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती.
2: Well, wishing each and everyone a lovely, lovely good evening. आप सभी को कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप शायद सोच रहे हैं कि मूड आज थोड़ा सा अलग है क्योंकि रोज़ तो इसी वक्त को हम मिलते हैं और थोड़ा सा हम गाने को और मूड को टोन डाउन करते हैं, स्लो डाउन करते हैं. लेकिन आज चाहे आप थके हारे घर से वापस आए हैं लेकिन इसके बावजूद भी एनर्जी और वाइब्स तो बहुत ही हाई है क्योंकि कल वीकेंड है और वीकेंड ऑलरेडी दस्तक दे रहा है. आप बस इस गूंज को सुनिए एंड ट्राई टू वाइब अलोंग और इसी वाइब को बस और भी लाइवली बनाने के लिए वी हैव द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात के 9 बजे तक इन योर फिल्मी जैम. ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस को हम वेलकम करेंगे ऑन 5499 1294. अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो लाइन खुली हुई है ऑन 4280035. कट सौदे का तो मैं थोड़ा सा, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखें, आज आपको बस ऐसे ऐसे गाने की फरमाइश करनी है जिसको सुनने के बाद सब लोगों को लगे कि भाई सच में आज फ्राइडे है. इसका मतलब है कि नो दिल का टूटना, नो रोना धोना और कूल रोमांटिक गाने तो हम बाद में चलाएंगे आप लोगों के लिए, मतलब इन द कमिंग डेज. आज हम बस वाइब्स करेंगे बहुत ही धमाकेदार गीतों के साथ टू मेक यू फील कि सच में इट्स फ्राइडे और आप मन ही मन यही कहेंगे कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे.
0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती.

0: फिल्मी जाम
1: रेडियो मस्ती।
2: वेल 7:18 कुछ लोग जल्दी डिनर ले लेते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो आज फ्राइडे है तो थोड़ी पार्टी शार्टी हो जाए और इसके बाद हम खाएंगे। लेकिन फ्राइडे इवनिंग में सब लोग प्लान्स तो बनाते हैं ही, कुछ लोग मूवी देखने जाते हैं और कुछ लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि घर पर ही कुछ इंडोर प्लानिंग करते हैं। बट अगर आपको पता है कि रात को पार्टी करनी है तो प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी वेरी very cautious on the road and be very responsible. चलिए वेलकमिंग यू मैसेजेस ऑन 5499 1294। एंड यहाँ पर आप कहते हैं गुड इवनिंग दिव्या जी, संगर आप हैं फ्रांस से, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। फ्रांस में मौसम कैसा है अभी, करंटली कितना डिग्री हो रहा है वहाँ पर, ज़रूर जब आप मैसेजेस भेजेंगे ना तो ये तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। और साथ में वी विल डेफिनेटली लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर आशा। आशा जी अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू, आपके पति हैं और आपके दो बच्चे मिलकर डिनर ले रहे हैं एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। एंड चलिए डांस आप जरूर करें डिनर ले लेने के बाद, क्योंकि आपका डिनर होता है तो आप थोड़े से हैवी फील करते हैं, स्पेशली अगर आपका हैवी मील होता है रात को। सो जितना हो सके ट्राई टू ईट वेरी वेरी लाइट, लेकिन अगर आपका हैवी डिनर है तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा आप वॉक कीजिए या फिर हमारे गीतों को सुनने के बाद थोड़ा बहुत पैर को थिरकाइए, अपनी कमर को थिरकाइए। एंड हमेशा हम कहते हैं ना, यू शुड ऑलवेज डांस एज इफ नोबडी इज़ वॉचिंग, और हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा करें। एंड बस जितना हो सके नो इफ्स एंड बट्स, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू एंड विद इन यू।
0: Filmy Jam
1: RM2 Radio Musti।

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: इरादा तो कुछ ऐसा ही है, आपको नचाने के लिए नाचांगे सारी रात और ऐसे ही ये बस वक्त निकल जाएगा। एंड आई जस्ट होप कि आप हमारे गीतों को बहुत ही पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर किसने हमें कहा है, हाय दिव्या, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रॉकिंग सॉन्ग्स, मे आई रिक्वेस्ट फॉर द सॉन्ग हंगामा हो गया फ्रॉम द मूवी क्वीन, कंगना वाली प्लीज। रोशनी आप हैं काटोबोन से, आपको भी शुभरात्रि एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। चलिए हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वैसे आज तो रिक्वेस्ट के गाने तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट वी डोंट प्रॉमिस, लेकिन लेट मी ट्राई माय बेस्ट। हेलो रेडियो मस्ती टीम, आई एम योर फ्रेंड सुया बिहारी, आप हैं कुंगमा से। आज कहती है, आप कहती हैं कि आज फ्राइडे, सो नो काही नो फाहता। और अभी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं रिधि सोनाक्षी अवनी, क्यूट वंश, बिहारी फैमिली ऑफ कुंगमा, और आई गेस ये आपके पोते पोतियाँ हैं। और कहते हैं ना कि फैमिली टाइम इज़ द बेस्ट टाइम जो आप अपने लाइफ में स्पेंड करते हैं, और उन्हीं के ज़रिए आपको मेमोरीज क्रिएट का पूरा पूरा मौका मिलता है। So, जितना हो सके फैमिली के लिए आप टाइम निकालें। कभी ऐसा होता है ना कि घर के काम आप पूरे कर लेते हैं और आपको लगता है कि आज फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन इसके पीछे पीछे क्या होता है, दूसरे फैमिली मेंबर्स आते हैं और वो लोग काम के जो वर्कलोड हैं घर लेकर आते हैं और कहते हैं कि आज तो बस घर पे ही काम करेंगे, और ऐसे में आपके प्लान पर पानी फिर जाता है और आपके प्लान चौपट हो जाते हैं। लेकिन जितना हो सके ट्राई टू मेक ईच एंड एवरी मोमेंट स्पेशल, चाहे आप बाहर हो, घर के अंदर हो। घर के अंदर ही आपको पता है कितने सारे खूबसूरत मेमोरीज आप क्रिएट कर सकते हैं फैमिली के साथ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड ऑन द पर्सन। अगर आप कहें कि आपका कोई फेवरेट प्लेस है, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि वी डोंट हैव अ फेवरेट प्लेस, वी हैव फेवरेट पर्सन। जब फेवरेट पर्सन के साथ हम हैंग आउट करते हैं तो वो हमारी फेवरेट जगह बन जाती है। एंड आई जस्ट होप कि आपकी फेवरेट जगह फॉर द टाइम बीइंग इज रेडियो मस्ती, जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है कुछ खूबसूरत गीत एंजॉय करने के लिए। और कुछ बोम्बास्टिक गानों के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप मूड को भी थोड़ा ऐसा ही बनाएं।
0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।

0: लटपटा लव इश्क बबुआ।
1: वेलकम टू आरएम2 रेडियो मस्ती।
2: रेडियो मस्ती
3: हिट्स म्यूजिक ओनली
2: फील्स अ मस्ती।

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: ऑलराइट, 7:51 दिव्या का साथ इन योर फिल्मी जाम अभी से लेकर रात के 9 बजे तक। ऑफ कोर्स वी गोना हैव सम मस्ती एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट टिल 9 PM। चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे कृष्टि के नाम। आप है रविया दिखेल से, कहती है प्लीज द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट टू हबी विक्रम, आपके ट्विंस हैं कौशिक कौशल के लिए, एंड ऑल्सो फॉर रेडियो मस्ती टीम, हैव अ ग्रेट वीकेंड, सेम टू यू कृष्टि, दैट्स रियली स्वीट। एंड थोड़ी देर पहले रोशनी ऑफ काटोबोन ने हमें याद किया था, वैसे हमने कहा था कि रिक्वेस्ट के गाने को हम फिलहाल के लिए तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट हमने इस गाने को ढूंढने की कोशिश की, सारे गाने मिल गए बस इसी गाने को छोड़कर। एंड आई जस्ट होप कि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर इस गाने को ढूंढ पाए आपके लिए। और चलिए अभी के लिए तो ज़रूर अगला गाना ख़ासतौर से उन तमाम लोगों के लिए जो शायद नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, फ्राइडे इवनिंग को भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक काम पर होते हैं, और आप लोग मेहनत से काम कर रहे हैं तो बिल्कुल मेहनत से काम करते रहिए, इसका फल आगे चलकर ज़रूर आपको मिलेगा। बोन कोहाश टू ईच एंड एवरी वन वर्किंग राइट नाउ, एंड अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हैं सो उम्मीद करते हैं कि यू आर हैविंग अ म्यूजिकल राइड विद रेडियो मस्ती।
0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

Silmi Jam. OMG Radio Musti. ऐसे गाने मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब इट ब्रिंग्स यू गुड वाइब्स, और साथ में आप इसके साथ साथ थोड़ा डांस भी कर सकते हैं, और अगर मूड ख़राब है तो आपका मूड ऑटोमेटिकली सेट हो ही जाता है ऐसे गाने के साथ. एंड आई जस्ट होप कि वी आर ट्राइंग टू गेट यू इन द फ्राइडे मूड, है ना. और आप लोग इस वक्त बहुत ही खुश हैं, हमें कैसे पता चला भाई आपके मैसेजेस पढ़ के. थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी गाने को पसंद करने के लिए. एंड चलिए यहाँ पर स्वेनल का मैसेज आ

0: आया है। हाय दिव्या, एंजॉइंग योर शो विद भाई श्रवण, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नव्या, तिलक फैमिली के साथ हैविंग डिनर। एंड आज का मेन्यू है पुलाव वेज। और अगला गाना गुजरात स्पेशली फॉर यू सुनल, क्योंकि आपने हमें विश किया है मुकवाज। बिल्कुल, हमारा तो अर्ली डिनर हो चुका है और आपको बना पिछी टू यू एंड टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स जो साथ मिलकर खाना खाने वाले हैं। एंड साथ में वी विल डेफिनेटली लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर गुलशन भुला कनेक्ट with Radio Masti। नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर मॉम प्रभा, बहन दीक्षिता, भोला फैमिली। अर्ज किया है मोहब्बत भी हम एटीट्यूड से करते हैं, जिसको चाहा है उसी पे मरते हैं। जरूरत नहीं हमें हर किसी को पसंद आने की, जो पसंद है हमें वही हम पे मरते हैं। वाह, क्या बात है, इसको कहते हैं एटीट्यूड। और जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड होना तो सब कुछ सही हो जाता है। और साथ में इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड यू एंड गुड कंपनी, क्योंकि ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। तो चलिए, आपकी अच्छी कंपनी में हम खुद इन गानों को एंजॉय कर रहे हैं और आप भी एंजॉय करते रहिए। एंड कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। डोंट फॉरगेट यू आर कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती, जहां पर चल रहा है आपका फिल्मी जैम टिल 9 PM।
1: Filmy Jam
2: RM2 Radio Musti।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: filmy jam.
1: OMG Radio Masti.
2: Well, that was the lead Mehndi Baji for you. सजन मेरे सतरंगिया. और शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इस एल्बम में प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी. एंड यू मान लो दैट इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ हर करियर. एंड वैसे बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की ऐसे छोटे छोटे एल्बम्स के साथ, और बाद में जब उन्होंने बड़ा नाम कमाया तभी बाद में पता चलता है कि ओहो वो थी इस एल्बम में. फॉर एग्जाम्पल वी ऑल्सो हैड दीपिका पादुकोण इन द एल्बम नाम है तेरा, संग बाय हिमेश रेशमिया. और चलिए ऐसे ऐसे एक्ट्रेसेस के बारे में तो बस सुनना उनके सक्सेस स्टोरीज के बारे में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोगों ने बहुत ही मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं. तो चलिए यहाँ पर वी वुड डेफिनेटली लाइक टू डेडिकेट ईच एंड एवरी गाना टू ऑल दोज जो इस वक्त बहुत ही प्यार से और बहुत ही धमाकेदार मूड से हमारे गाने सुन रहे हैं. वेल, आप कहते हैं हाय दिव्या जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर फ्रेंड्स इंदिरा, श्यामा, मीरा, सिनंद, कविराज, साधना, मालिनी, कविता के लिए बिल्कुल. और आप हैं अनीता जी फ्रॉम फ्लिक ऑफ लक कनेक्टेड विद अस. थैंक यू सो मच अनीता जी. उम्मीद करते हैं कि यू ऑलरेडी हैड योर डिनर एंड यू आर जस्ट हैविंग अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती. एंड चलिए ऐसे ही दिव्या का साथ देते रहिएगा. हमारा और आपका साथ तो है टिल 9 PM और ऐसे ही बस 9 बजे तक धमाकेदार ब्यूटिफुल गाने चलाते रहेंगे आप लोगों के लिए टू गेट यू इन द फ्राइडे मूड.
0: Filmy Jam.
1: RM2 Radio Musti.

0: बस इसी तरीके से आपको गाते गुनगुनाते हमारे साथ साथ ऐसे ही बस गुड मूड में रहना है, और जिस तरीके से हम गुनगुना रहे थे आप भी गुनगुनाइए और खुश रहिए। हम बस खुशी की वजह लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, एंड वी हैव द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती।
1: फिल्मी जान
2: RM2 रेडियो मस्ती।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

रुकता नहीं है क्योंकि वी गन हैव नेक्स्ट कुछ और धमाकेदार फॉर यू. सो स्टे कनेक्टेड. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल सैटरडे आफ्टरनून को, जहां पर हम साथ निभाने आएंगे शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट ग्रेट फ्राइडे, हैव अ ब्लास्ट. शुभ रात्रि, शब बखैर.

Toba, toba, toba, toba. Mira, ya, casta nova.

That happened.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
1: वेलकम टू RM2।
3: रेडियो मस्ती,
2: रेडियो मस्ती,
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
3: सेंटर
2: 99.4।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
1: Feel the Musti.

RM2. Radio Musty feels a musty.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: Sanjana, Sanjana.
3: I'm sorry. मैंने आपको पहचाना नहीं.
4: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है. हाँ यही तो है सब निशानियां. हाँ इसी का नाम.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: कमी के पत्ते बने नहीं तो जो करते लगे नहीं।
1: सीढ़ी चढ़ो तो सांप मिलेगा, लूडो का खेल है यूं ही चलेगा।
2: नाखून चने चबाए हैं, दांत में कच्ची मक्की है, मियां के बाल उड़े क्यों भैया, बीवी इनकी शक्की है।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते